सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, नशा निषेध। वाचन चंद्रमणि कुमार सिन्हा।
1: नशा किसी भी नशीले पदार्थ से उत्पन्न होने वाली दशा है। नशा किसी भी व्यक्ति के लिए अभिशाप है जो आज के समाज में आम है। यद्यपि मानव इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी है, कहते हैं देवता भी मनुष्य जीवन को तरसते हैं, क्योंकि मोक्ष मनुष्य जीवन को ही मिलता है और परमात्मा का विधान है कि कोई भी व्यक्ति जो नशा करता है उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति नशा करता है वह धन का नाश तो करता ही है, साथ ही अनेक बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। आदमी अपने स्वास्थ्य की कीमत पर धन अर्जित करता है, फिर स्वस्थ होने के लिए धन खर्च कर देता है। अंत में पाया क्या? पूर्व में जहाँ थे वहीं आकर पहुँच गए। क्या इसको विवेकशीलता कहा जा सकता है? संघर्ष को मानव जीवन का दूसरा नाम कहा जाता है और संघर्ष से ही व्यक्ति कुंदन की तरह शुद्ध और पवित्र हो जाता है। परंतु जिन लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर होती है, जिनका संकल्प दृढ़ नहीं होता, वे लोग संघर्ष के आगे घुटने टेक देते हैं और असफलताओं से सीख लेने के बजाय का सहारा लेते हैं। बहुत से लोगों को यह कहते सुना जाता है कि हम तो गम को भुलाने के लिए नशा करते हैं, लेकिन क्या सचमुच नशा करने से व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है? अगर ऐसा होता तो पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति दुखी ही नहीं होता। शुरू में तो व्यक्ति शौक के तौर पर नशा करता है, परंतु बाद में उन्हें लत पड़ जाती है जो फिर कभी नहीं छूटती। इंसान नशे की लत से क्यों नहीं छुटकारा पाता? इसके कई कारण होते हैं। नशे की लत केवल एक शारीरिक आदत नहीं होती, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक वातावरण की गतिविधियों का भी परिणाम है। मानसिक रूप से व्यक्ति नशे की लत को मानसिक शांति या खुशी की अनुभूति समझता है। कुछ लोग नशे का सेवन भावनात्मक दबाव से बचने के लिए करते हैं। तनाव, अकेलापन, अवसाद, चिंता जैसी भावनात्मक स्थितियां व्यक्ति को नशे की ओर खींचती हैं। जब व्यक्ति को अपनी भावनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं मिलता तो व्यक्ति नशे को ही अपना सुरक्षा कवच बना लेता है। सामाजिक माहौल भी व्यक्ति को नशे की लत को बढ़ावा देता है। जब व्यक्ति के आसपास के लोग, संगी साथी नशा करते हैं तो उसे भी इसे अपनाने का दबाव महसूस होता है और अपना ही विनाश कर बैठता है। किसी ने ठीक ही लिखा है, संगत में ही कुसंगति उपजे, जैसे वनखंड बांस, घिस घिस वन में आग लगा दे, कर दे वनखंड का भी नाश। किसी भी नशे की लत को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। इससे मुक्ति पाने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आप अपने से वादा करें कि नशे की लत को छोड़कर आप अपना जीवन बेहतर बनाएंगे। सकारात्मक सोच रखें और अपने इस लक्ष्य को बार बार दोहराएं, साथ ही स्वयं को प्रेरित करते रहें। मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण के लिए ध्यान योग का प्रतिदिन अभ्यास करें। जीवन आसान नहीं होता, बल्कि संघर्ष और चुनौतियों से भरा होता है और इसमें निरंतर सुधार की एक आजीवन प्रक्रिया है। नशे की लत से उबरने का अर्थ सिर्फ नशीले पदार्थों का सेवन बंद करना ही नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व में भी परिवर्तन लाना है। नशे से मुक्ति पाने के लिए अपने भीतर उस नशे से घृणा और आत्मबल के साथ ईश्वरीय अनुकंपा भी आवश्यक है। ध्यान और योग की शक्ति से हर तरह के व्यसन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जिस व्यक्ति ने भी अपनी चेतना का स्वाद चख लिया, फिर उसे किसी नशीले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। आसक्ति, व्यसन या किसी प्रकार की भी बुरी लत, ये सब शक्तिहीन आत्मा के लक्षण हैं। परंतु यदि हम स्वयं को आत्मा समझ जितना परमात्मा की याद में रहते हैं, उतनी ही आत्मा की सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होती जाती हैं और बाहरी पदार्थों से अनासक्त हो जाती हैं। यद्यपि यह कटु सत्य है कि नशे का सबसे बड़ा कारण कुसंगति है, लेकिन यदि आप में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की शक्ति है तो आप पर नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। किसी को नशे की लत छोड़ने के लिए मजबूर करने के बजाय हमें उन्हें भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में खुशी और मन की शांति चाहता है। यह भावनात्मक कमजोरी ही उसे नशे की लत की ओर ले जाती है। यदि हम किसी कमजोर व्यक्ति से उसके सहारे को छीनने की कोशिश करेंगे तो वह उसे और मजबूती से पकड़ लेगा, लेकिन यदि आप उन्हें मजबूत बनाने में मदद करेंगे तो वह खुद ही सहारा छोड़ देगा। तो आइए हम सब स्वयं को तथा दूसरों को भी भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों, जिससे हम साथ मिलकर ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई नशे से मुक्त हो।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन।

0: नशा निषेध, वाचन स्वर चंद्रमणि कुमार सिन्हा का था। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है गायों की उन्नत नस्ल, और वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। खेती के साथ पशुपालन आवश्यक है। पशुओं का जब आप पालन करते हैं तो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप उत्तम नस्ल के पशुओं का पालन करें। उत्तम नस्ल के पशुओं के पालन से ही उत्पादन अच्छा मिलता है और आमदनी भी आपकी बढ़ती है। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे गोवंश के जो उत्तम नस्लें हैं उनके बारे में। सबसे पहले गाय की एक नस्ल है गिर। गिर नस्ल की विशेषता यह होती है कि यह मध्यम आकार की गाय है। दक्षिण काठियावाड़ और जूनागढ़ के गिर जंगलों में पाई जाती है। इस नस्ल की गायें अच्छी मात्रा में दूध देती हैं। फिर नस्ल के पशुओं का सिर बड़ा, माथा उभरा हुआ, चेहरा सकरा, कान लंबे एवं लिपटे पत्तों के समान होते हैं। सींगों की मोटाई मध्यम दर्जे की होती है। इस नस्ल की गायों का पेट लंबा, गहरा, अच्छा, गोल होता है। हवाना अच्छे आकार का होता है और उसमें थन ठीक तरह से जमे होते हैं। रंग लाल, सफ़ेद या धब्बेदार हो सकता है। दूध की गुणवत्ता उत्तम किस्म की होती है। अब आइए बातें करें साहिवाल नस्ल की, जो एक जानी पहचानी नस्ल है। इस जानवर का आकार मध्यम होता है। इस नस्ल के जानवर अधिक संख्या में पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य और दक्षिणी और शुष्क भागों में रावी नदी के निकट पाए जाते हैं। आर्द्र जलवायु में जानवर फलते फूलते नहीं हैं। इस नस्ल के बैल सुस्त और आलसी होते हैं, लेकिन गायें अच्छी मात्रा में दूध देती हैं। थारपारकर भी एक अच्छी किस्म है, जो कि मध्यम आकार के जानवर होते हैं। इसमें इनकी गाय और बैल दोनों अच्छे होते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान का शुष्क एवं रेगिस्तानी क्षेत्र इस नस्ल का मूल स्थान है। इस नस्ल के जानवरों का रंग लाल होता है। इस नस्ल की गायों की दूध देने की क्षमता अधिक होती है। बैलगाड़ी खींचने और हल चलाने के लिए समान रूप से ये नस्ल के जो बैल या बैल और गाय जो होते हैं वो उपयुक्त होते हैं। इस नस्ल के जानवरों का सिर मध्यम आकार का और माथा चौड़ा होता है। पेट सुगठित और बेजनुमा होता है। टांगें छोटी और दुम लंबी होती है। थन बड़े होते हैं। इस नस्ल का रंग सामान्यतः सफ़ेद अथवा धूसर होता है। जर्सी गाय के बारे में आप जानते होंगे। जर्सी सबसे लोकप्रिय गाय है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस नस्ल की गाय को इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप में विकसित किया गया है। डेयरी नस्लों में इस नस्ल की गाय सबसे छोटी होती है। इनसे दूध प्राप्त करना आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक लाभकारी होता है। जर्सी नस्ल के जानवरों का रंग हल्के पीले, भूरे से लेकर काले तक हो सकता है। उन पर सफ़ेद धब्बों से लेकर ठोस चिन्हों तक हो सकते हैं। भारत में जर्सी नस्ल बड़ी सफल रही है। जर्सी नस्ल के सांडों का देसी गायों से मेल कराने पर पहली पीढ़ी में जो गायें प्राप्त होती हैं वे अपनी माताओं की तुलना में 2.5 गुना अधिक दूध देती है। अब आइए बातें करें होलिस्टन फ्रीजियन नस्ल की। इस नस्ल का मूल स्थान हॉलैंड है। पनीर बनाने के लिए अधिक मात्रा में इससे दूध प्राप्त किया जा सकता है और इसीलिए इनका पालन भी होता है। इनका खुराक काफ़ी अच्छा होता है। भारत में फ्रीजियन नस्ल जो है वो एक काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है, नस्ल सुधार के लिए। फ्रीजियन नस्ल के सांड और देसी नस्ल की गायों से वर्णसंकर जो पैदा होते हैं वे बहुत अच्छे होते हैं और भारतीय परिस्थिति में बहुत अच्छा उनसे काम लिया जा सकता है और दूध का उत्पादन भी उनसे बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से गाय के उत्तम नस्लों के बारे में आप जान करके उनके पोषण की अच्छी व्यवस्था करके उनसे आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं।
0: कृषि चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था गायों की उन्नत नस्ल और वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। अब हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले कि केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

देश वंदना के बाद कार्यक्रम वंदना में सुनिए भजन। सबसे पहले भजन सुनिए डॉक्टर अश्विनी भिरे देश पांडे के स्वर में।

कार्यक्रम वंदना में अगला भजन सुनिए शालिनी शंकर की आवाज में।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ।

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है बच्चों में डायरिया के लिए जिंक का टैबलेट का प्रयोग। कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर विजय प्रकाश राय से चंद्रमणि कुमार सिन्हा की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ दूरभाष पर उपस्थित हैं डॉक्टर विजय प्रकाश राय। आप राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बाल स्वास्थ्य हैं। आज का हमारा विषय है बच्चों में डायरिया के लिए टीकाकरण एवं जिंक टैबलेट। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों के लिए जो रोटावायरस टीकाकरण करवाया जाता है, उसके लिए सरकार क्या-क्या सुविधाएं प्रदान कर रही हैं और यह किस प्रकार से कराया जा रहा है?
2: आजकल रोटा वायरस जो छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा बड़ा कारक माना जाता है, उसके लिए मुफ्त में टीकाकरण

0: के जो रोटा वायरस टीकाकरण करवाया जाता है उसके लिए सरकार क्या-क्या सुविधाएं प्रदान कर रही हैं और यह किस प्रकार से कराया जा रहा है?
1: आजकल रोटा वायरस जो छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा बड़ा कारक माना जाता है, उसके लिए मुफ्त में टीकाकरण जो बीएचएनडी आंगनवाड़ी केंद्रों पर जा करके हमारी एएनएम बहने दे कर रही हैं, और हर गांव के लिए निर्धारित तिथि होता है कि महीने का पहला बुधवार या पहला शुक्रवार या कहीं कहीं पर शनिवार, इस तरह से निर्धारित है हर गाँव के लिए, और वो प्लान बने हुए आशा बहने जानती हैं। उस दिन टीकाकरण में रोटा वायरस टीकाकरण लाया गया है, उसको जरूर करवाएं, यानी टीकाकरण कराने से भी डायरिया रुकता है। एक मिजिल्स भी बीमारी है जो डायरिया पैदा करती है, तो उस मिजिल्स का टीकाकरण 9 महीना पूरा होते ही पहला टीका दिया जाता है, पुनः 1.5 से 2 साल के बाद में उसका बूस्टर भी पड़ता है। ये टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिजिल्स के बाद भी डायरिया होने से कभी कभी बच्चे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। और तीसरा है कि हम लोग डायरिया होने पर क्या करें, वो होने पर जो हम अभी बता रहे हैं कि ORS का प्रयोग और उम्र के अनुसार उनका भोजन साथ में आवश्यक है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग यानी 6 महीने तक का बच्चा है तो उसको स्तनपान और ज्यादा बार कराएंगे, ज्यादा देर तक कराएंगे, और 6 माह से ऊपर का अगर बच्चा है तो होममेड जो हमारे लिक्विड फूड्स होते हैं, यानी शिकंजी हम बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं पतला, या मट्ठा अपने यहाँ चलता है, चावल और दाल का हम पतली खिचड़ी बनाते हैं, या उनका पानी भी दाल का यूज करते हैं, इस तरह का नींबू पानी यूज करते हैं, इनको बार बार ज्यादा देना है। डायरिया में कभी भी भोजन बंद न करें, थोड़ा मात्रा अगर लग रहा है कि ज्यादा बार उल्टी कर दे रहा है या पखाना कर रहा है तो मात्रा थोड़ा घटाएंगे, लेकिन हम उसको कई बार कर देंगे, ये खतरनाक होता है भोजन बंद करना। भोजन बंद करने से उसका और भी इम्यूनिटी पावर जो है वो घट जाता है, पोषक तत्वों की कमी से वायरस या बैक्टीरिया उस पर और हावी हो जाते हैं, तो वो जरूरी होता है। और जिंक का एक प्रयोग है, जिंक का प्रयोग डायरिया में बहुत ही आवश्यक है। यहाँ मैं समझाना चाहूंगा कि डायरिया चाहे ठीक भी हो जाए, 3 दिन के अंदर यूजली ठीक हो जाता है, इस जिंक को 14 दिन तक प्रयोग करना आवश्यक है। यह बच्चे की इम्यूनिटी का को बढ़ाता है। आप सभी कोविड के टाइम में इसका मिसयूज भी बहुत सारे लोग किए हैं, जिंक जिंक जिंक बहुत आया कि जिंक खाया जाए, वही यह जिंक है, उस बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और 14 दिन तक अगर हम यूज कर लेते हैं तो अगले 2 से 3 माह तक के लिए भी विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से बच्चे को बचाए रखता है।
0: तो ये जिंक जो आपने बोला इसका प्रयोग किया जाए तो ये किस फॉर्मेट में बच्चों के लिए उपलब्ध रहता है सर?
1: जी, सरकारी तंत्र में अभी टैबलेट के रूप में ही प्रयोग है, और इसके विधि प्रयोग विधि को भी मैं जरूर बताऊंगा।
0: जी,
1: 2 माह से लेकर के 6 माह तक बच्चे को जिंक की 20 मिलीग्राम की गोली जो आती है उसकी आधी गोली यानी 10 मिलीग्राम खिलाना होता है। खिलाने की विधि ज्यादा ज्यादा जरूरी है। 6 माह तक बच्चे को हम चूंकि ऊपरी कोई आहार नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर रखे हुए हैं, तो आप माँ के दूध में ही उसको चम्मच में गला कर धीरे धीरे हिला करके बच्चे को पिलाते हैं। अगर कुछ बच गया चम्मच में तो पुनः माँ के दूध में 2-3 बूंद उसमें टपका करके उसको पुनः दे दें। 6 माह से ऊपर के बच्चों को चूंकि हम पानी देना शुरू कर देते हैं, आहार देना शुरू कर देते हैं, तो उनको साफ ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का साफ पानी है उसमें एक गोली, पूरी एक गोली हम घुलाते हैं और उसको देना होता है। प्रतिदिन एक बार देना होता है और 14 दिन तक देना होता है।
0: जी
1: जी,
0: तो हमारे श्रोता अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि डायरिया जब हो उनके बच्चों को तो किस प्रकार से बचा जाए, या डायरिया होने के पहले ही किन तरीकों को अपनाया जाए ताकि डायरिया या दस्त हो ही नहीं।
1: कुछ खतरे के लक्षण अगर बता दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: जी जरूर सर,
1: गार्जियन को ये जानना चाहिए। तो खतरे के लक्षण है कि बच्चा सुस्त होने लगे, पखाने की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बेचैन चिड़चिड़ा हो जाए, आंखें धसी हुई लगने लगे, या कभी कभी चमकी मिर्गी तक आ सकती है। तो ऐसे ही स्थिति में तो बिल्कुल देर न करें और तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर लाकर बच्चे की जांच करवाएं। एक चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने कोविड को भी देखा है, और उस कोविड भी कभी कभी डायरिया के साथ अपनी प्रस्तुति करता है, तो वो सावधानी भी हमें रखना है कि अगर बच्चे को डायरिया होता है तो स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूर चेक कराएं कि हमारा सामान्य डायरिया है या क्या कोविड का भी कोई लक्षण है।
0: जी, डॉक्टर विजय प्रकाश राय, राज्य कार्य

0: पदाधिकारी बाल स्वास्थ्य, आपने आकाशवाणी को इतना समय दिया और दस्त के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी छोटी छोटी जानकारियों से रूबरू करवाया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था बच्चों में डायरिया के लिए जिंक का टेबलेट का प्रयोग। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर विजय प्रकाश राय से चंद्रमणि कुमार सिन्हा की बातचीत। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से। अब से कुछ देर बाद 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम हालचाल आप सुनेंगे सुबह के 7:05 पर। पॉप म्यूजिक का प्रसारण होगा सुबह के 7:15 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे सुबह के 7:25 पर। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे पंडित रविशंकर का सितार वादन, राग आशा भैरव। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा दिन के 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुनेंगे दिन के 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी आप सुन पाएंगे दिन के 10:15 पर। बाल कार्यक्रम बाल मंडली का प्रसारण होगा दिन के 10:30 पर। विशेष कार्यक्रम मन की बात आप सुनेंगे दिन के 11 बजे। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। बिहार का लोक संगीत आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम वैज्ञानिकी का समय होगा दोपहर 12:30 पर। समवेत गान शिक्षा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय होगा शाम के 4:30 पर। मैथिली कार्यक्रम भारती आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा शाम के 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर और जिले की हलचल 7:47 पर प्रसारित होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात के 8 बजे। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात के 10 बजे। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34.1शततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयम् हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण

0: धारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। आज 31 मई है। आज जिन श्रोताओं का जन्मदिवस है उन सभी श्रोताओं को आकाशवाणी पटना की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोता मित्र कार्यक्रम में हम आगे और अन्य भी प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में उनके जन्मदिवस से आपको अवगत कराते हैं। भारत की वीरांगनाओं में से एक अहिल्याबाई होलकर, इनका जन्म 31 मई 1725 ईस्वी को हुआ था। आउटलुक के संस्थापक एवं प्रसिद्ध पत्रकार विनोद मेहता, इनका जन्म 31 मई सन 1942 ईस्वी में हुआ था।

हिंदी फिल्मों के शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक थे राज खोसला। इनका जन्म दिवस 31 मई 1925 ईस्वी को मनाया जाता है। लाला जगत नारायण प्रसिद्ध पत्रकार तथा हिंद समाचार समूह के संस्थापक थे। इनका जन्म 31 मई 1899 ईस्वी को हुआ था। नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी, जिसका मूल नाम मेहरुन्निसा था। इसका जन्म 31 मई 1577 ईस्वी को हुआ था। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में हम आगे और भी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोता मित्र, कार्यक्रम हालचाल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। कार्यक्रम में अब जानते हैं आज का इतिहास और देखते हैं क्या छुपा है आज के इतिहास में। 31 मई 1774 ईस्वी को भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 31 मई 1867 ईस्वी को। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई 31 मई 1959 ईस्वी को। 31 मई 1994 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 109वां सदस्य राष्ट्र बना था। 31 मई 1999 ईस्वी को एडोल्फ ट्यूटर स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 31 मई 1999 ईस्वी को

31 मई 1999 ईस्वी को कृष्णा प्रसाद भट्टराय द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया गया। मानवाधिकार आयुक्त रॉबिन्सन का कार्यकाल बढ़ा 31 मई 2001 ईस्वी को। 31 मई 2008 ईस्वी को सरकारी तेल कंपनियों ने जहाज़ों के ईंधन ATF की कीमतों में 18.5% की बढ़ोतरी की। 31 मई 2010 ईस्वी को भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल से बैंक में बचत खाता धारकों के ब्याज की गणना दैनिक आधार पर होगी। यह घोषणा 31 मई 2010 ईस्वी को हुई थी। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में आप जान रहे थे आज के दिन का इतिहास। कार्यक्रम में अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम हालचाल अब यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हालचाल, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पॉप म्यूजिक। सबसे पहले पॉप म्यूजिक सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं पॉप म्यूजिक कार्यक्रम। में अगला पॉप म्यूजिक सुनिए पंकज उदास की आवाज में।

इसी के साथ पॉप म्यूजिक अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए पंडित रविशंकर का सितार वादन, राग असा भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित रविशंकर का सितार वादन, राग असा भैरव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉक्टर डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधान

0: के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क। उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई है, जो इन्होंने शेयर की है ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन

0: में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the minister

0: एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वजीर दिफा ने कहा कि बहरे अरब में भारतीय बहरिया को पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिया अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त हमले किए।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: बहरिया के सरबरा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग यिलैंग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बोधगया पहुंचे और महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कल शाम जनाब लियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने देरीना दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राबतों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों की ईंधन की बरामदात पर आयात होने वाले महसूलात पर नजरसानी की है। इस कदम का मकसद मगरबी एशिया के बहरान की वजह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खातिरख्वाह घरेलू दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजारत मालियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की बरामद पर 1.5 रुपया फी लीटर और डीजल की बरामद पर 13.5 रुपये फी लीटर की ड्यूटी आयद होगी। हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदाती ड्यूटी 9.5 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत मालियात ने वाजे किया कि खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सड़क बुनियादी ढांचा सेस पर मुश्तमिल बरामदाती लेवीज, जिन्हें इस साल 27 मार्च को मुतारिफ कराया गया था, का खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की औसत बैन अल-अक़वामी कीमतों की बुनियाद पर हर 15 दिन बाद जायजा लिया जाता है। तहम हुकूमत ने वाजे किया कि घरेलू खपत के पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नजरसानीशुदा ड्यूटीज का कल से इतलाक होगा, जो अगले 15 दिन तक नाफिज रहेंगी। नई दिल्ली से विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आरजी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए यह फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है, तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, एमएसएमई इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को इतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबिकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के तई बेदारी पैदा करना है। ये दिन तंबाकू के इस्तेमाल के खात्मे के लिए

0: आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 सीजन के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच खेला जाएगा। आरसीबी ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और 3 दिन के वक्फे के बाद फाइनल में दाखिल हो रही है। टूर्नामेंट की मजबूत तरीन उनकी बल्लेबाजी रही है, जिसमें विराट कोहली की कारकर्दगी नुमाया रही है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड नई गेंद के साथ टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। दूसरी जानब शुभमन गिल की क्यादत में गुजरात टाइटन्स ने लीग मरहले में टॉप टू में जगह हासिल की और क्वालिफायर एक में शिकस्त के बाद वापसी करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम एक बार फिर अपने अहम बल्लेबाजों गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर इंतजार करेगी, जबकि ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सीजन के दूसरे हिस्से में अहम विकेट्स लेकर गेंदबाजी को और मजबूत किया है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। खातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल्कौमी क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब एक एक मैच से बराबरी पर है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहेब उल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से शिकस्त देकर यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने ज़राअत और किसानों की फलाह और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को सुर्खी के साथ पेश किया है कि मुल्क भर में खेत बचाओ मुहिम 1 जून से चलाई जाएगी, जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के इस बयान को पहले सफ़े पर जगह दी है कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 मुल्क के हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान भारत की मईशत मजबूत मगर एहतियात ज़रूरी, वजारत ख़जाना के इस बयान के साथ रोजनामा इनकलाब ने लिखा है कि वजारत ख़जाना ने मुख्तलिफ माशी इशारों की बुनियाद पर भारत की मईशत के करीबी मुस्तकबिल को मजबूत करार दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्याल का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यूमिन ओंगलियांग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया, नया शुल्क कल से लागू। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2 आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा को किया निलंबित। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सहित राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विशेष निगरानी इकाई से प्राप्त प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेजों के आधार पर अनुचित लाभ लेने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। निलंबित अधिकारियों में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक योगेश कुमार सागर तथा वर्तमान में जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत अभिलाषा कुमारी शर्मा शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। श्री कुमार ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु

0: पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव का भी उल्लेख किया और कहा कि इन राज्यों में कड़ी चुनावी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। उन्होंने देशभर की अदालतों में निर्वाचन आयोग का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं और कानूनी परामर्शदाताओं के समर्पण और मेहनत की सराहना की। लोक भवन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से यूनिफॉर्म अकादमिक कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अब एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू होगा। नामांकन से लेकर परीक्षा तक की सभी प्रक्रियाओं की तिथियां निर्धारित रहेंगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को इस कैलेंडर का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में शैक्षणिक कैलेंडर से विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, जबकि नामांकन की और पंजीकरण की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए दूसरी चयन सूची जारी कर दी है। प्लस टू विद्यालयों में सत्र 2026-28 के लिए चयनित विद्यार्थियों को 2 जून तक अपने आवंटित विद्यालयों में नामांकन कराना अनिवार्य होगा। समिति ने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल कल से सक्रिय की जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन तथा पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विद्यार्थियों को सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सिवान, सारण, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
4: दिनांक 31 मई राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर प्रदेश के कई भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना है। पटना के दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में आज अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। 24 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के बाद 1025 अग्निवीर जवान औपचारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल हो गए।

0: परेड के दौरान अग्निवीरों ने देश सेवा, अनुशासन और समर्पण की शपथ ली। इस अवसर पर विभिन्न धर्मगुरुओं द्वारा अग्निवीरों को गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखकर राष्ट्र सेवा के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडिंग ऑफिसर तथा समीक्षा अधिकारी मेजर जनरल जय सिंह बैसला सेना मेडल ने परेड की सलामी ली। गोपालगंज की MPML अदालत ने जदयू विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक की सीमा 5 जून तक बढ़ा दी है। न्यायालय ने एक अन्य अभियुक्त भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को भी 5 जून तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिले के सिमराव गांव में एक कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित हथियार प्रदर्शन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोजपुर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग से करोड़ों रुपए गबन करने के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में ग्रामीण बैंक के 3 खातों से लगभग 8 करोड़ रुपए के लेन देन की जांच की गई। इस कार्यवाही में पुलिस ने विभिन्न बैंकों के 19 पासबुक समेत कई दस्तावेज बरामद किया है। इधर अररिया में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस छापामारी अभियान में फरार अपराधियों और मादक पदार्थ के तस्कर सहित 41 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से 27 मई को गयाजी शहर के 10 केंद्रों पर हुई दरोगा बहाली मुख्य परीक्षा में मोबाइल के जरिए चोरी कराने वाले गिरोह का उजागर किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में गयाजी के रामपुर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले की पुलिस ने धौड़ाद थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए लूटकांड के मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले की पुलिस ने 61 पुरानी बाजार चिमनी मोहल्ला के पास से 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। इधर विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कटिहार में आयोजित बिहार राज्य अंडर 13 शतरंज प्रतियोगिता में पटना के देवांश केसरी शीर्ष पर चल रहे हैं। इस प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी देवांश ने मुजफ्फरपुर के सिद्धार्थ शांडिल्य को पराजित कर 5.5 अंकों के साथ बढ़त प्राप्त की है। आईपीएल क्रिकेट की फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर RCB को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला IPL खिताब जीतने वाली RCB ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि IPL 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी।
0: अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार मामलों में IAS योगेश अभिलाषा सस्पेंड। अखबार लिखता है, रिश्वत कमीशन और अनुचित लाभ लेने का आरोप। दैनिक जागरण का शीर्षक है, नीट UG और CBSE के बाद अब CUET UG में भी गड़बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा खामी का शिकार। पहली पारी की परीक्षा 2 घंटे देरी से शुरू हुई, दूसरी पाली का पेपर भी 1 घंटा लेट। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, एक देश एक चुनाव 2029

0: सी पहला चरण 2034 तक पूरा चक्र। प्रभात खबर ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास खाली कराने के मामले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, राबड़ी बोली फोर्स भेजकर बंगला खाली करवा लें, कुछ देर बाद ही पुलिस पहुंची। आज अखबार ने मौसम से जुड़ी खबर को अपनी लीड बताते हुए लिखा है, बिहार में कल 5 डिग्री चढ़ेगा पारा। राष्ट्रीय सागर का शीर्षक है, राज्य भर से मिले आवेदनों की निगरानी के लिए विशेष कोषांग का हुआ गठन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया, नया शुल्क कल से लागू। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2 आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा को किया निलंबित। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है।
1: ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

सामीन, एक बार गया हुआ मौसम तो यकीनन वापस आ सकता है, लेकिन एक बार जो सेहत चली जाती है वो वापस नहीं आती। दोबारा से अंजुमन में शगुफ्ता आप सभी का इस्तकबाल करती है। सामीन, सेहत एक अजीम नेमत है, इसे बुरी आदतों या लतों की वजह कर ख़राब नहीं करना चाहिए। आदतों को शायद हम बदल लें तो काफ़ी हद तक सेहत को बचा पाएँ, पर जो नशे की लत एक बार लग जाती है तो उससे बचना और बदलना दोनों बेहद दुश्वार होता है। आपको बताएं दोस्तों कि आजकल बढ़ता कैंसर और दिल के अमराज और फेफड़ों के अमराज की वजह तंबाकू भी है। नशे की लतों में तंबाकू नोशी एक नई नस्लों और बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसके मौलिक असरात नई नस्लों को ऐसी जकड़ में ले रहे हैं जिसका अंदाज़ा भी मुश्किल है। जी हाँ सामिन, हर साल 31 मई को तंबाकू नोशी की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि नई नस्लों और नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों को इसके मुजर सेहत असरात से आगाह कराया जाए। बातें और भी हैं सामिन, फिलहाल आइए एक और प्यारी सी गजल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ। समात कीजिए पिनाज मसानी की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गजल।

0: पर फिर हम हाजिर खिदमत हैं अंजुमन लेकर। आपको मालूम है सामीन कि तंबाकू नोशी की रोकथाम का दिन आवाम को तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात, तंबाकू की वजह से लड़ने के लिए WHO क्या कर रहा है, साथ ही दुनिया भर के लोग सेहतमंद ज़िंदगी के अपने हक का दावा करने और आगे आने वाली नस्लों के तहफ्फुज़ के लिए क्या कर सकते हैं के बारे में आगाह करती है। इसका आगाज़ आलमी इदारा सेहत WHO ने 1987 में किया था। सामिन, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, फ़िलहाल आज की ख़ास पेशकश का वक्त हुआ चाहता है। आइए समाप्त करते हैं अपना डॉक्टर आप ना बने उनवान पर मबनी आज की ख़ास पेशकश सेहतनामा। आदाब सामिन हजरात, आपका खैर मकदम है अंजुमन की आज की ख़ास पेशकश सेहतनामा में। मैं शगुफ्ता हाजिर हूँ हमारे सेहतनामा के इस ख़ास नशिस्त में आज के मेहमान खसूसी के साथ, और हमारे स्टूडियो में तिब्बी नुस्खे के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनस मौजूद हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अपने तिब्बी इल्म से बेहतरीन नुस्खे बताने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद अनस, हम आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं अंजुमन में, और हम आपके बहुत मशकूक हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे सामेईन के लिए।
1: जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने मुझे मदऊ किया।
0: तो जानते हैं आज के मौजू के बारे में जिसका उनवान है अपना डॉक्टर आप ना बने। कहते हैं डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ हर दूसरा इंसान खुद को डॉक्टर समझ लेता है। दरअसल वो होता नहीं है लेकिन समझ लेता है, शायद ये फितरी है क्योंकि बचपन से ही हम इस माहौल में पले बड़े होते हैं, और किसी को ज़रा भी पेट में दर्द हो जाए तो घर व पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो बहुत सारे नुस्खे बताने लगते हैं। तो क्या
1: जी
0: उन नुस्खों के ऊपर अमल करना सही है?
1: देखिए, एक मुहावरा आमतौर पर कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो यह इंसान का जो जिस्म है बहुत ही डेडिकेट ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक जिस्म है, और एक एक सेल की हिफाजत करना, एक एक खलिए की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। आमतौर पर जो देखने में ये आता है कि लोगों ने कोई दवा बता दी कि फलां दवा फलां मर्ज़ में बहुत ही मुफीद होती है अपने तजर्बे की बुनियाद पर, या फिर कि किसी ने इस्तेमाल किया और वो बता दिया कि साहब आप इस दवा को इस्तेमाल कीजिए, फलां साहब को फ़ायदा हुआ। एक दवा जो होती है वो किसी पर्टिकुलर शख्स के लिए वो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वही दवा दूसरे इंसान के लिए भी फ़ायदेमंद हो। लिहाजा ये एक मिसकंसेप्शन है। इसकी बहुत सारे वजूहात होती हैं जहाँ पर इंसान एक लाइलमी में इस चीज़ को इस्तेमाल करता है, साहब ये दवा हमें भी फ़ायदा करेगी, उसको भी फ़ायदा करेगी। या इसकी दूसरी वजूहात ये होती हैं, इंसान जो है गुरबत का शिकार है और उसके घर पर दवा मौजूद है, और उसने कहा कि साहब ये मेरे फलां शख्स को ये दवा इस्तेमाल की गई थी इस मर्ज़ में, लिहाजा जो है इस दवा को हम इसमें इस्तेमाल कर लें। या फिर दवाएं जो है बहुत महंगी होती जा रही हैं, इंसान के पहुंच से बाहर हो रही हैं, डॉक्टर की फीस वो नहीं पे कर पा रहा है, तो इन सब सूरत हाल से बचने के लिए वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाता है। आजकल थोड़ा सा रुझान ये बढ़ा है कि लोग इंटरनेट या गूगल पर सर्च कर लेते हैं और सिम्टम्स और साइंस डालने के बाद उसका ट्रीटमेंट खुद करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही डेंजरस और बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि दवा के बारे में हमें मुकम्मल इल्म नहीं है कि दवा जिस्म में जाने के बाद क्या क्या करती है, और दवा का ग़िज़ाओं से क्या इंटरेक्शन है, और दवाओं का जो है दूसरी दवाओं से क्या इंटरेक्शन है। इसलिए हमें दवाओं को बहुत एहतियात के साथ और बग़ैर किसी डॉक्टर की सलाह और मशवरे के हमें दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
0: तो सामीन, इस बात का ख्याल रखिए कि आइंदा अगर घर में किसी को कुछ परेशानी हो तो बिना किसी इल्म के उसके इस्तेमाल से बचें, जो कि कहीं ना कहीं जा करके आपको साइड इफेक्ट दे सकता है। डॉक्टर साहब, अब रुख करते हैं उस जानिब के जिसके माहिर आप हैं। सामीन को बताइए कि ये जो तिब्बी या यूनानी जो इलाज होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है?
1: देखिए, यूनानी मेडिसिन, इसकी जो शुरुआत जैसा कि इसके लफ्ज़ से जाहिर होता है कि इसकी इब्तिदा जो है इसकी ओरिजिन ग्रीक यानी कि यूनान से है, और हिप्पोक्रेट यानी कि बुकरात ने इसकी बुनियाद रखी थी। इसको मुजिद तिब इसी बुनियाद पर कहा जाता है, या अबू तिब कहा जाता है, फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन। इन्होंने फोर ह्यूमरल थ्योरी, अखलाते अरबा की बुनियाद पर जो है इस तिब की बुनियाद रखी। तिब एक तरीके से एक ग्लोबल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, और इसकी थ्योरी ये कहती है कि हमारे जिस्म के अंदर जो रुतुबात या फ्लूइड्स पाए जाते हैं उनको हम ह्यूमर्स या अखलात कहते हैं। इन अखलात को बुकरात ने रंग की बुनियाद पर चार हिस्सों में तकसीम किया। पहली जो खिल्त है वो खिल्ते बलगम कहलाती है, उसके बाद खिलते सफरा, खिलते दम और खिलते सौदा। इन चारों अखलात में क्वालिटी और क्वांटिटी के एतबार से अगर बैलेंस होता है तो हमें सेहत हासिल होती है, और अगर यही बैलेंस बिगड़ जाए तो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियां लाहिक होती हैं। यही जो खिलते हैं इन्हीं को दुरुस्त करने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तिब में इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: इसका मतलब ये हुआ।

0: और डॉक्टर साहब की जो भी अमराज हमारे जिस्म में होते हैं, जैसा आपने बताया कि खिल्त की वजह कर होते हैं, तो आखिर ये जो खिल्त का जो कॉन्सेप्ट है आपके तिब्बी या यूनानी इलाज के तहत, इससे मरीज को क्या नफ़ा और नुकसान होता है? मतलब उससे मरीज का जो जिस्म है, जो बीमारी है, उसमें अगर वो ट्रीटमेंट के लिए जाए जब आपकी तरफ, यूनानी वाली दवाइयों की तरफ, जैसा अभी आपने खुद कहा कि दवाइयाँ महंगी हो रही हैं तो लोग खुद से डॉक्टर बन रहे हैं और खुद से ही घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो यूनानी दवाइयों की तरफ कोई मरीज़ अगर जाता है, उसके जो असरात होते हैं जिस्म के ऊपर, तो वो कैसे मुरतब होते हैं?
1: देखिए, हमारे यहाँ जो इलाज होता है बीमारियों का, वो उसको हम लोग जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी पैथीज में, ख़ासतौर से एलोपैथिक में, देखने में ये आता है कि ज़्यादातर सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। तो हम लोगों की अप्रोच ये होती है कि बीमारी का जो सबब है उस तक पहुँचा जाए, और जब बीमारी का जो सबब है वो दूर हो जाएगा तो फिर वो बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर जो चार अखलात या चार खिलतें पाई जाती हैं, ये दरअसल हमारी जो बैलेंस डाइट है उसी से बनती हैं। लीवर में, लीवर के थ्रू इनका प्रोडक्शन होता है, और ये चार खिलते हैं वहाँ से प्रोडक्ट पाती हैं या बनती हैं। जब इन खिलतों को पर हम जब एड्रेस करते हैं, तो हमारी जो अप्रोच मरीज़ या मर्ज़ पर होती है वो हॉलिस्टिक अप्रोच होती है। जब मर्ज़ का इलाज करते हैं तो मरीज़ भी हमारे सामने होता है, उसका मिजाज भी हमें पता होता है, और मर्ज़ का मिजाज भी हमें मालूम होता है। तो इस तरीके से हम किसी एक सेल या किसी एक मॉलिक्यूलर बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरे जिसमें इंसानी को एज ए होल मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच हमारी होती है। तो इस तरीके से जब इलाज किया जाता है तो फिर बीमारी जो होती है वो रूट कॉज उसका मालूम हो जाता है, तो रूट कॉज से उसको जड़ से ख़त्म करते हैं। जैसे खिलते बलगम है, बलगम का मतलब है कि जिसमें इंसानी के अंदर हमारे यहाँ जो सफ़ेद रंग की रुतुबात या बेरंग रुतुबात पाई जाती हैं उनको हम लोग खिलते बलगम में शुमार करते हैं। फिर इसी एतबार से बलगमी अमराज तय किए जाते हैं कि कौन कौन सी बीमारियाँ बलगमी अमराज में आती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ सफरावी अमराज में आती हैं, कौन सी बीमारियाँ दमवी में आती हैं, और कौन सी सौदावी में आती हैं। हर खिल्त का अपना एक मिजाज होता है, तबई मिजाज होता है उसका, फिर गैर तबई का मिजाज होता है। इसी तरीके से जो बीमारियाँ होती हैं उनका अपना मिजाज होता है, दवाओं का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी मिजाज होता है, जो मरीज़ होता है उसका भी मिजाज होता है। तो तीनों के मिजाज को हम मुताबिकत रखते हुए मरीज़ का जो है ट्रीटमेंट तजवीज़ करते हैं, नुस्खा तजवीज़ करते हैं।
0: तो जैसे अभी आपने बताया कि खिल्त को समझते हुए फिर आप उस मरीज़ के मर्ज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो जिस तरीके से खिल्त बलगम है, तो इस तरीके से और भी कोई खिल्त कहलाते हैं उसमें?
1: जी, जैसा कि खिलते बलगम है, हमने कहा खिलते सफरा है एलो बाइल, खिलते सौदा है एलो ब्लैक बाइल, और खिलते दम यानी कि ब्लड। तो ये चार खिलते हमारे जिस्म के अंदर पाई जाती हैं, और जितनी भी बीमारियां होती हैं इन्हीं चार खिलतों से वो रिलेटेड होती हैं।
0: तिब्बी और यूनानी इलाज की तरफ अगर हम रुख करें तो बहुत तरह की बीमारियां अभी हो रही हैं जैसे, और हर बार कुछ नया नया आ ही रहा है, लोग परेशान हैं, जैसे अभी पिछले 2 साल से लोग परेशान हैं कोरोना में, तो क्या कोरोना के वक्त में जो इतनी जो परेशानियां हुई, खास करके सर्दी खांसी वाली, तो अगर मैं ये कहूँ कि आपकी इलाज की तरफ अगर कोई रुख करता है तो क्या उसका ट्रीटमेंट है वहाँ पर?
1: जी बिल्कुल, यूनानी तिब में कंप्लीट एक सिस्टम ऑफ यूनानी मेडिसिन है ये, और तकरीबन हर किस्म की बीमारियों को ये सिस्टम एड्रेस करता है। अभी पिछले गुज़िश्ता दिनों हम लोगों ने जो वबा को देखा, कोरोना वायरस, तो इसमें भी बहुत सारी दवाएं बहुत ही मुफीद पाई गईं, और बल्कि एक जुशादा या काढ़ा की शक्ल में मालेगांव में एक काफ़ी तजर्बा हुआ, और बहुत लोग जो है उससे फ़ायदा हुआ और उस वबाई मर्ज से बच पाए। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग यूनानी मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और बहुत ही उम्मीद अफजा भी है, और इस्तेमाल कराने के बाद हमें बहुत सारे फायदे भी देखने को मिलते हैं। कोविड में जैसा कि हमारे यहाँ जो तरीके से हुम्मा वबाइया या नज़ले वबाइया की एक शक्ल थी, बेशुमार नुस्खे जात हैं इस ताल्लुक़ से।
0: तिब्बी इलाज के कोई साइड इफेक्ट, इसका कोई मनफी असरात भी पड़ता है हमारे जिस्म के ऊपर?
1: जी बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि जो आवाम में एक गलत तासुर ये पाया जाता है कि दवाएं या यूनानी दवाएं जो है नुकसानदेह नहीं होती हैं, ये एक गलत तासुर है। दवा जो भी है वो हमारे जिस्म के लिए एक फॉरेन बॉडी है, जिस्म का वो खारजी हिस्सा है। दवा अगर है तो बिल्कुल उसके नुकसानदेह असरात मुरतब होंगे। इसी वजह से दवा और ग़िज़ा में फ़र्क हम करते हैं। ग़िज़ाएँ जो होती हैं हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं।

0: दवाएं जो होती हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती हैं, बल्कि कैफियत से असर करके वो जिस्म से खारिज हो जाती हैं। यूनानी दवाएं भी साइड इफ़ेक्ट रखती हैं और उनके मुज़िर असरात होते हैं। चूँकि हम लोग मर्ज़ के दर्जात और दवा के जो मिजाज के दर्जात होते हैं और फिर दवा को मुख्तलिफ तरीक़ों से मॉडिफाई करके इस्तेमाल करते हैं, तो जब इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो फिर दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर हम लोग कहते हैं कि हमारी दवाएं बहुत ही सेफ़ होती हैं। इन दवाओं को भी किसी तबीब या हकीम डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि अभी वबा के अयाम में देखने को मिला कि लोगों ने घरों में कोई दारचीनी का काढ़ा बनाकर पी रहा है, कोई काली मिर्च का काढ़ा बना के पी रहा है, तो कोई लौंग का काढ़ा बना के पी रहा है, तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट सामने आए कि लोगों को अल्सर या गैस्ट्राइटिस की शिकायत होने लगी। तो अब ये चीज़ लाइलमी में हुई कि हमें दारचीनी का इस्तेमाल करना है, काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, लौंग का इस्तेमाल करना है, तो कब करना है, कैसे करना है, ये चीज़ जो है किसी हकीम या किसी तबीब के मशवरे से ही करना चाहिए। लिहाजा इस तरह के अवारजात सुनने को और देखने को मिले।
1: तो सामीन, जब भी अगली बार आप काढ़ा बनाएं किसी भी वजह कर, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि जो भी चीज़ हम उसमें इस्तेमाल करते हैं उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसे हमें कब और कितना किस मकदार में लेना भी चाहिए। ये भी बहुत अहमियत रखता है हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, कहते हैं कि हमारे किचन में जितनी भी चीज़ें हैं, गर्म मसाले हैं, चाहे कुछ भी हो, प्याज ही क्यों ना हो, लहसुन ही क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरह से तिब्बी नुस्खे का काम करती हैं और उससे बीमारियां ठीक होती हैं, जो हमने अभी वबा के वक्त में देखा, या हम अक्सर देखते हैं घर में अगर किसी को पेट में नॉर्मल सा दर्द भी अगर हो जाता है तो शुरू हो जाते लोग नींबू पानी पी लो, तो कभी क्या पक्खी खा लो, या कुछ भी उस तरीके से बना करके लोग देते हैं। तो इस तरीके का जो इस्तेमाल करते हैं, इसका मैंने एक बहुत अभी रिसेंट में एक बहुत ख़तरनाक क्या कहूँ कि उसके असरात देखे हैं, एक जानने वाली हैं जिनको किसी ने बताया कि लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा। बात तो सही है, लहसुन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। उन्होंने खाना तो शुरू किया और वो काफ़ी लंबे वक्त खाते रह गई, और अभी ऐसा हुआ है कि उनको पेप्टिक अल्सर हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो घर में हमारे जो किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं उसे भी हमें खुद से नहीं इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बल्कि उसका इल्म हमें होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहना
0: जी
1: चाहेंगे आप इसके ऊपर?
0: जी किचन जो हमारा है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक दवाखाना है। यूनानी तिब के एतबार से जितने भी मसाले जात हैं वो बतौर दवा हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। जितने भी मसाले जात हैं ज़्यादातर का जो मिजाज हम लोग देखते हैं वो गर्म खुश्क है, यानी कि ये हमारे जिस्म में पहुँचने के बाद हमारे जिस्म के अंदर हरारत और यबूसत पैदा करते हैं। आपने जैसा कि जिक्र किया कि लहसुन का इस्तेमाल किसी ने किया और उसको इफ़ाक़त तो हुआ, लेकिन लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया और किस तरीके से इस्तेमाल किया, किसी तबीब की निगरानी में किया, ये जो है तय करना ज़रूरी है। कुछ दवाएं हम लोग जो मसालेजात इस्तेमाल करते हैं तो अब यह कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या उसकी मकदार खुराक है और कब इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कुछ मसाले जात ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए एलर्जिक हो सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो हम कोई दवा ले रहे हैं तो उसके साथ इंटरेक्शन भी उस दवा को हो सकता है। अगर कोई शख्स वारफरीन या मॉडर्न ड्रग्स ले रहा है तो अगर उसके साथ हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हेमरेज ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। इसी तरीके से देखने में आया है कि मुलैठी जो है बहुत कॉमन ड्रग है और लोग खांसी के लिए आमतौर पर मुंह में रख लेते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स के साथ अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। तो ग़िज़ाओं का और इस तरह के चीज़ों का, अशिया का भी दवाओं के साथ जो है इंटरेक्शन होता है, तो ये चीज़ें जो है तबीब के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि जो मसाले जात हमारे किचन में हैं इनको इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए, तो बिल्कुल इनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि एक तरीके से इनको हम फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूअस बहुत लंबे वक्त तक ज़्यादा मकदार में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड के तौर पर, इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर गैस की प्रॉब्लम हुई, अचानक पेट में दर्द हुआ, तो अब दर्द गैस की वजह से है या कोई और काज है हमें नहीं मालूम होता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अजवाइन का इस्तेमाल हम करते हैं या जीरे का इस्तेमाल करते हैं, तो अब ये कि इसको कितनी मकदार में लेना है, इसकी मकदार खुराक कितनी होती है, अगर उस मकदार खुराक आपने कम ली है तो वो भी हमारे जिस्म को उतना असर नहीं करेगी, और अगर आपने ओवरडोज ले लिया है तो आपके जिस्म को नुकसानदेह साबित होगी। इस तरीके से डोज का जानना

0: ज़रूरी है। तो डोज़ हमें कैसे मालूम होगी, या तो हम उसके बारे में कंप्लीट मुताला करें, कंप्लीट स्टडी करें तब उसको इस्तेमाल करें, या फिर किसी तबीब या किसी हकीम से मशवरा करके जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए।
1: इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि जब भी हम किचन में जाते हैं और ये सोचते हैं कि जैसे किसी ने बता दिया कि अदरक खाने से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कई बार कुछ अलग बीमारियों की शक्ल में भी निकल करके आता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया सामिन हजरात, की ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमारे हर एक जिस्म को सूट कर सके, यानी कि इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो उसकी मकदार भी जानें और ये भी जानें कि सामने वाले को उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसकी कुछ अलग से कुछ दवाइयाँ अगर चल रही हैं तो उस पर भी शायद उस पर नुकसान हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, दवाएं
1: तो इस
0: पहले
1: बात का
0: से
1: ख्याल
0: चलनी।
1: रखिए। अब मैं चलती हूँ उस जानब, नई नई कुछ बीमारियाँ जो हमारे जिस्म में पनपते हैं तो उसमें खास करके हम परेशान होते हैं कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं साइनस, अक्सर इसका इलाज लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ है तो वो ऑपरेशन ही है, बहुत ज़्यादा अगर वो बढ़ गया है तब। और फिर उसके साथ साथ जैसे थायराइड आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ये अक्सर जो हमारी ख्वातीन हैं उनके अंदर पाया जाता है, तो क्या इसका इलाज हमारे तिब्बी नुस्खे में है इस तरीके का कि उसमें इस्तेमाल से उनकी इस बीमारी से निकाला जा सके?
0: देखिए, हमारे यहाँ मुज़मिन अमराज जो हैं, जो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीट नहीं हो पाते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होता है, और जो एक्यूट डिसऑर्डर्स होते हैं उसका भी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन चूंकि ये आमतौर पर पब्लिक में ये है कि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है या ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लोग पहले रुख करते हैं मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरफ, एलोपैथिक की तरफ। और एलोपैथिक में जब उनको इफाका नहीं होता है तब वो लौट के ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ आते हैं। अगर वो चीज़ें अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर हमें मालूम हो जाए तो उसका इलाज तिब के ज़रिए या रिवायती या ट्रेडिशनल मेडिसिन के ज़रिए करना आसान होता है। जैसा कि आपने जिक्र किया कैंसर का, जो एक तरीके से एक वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है, बहुत ही मुजी और जानलेवा मर्ज़ है ये। तो इसमें बहुत सारे नुस्खे जात तो बाज़ दफ़ा मुफीद भी साबित हुए हैं, जैसा कि गिलों के बारे में देखने में आया, सदाबहार एक प्लांट है उसके वे काम हुआ है और असरात देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के कैंसर्स होते हैं और कैंसर टिश्यूज़ पे अलग दवाएं एक्ट करती हैं। तो अभी यूनानी सिस्टम मेडिसिन में भी इस पे काम हो रहा है, इलाज जो है मौसर साबित हुए हैं। जैसे डायबिटीज़ है, ये भी एक वबा की शक्ल अख्तियार कर रहा है, तो डायबिटीज़ में भी जो है कोई सा कोई क्योर तो नहीं है, लेकिन ऐसी बीमारियों के लिए हम लोग तिब की तरफ रुजू करते हैं, क्योंकि जो दवाएं लंबे अरसे तक इस्तेमाल करनी हैं वो दवाएं किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज करने लगती हैं, क्या तो लीवर डैमेज होता है या फिर किडनी डैमेज होता है। हम लोग तिब की तरफ ऐसे मरीजों को ला सकते हैं और तिब्बी नुस्खों का इस्तेमाल करके फाका हो सकता है। ऐसी थायराइड प्रॉब्लम जो बहुत कसरत से ख्वातीन में हो रही है, तो थायराइड दरअसल ये हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है, उसमें भी बहुत सारी दवाएं कारामद होती हैं और उसकी वजह से थायराइड जो है जो हाइपो या हाइपर कंडीशन बन जाती है तो उसको हम लोग रेगुलेट करते हैं और वो प्रॉपर फंक्शन अंजाम देता है।
1: एक सवाल और बनता है कि जब आपके तिब्बी नुस्खे में इन तमाम बीमारियों का इलाज है तो ये कितना वक्त लेती है किसी भी एक बीमारी को ठीक करने के लिए? मान लीजिए कि किसी एक मरीज के अंदर में एक ही बार में दो तीन बीमारियां हैं, क्या टाइम लगता है इस आपके यूनानी नुस्खे के जरिए से इन तरह के अमराज को ठीक करने में?
0: जी, हमारे यहाँ ये है कि आम तौर पर दवाएं फौरी तौर पर असर नहीं करती हैं, बल्कि थोड़ा वक्त लेती हैं। तो मिनिमम 3 से 7 दिनों में दवाओं का इफेक्ट देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है या फौरी तौर पर रिलीफ के लिए चीज़ें नहीं हैं, फौरी तौर पर रिलीफ के लिए भी दवाएं दी जाती हैं, लेकिन मरीज़ जो है अब उतने उस वक्त पहुँच नहीं पाता है, या फिर वो जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, या मरीज़ के लिए इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये दवाएं ऐसी हैं जिनको हम लोग नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो मरीज़ जो है उसको ले नहीं पाता है। प्रॉब्लम कभी कभी आती है, मॉडर्न में आपने इंजेक्शन दे दिया, आपने टैबलेट खिला दी, लेकिन हमारे यहाँ इंजेक्शन तो नहीं है,
1: जी
0: लिहाजा उसका काढ़ा बनाकर मरीज़ को पिलाना बहुत ही जो है उसके लिए बदमजगी होती है। इस तरीके से मरीज़ बेहोश है या नहीं ले सकता है तो किसी और रूट से दवाओं को देना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन जो होती है उसमें तो हम लोग थोड़ा सा एड्रेस नहीं करते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, जो मुज़मिन अमराज हैं, उसमें यूनानी दवाएं बहुत ही अच्छा काम करती हैं। और उसमें आमतौर पर जो मुद्दत होती है कम से कम 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जिस तरीके का मर्ज होता है उस तरीके से उसकी मुद्दत भी तय की जाती है।
1: अगर ये कहा जाए कि यूनानी दवाइयाँ अगर हम शुरू करते हैं किसी भी मर्ज के ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए, तो हमें कम

0: से कम 3 महीने तक इंतजार करना
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: जी,
0: क्योंकि हर
1: खास
0: किसी
1: खास जो है कुछ
0: हाँ
1: बीमारियां ऐसी जिसमें 3 महीना है, कुछ बीमारियां ऐसी जिसमें हम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हमें वेट करना पड़ सकता है। जैसे हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस के केसेस में बहुत सारे केसेस जो है यूनानी दवाओं से सही हुए, में जो वायरस जो है वो नेगेटिव होने के लिए कम से कम 6 मंथ जो है दरकार होता है। इस तरीके से हम कोई एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते कि इतने दिनों में ही हर मर्ज का इलाज 3 महीने 2 महीने में हो सकता है, ये वेरी करता है डिजीज के अतबार से।
0: यानी कि जो हमारी बीमारियां हैं उस बीमारियों के हिसाब से, यानी कि वो बीमारी हमारे जिस्म में दरअसल कब से है, कितने वक्त से है, कितने लंबे वक्त से हम उस बीमारी से दोचार हैं, उसका भी असर करता होगा। अच्छा, ये तो दवाइयों की बात हुई। जहां अगर बात करें, आप ये कह रहे थे कि हमारी जो ग़िज़ा है वो भी बहुत अहमियत का हामिल रखती है, तो क्या इन दवाइयों के साथ, जैसे होम्योपैथिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप होम्योपैथिक ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी हैं, या एलोपैथिक में भी कई बार ऐसा होता है कि आप जब ट्रीटमेंट में हैं उसके तो कुछ चीज़ों को मना करते हैं डॉक्टर कि आपको ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, तो क्या यूनानी दवाइयों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जब यूनानी तिब्बी इलाज जब करवा रहे हैं किसी मर्ज़ के लिए तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप खाते थे पहले बट अभी नहीं खाना है, ऐसा कुछ?
1: जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो उसूल इलाज है वो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पहले इलाज बिल गिज़ा से, यानी कि डाइटोथेरेपी। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इलाज बिल तदबीर, यानी कि रिजिबल थेरेपी। उसके बाद फिर जो है इलाज बिल दवा, यानी कि फार्माकोथेरेपी। उसके बाद फिर सर्जरी। इस तरह हमारे एक सीक्वेंस है। तो उसमें जैसा कि आपने बताया कि जो गज़ाएँ हम लोग लेते हैं, वो गज़ाएँ भी अगर ओवरडोज होती हैं तो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं। जैसे कि अगर कोई शख्स गोश्त का इस्तेमाल न करे, सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर देखने में आएगा एनेमिक होता है वो ज़्यादातर केसेस में। ऐसे ही कुछ लोग सिर्फ चावल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर सर्टेन किस्म की विटामिन की कमी हो जाती है। एक तो ये कि ग़िज़ाओं का सही तनासुब बहुत ज़रूरी है इटसेल्फ। उसके बाद आपने जिक्र किया कि क्या किसी शख्स का कोई इलाज चल रहा है और यूनानी दवाओं का ट्रीटमेंट हो रहा है, और उसके साथ क्या ग़िज़ाओं में भी कुछ परहेज़ होता है या नहीं। बिल्कुल, ग़िज़ाओं में भी परहेज़ होता है। और अगर किसी शख्स को बारिद मर्ज़ है, यानी कि बरूदत की वजह से मर्ज़ लाहिक हुआ है, तो जाहिर सी बात कि ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि बारिद हुआ करती हैं, जिनका मिजाज बारिद होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि चावल है, अचार है, या फिर जो है खीरा है, ककड़ी है, इस तरह की चीज़ें उसको नुकसानदेह होती हैं। लिहाजा उसको परहेज़ बताया जाता है कि आपको ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है।
0: तो यूनानी इलाज की तरफ भी अगर हम रुख करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है सामीन हजरात, कि हम कोई भी इलाज करवाएं हमारा मस तभी ठीक होगा जब हम अपने डॉक्टर के हिसाब से पूरी तरह से अमल पैरा होंगे उसके ऊपर, और जो भी एहतियात बताई जाए, जिन चीज़ों से रोका जाए हमें, हमें उसको नहीं करने की ज़रूरत है ताकि मस जल्द अज़ जल्द ठीक हो सके। तो सामीन हजरात, जाते जाते हम एक बार फिर से डॉक्टर साहब से बस इतना ही पूछना चाहेंगे कि आप हमारे सामीन के लिए ऐसी कौन सी अहम बात बताने वाले हैं जिससे कि हमारे सामीन को इस्तफादा हो।
1: आपने जैसा कि टॉपिक रखा था कि अपना डॉक्टर आप ना बने, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही और मौजू टॉपिक है, क्योंकि आपका जिस्म आपके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। अगर सेहत आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो मैं समझता हूँ कि जो गुफ्तगू अभी आपसे हुई है, आपने मुलाहजा फरमाई, उसमें बड़ी अहम बातें आपने सुनी। इससे ये अखज़ किया होगा कि हमें खुद सेल्फ मेडिकेशन या खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। हमारे किचन में भी अगर चीज़ें मौजूद हैं तो उसको भी जो है किसी तजर्बाकार या किसी हकीम या किसी तबीब के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए। और पैसों की खातिर या सुस्ती काहली में या किसी और वजह से हमें इन सब दवाओं को या इन सब चीज़ों को अख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधे डॉक्टर या तबीब से मशवरा करके दवा का इस्तेमाल करना चाहिए।
0: इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे सामेईन के लिए, और हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी सेहतमंद रहिए और हमारे सामेईन, हमारी आवाम को भी सेहतमंद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
0: एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके रूबरू अंजुमन लेकर। इससे कबल कि हमारी आज की गुफ्तगू को रफ्तार दी जाए, आइए सामेईन हजरात एक प्यारी सी गजल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।

की फिक्र में तंबाकू का इस्तेमाल करने लगते हैं और उसमें मौजूद केमिकल और निकोटीन कब उन्हें अपना आदी बना लेती है वो समझ भी नहीं पाते। और कैंसर, दिल की बीमारियों, सांस की बीमारियां, दांतों मसूड़ों की खराबी के साथ साथ जिस्मानी और जहनी कई तरह की बीमारियों में मुबतला हो जाते हैं, जो न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि घरों, खानदान और मुआशरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सेहत की खराबी माली तबाही की जानिब लेकर जाती है तो घरों में लड़ाई झगड़े और नाइतफाकी का सबब बनती है। मुआशरे में तंबाकू नोशी करने वाले लोगों को इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता, ख्वाह तंबाकू नोशी, पान, गुटखा, सिगरेट वगैरह किसी भी सूरत में हो, उसके असरात एक इंसान की ज़िंदगी में मनफी और मुजर सेहत ही पड़ते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए सामीन कि हम तंबाकू नोशी से बचें और साथ ही आसपास के लोगों को भी इसकी बुरी लत से बचाएं। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो यकीनन हम अपने मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लोगों की ज़िंदगियां बचा पाएंगे। इसके साथ ही सामीन हजरात, वक्त का इशारा है कि आपको कहें अलविदा। चलते चलते एक प्यारी सी गज़ल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ, आइए समात करते हैं।

सामिन, हम जिस दौरे जदीद में जी रहे हैं वहाँ इंसान की हलाकत और तबाही के कई सामान इंसानों ने खुद बना लिए हैं। नशे की लत ने इंसानों की सेहत को इस कदर मुतासर किया है कि अगर हम कहें कि इंसान अपने हाथ ही तंबाकू नोशी की लत में आकर खुदकुशी कर रहा है तो गलत ना होगा। फौरी मज़ा और जहनी दबाव को कम

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम रसमंजरी में सबसे पहले सुनिए मोहित चौहान की आवाज़ में दिल्ली 6 फिल्म के इस गीत को। संगीत AR रहमान का है और गीतकार हैं प्रसून जोशी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, फिल्म है अग्नि साक्षी। संगीत नदीम श्रवण का है और गीतकार है समीर।

कार्यक्रम रसमंजरी की अगली पेशकश मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की आवाज़ में। फिल्म है बागी। गीत के बोल कुमार ने लिखे हैं और संगीत मीत ब्रदर्स का है।

इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: तो दोस्तों, आपने सुनना शुरू कर दिया है बाल किलकारी रेडियो कार्यक्रम। बाल किलकारी के इस नए एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का खूब स्वागत है। अरे वाह कृति, आज तो तुम बिल्कुल किसी छोटी टीचर जैसी लग रही हो, और इतने सारे चार्ट देखकर मुझे डर भी लगने लगा है।
1: डरने की जरूरत नहीं है, आज मैडम ने हमें विश्व तंबाकू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है।
0: ओह, तभी मैं सोचूं कि तुम इतनी गंभीर क्यों बन रही हो, वरना तो तुम रास्ते भर गुनगुनाती रहती हो।
1: गंभीर मैं नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ कि इन दोनों विषयों को एक साथ कैसे जोड़ें ताकि सबको मजा भी आए और सीख भी मिले।
0: मेरे पास एक आइडिया है, क्यों न हम एक ऐसा संवाद बनाएं जिसमें एक बच्चा एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता हो लेकिन उसकी गलत आदतें उसे रोक रही हो।
1: वाह, यह तो बहुत मजेदार होगा। हम उसमें थोड़ी कॉमेडी भी डाल सकते हैं ताकि सब बच्चे हंसते हंसते सीख जाएं।
0: ठीक है, तो मैं बनता हूँ एवरेस्ट जीतने वाला महान पर्वतारोही अनुराग सिंह हिमालयी, और तुम बनो मेरी समझदार कोच आकृति।
1: पहले अपने जूते की लेस तो बांध लो महान पर्वतारोही जी, वरना एवरेस्ट तो दूर, तुम स्कूल की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाओगे।
0: देखो, मेरा मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि बड़े बड़े लोग शुरुआत में ऐसे ही साधारण दिखाई देते हैं।
1: अच्छा, तो महान पर्वतारोही जी, फिर बताइए कि एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी आपने कहाँ से शुरू की है?
0: मैंने सबसे पहले इंटरनेट पर एवरेस्ट की फोटो देखी और फिर घर की छत पर चढ़कर खुद को पर्वतारोही समझने लगा।
1: फिर क्या हुआ, कहीं छत से नीचे गिर गए थे क्या?
0: नहीं, लेकिन मम्मी ने जरूर चिल्लाकर कहा था कि अगर अभी नीचे नहीं उतरे तो तुम्हारी एवरेस्ट यात्रा यही खत्म कर दूंगी।
1: तुम्हारी मम्मी बहुत समझदार है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें समय रहते बचा लिया।
0: लेकिन सच बताओ आकृति, जब मैंने एवरेस्ट के बारे में पढ़ा तब मुझे लगा कि इंसान मेहनत करे तो सच में कुछ भी कर सकता है।
1: हाँ अनुराग, एवरेस्ट हमें यही सिखाता है कि रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो,

0: हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए।
1: तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? मेरी ट्यूशन वाली दीदी आ गई।
0: तो अच्छा है ना, वो भी तुम्हारी मदद कर देंगी पर्वतारोही बनने में। बिना पढ़े थोड़े ना बन जाओगे।
1: इसी हरकत पर नाराज होता हूँ मैं तुझसे। किसी की पूरी बात नहीं सुनती। पूरी बात दूसरे की भी सुन लिया करो, फिर कुछ बोला करो।
0: अच्छा बताओ, ऐसा क्या हुआ था?
1: वो बता रही थी कि एक 15 साल का लड़का तंबाकू का सेवन करता था, जिसके कारण घर पर उससे सब नाराज थे। जब सबने उसकी आदत छुड़वाने की कोशिश की तो उसने कुछ दिन कोशिश भी की, पर उसे तो उस चीज की लत लग चुकी थी, और बुरी चीजों की लत जल्दी छूटती थोड़े है।
0: अच्छा फिर क्या हुआ?
1: उसने पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया, और बस फिर क्या था, उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई, और उसके साथ साथ वो भी कमजोर हो गया।
0: वो भी तो हमारा दोस्त ही हुआ ना, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। ना जाने ऐसे कितने हमारे दोस्त इस बुरी आदत के शिकार बन चुके होंगे। मैडम ने और कुछ भी कहा क्या उसके बारे में?
1: मैडम ने कहा कि तंबाकू शरीर को अंदर से कमजोर बना देता है और इंसान जल्दी थकने लगता है।
0: यह तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कमजोर शरीर वाला इंसान बड़े सपने पूरे नहीं कर सकता।
1: तभी मैंने सोचा कि अगर कोई पर्वतारोही तंबाकू खाए तो वह आधे रास्ते में ही हाफने लगेगा,
0: और शायद एवरेस्ट उसे बोलेगा कि पहले अपनी बुरी आदतें छोड़ो फिर मेरे पास आना।
1: सच में अगर पहाड़ बोलने लगे तो दुनिया कितनी मजेदार हो जाएगी।
0: पहाड़ तो शायद यही कहेंगे कि इंसान खुद को मजबूत बनाए और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से दूर रहे।
1: मुझे लगता है कि तंबाकू सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि परिवार की खुशियों को भी नुकसान पहुंचाता है। मुझे अपने दादाजी की बात याद आती है, क्योंकि वह हमेशा कहते हैं कि अच्छी आदतें सबसे बड़ा खजाना होती है।
0: मेरी नानी भी यही कहती थी कि स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता और खुश मन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।
1: वैसे अगर मैं एवरेस्ट पर चढ़ गया तो सबसे पहले वहाँ से तुम्हें हाथ हिलाकर हेलो बोलूँगा,
0: और अगर ठंड लग गई तो वहीं से रोते हुए चिल्लाएगा, आकृति किसी से मदद मांगो, मुझे नीचे उतरना है।
1: नहीं, मैं बहुत बहादुर हूँ और मैंने अभी से ठंडी चीजें खाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है।
0: अच्छा, इसलिए शायद कल तुमने एक साथ 3 कुल्फियाँ खा ली थी और फिर रात में पेट दर्द से रो रहे थे।
1: वह तो रिसर्च का हिस्सा था, क्योंकि महान पर्वतारोही को हर मौसम के लिए तैयार रहना पड़ता है।
0: तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि तुम एवरेस्ट कम और कॉमेडी शो ज्यादा जीतोगे।
1: लेकिन सच में आकृति, मैं चाहता हूँ कि लोग तंबाकू छोड़कर अपने सपनों की तरफ आगे बढ़े।
0: और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा अपने माता पिता को भी समझाए कि सेहत सबसे जरूरी होती है।
1: अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो पहाड़ों की सुंदरता देख पाएंगे और जिंदगी का आनंद ले पाएंगे।
0: बिल्कुल सही, वरना अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते जीवन की सारी खुशियाँ फीकी पड़ जाती हैं।
1: तो दोस्तों, मैं आज स्कूल की सबसे ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर एवरेस्ट फतह करने वाला हूँ।
0: पहले अपने जूते के फीते तो बांध लो, अब तक नहीं बांधे, और अगर अब भी नहीं बांधोगे तो एवरेस्ट की जगह सीधे मेडिकल रूम जाओगे।
1: तुम हमेशा मेरे सपनों के बीच ब्रेक क्यों लगा देती हो?
0: क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सपने देखो भी और सुरक्षित भी रहो।
1: वैसे आकृति, अगर हमें बच्चों को तंबाकू से दूर रहने की सीख देनी है तो हमें कुछ मजेदार तरीका अपनाना चाहिए।
0: क्यों ना हम एक छोटा सा नाटक तैयार करें जिसमें तंबाकू एक खलनायक बन जाए और स्वास्थ्य सुपर हीरो बनकर उसे हरा दे।
1: वाह, और मैं सुपर हीरो बनूंगा जिसका नाम होगा कैप्टन हेल्दी बॉय।
0: और मैं बनूंगी सुपर गर्ल आकृति, जो सबको फल खाने के लिए और खेल खेलने की सलाह दूंगी।
1: और तंबाकू वाला विलेन बार बार कहेगा कि मैं लोगों की ताकत चुरा लूंगा।
0: तभी हम दोनों मिलकर बोलेंगे कि अच्छी आदतों के सामने बुरी आदतें कभी जीत नहीं सकती।
1: सच कहूँ तो मुझे अब समझ आने लगा है कि स्वस्थ रहना भी किसी एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा ही काम है।
0: हाँ, क्योंकि हर दिन हमें आलस, गलत आदतों और छोटी छोटी परेशानियों से लड़ना पड़ता है।
1: क्या तुम्हें कभी किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाने का मन करता है?
0: हाँ, लेकिन मुझे ऊंचाइयों से थोड़ा डर भी लगता है, इसीलिए मैं पहले छोटी छोटी पहाड़ियों से शुरुआत करूंगी।
1: डरना गलत नहीं होता, क्योंकि बहादुर वही होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़े।
0: वाह, आज तो तुम बिल्कुल मोटिवेशनल स्पीकर जैसी बातें कर रहे हो।
1: क्या करूँ, एवरेस्ट का असर है और ऊपर से मैडम की सीख भी याद आ रही है।
0: मुझे लगता है कि अगर हर बच्चा अपने जीवन में कोई अच्छा लक्ष्य बना ले तो वह गलत चीजों से अपने आप दूर रहेगा।
1: बिल्कुल,

0: क्योंकि जिसके सपने बड़े होते हैं वह अपनी सेहत का भी ध्यान रखता है।
1: और जो अपने शरीर का ध्यान रखता है वही जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंच पाता है।
0: कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा मन भी एक पहाड़ जैसा होता है जिसे जीतने के लिए धैर्य चाहिए।
1: हाँ, और अच्छी सोच उस पहाड़ पर चढ़ने वाली रस्सी होती है।
0: सुप्रभात दोस्तों, आज हम आप सबको एक छोटी सी बात बताने आए हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बना सकती है।
1: हमने सीखा कि तंबाकू जैसी बुरी आदतें इंसान के सपनों की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है।
0: अगर हमें जीवन में एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयां छूनी है तो हमें अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखना होगा।
1: स्वस्थ शरीर हमें ताकत देता है और अच्छा मन हमें सही रास्ता चुनने की समझ देता है।
0: मैं पहले सोचता था कि बहादुरी सिर्फ पहाड़ चढ़ने में होती है, लेकिन अब समझ आया कि बुरी आदतों से दूर रहना भी बहुत बड़ी बहादुरी है।
1: और दूसरों को सही रास्ता दिखाना सबसे सुंदर काम होता है, क्योंकि इससे कई जिंदगियां खुशहाल बन सकती हैं।
0: आकृति, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो।
1: हाँ, क्योंकि अगर हमारी बात सुनकर एक भी बच्चा अच्छी आदतें अपनाएगा तो वह बहुत खास बात होगी हमारे लिए।
0: मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने जीवन की एवरेस्ट जीते और हमेशा मुस्कुराते रहे।
1: और मैं चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसी आदतों का शिकार न बने जो उसकी खुशियाँ छीन ले।
0: चलो, आज हम दोनों एक छोटा सा वादा करते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा देंगे।
1: हाँ, और अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे एक दिन जरूर चमकते हैं।
0: अब मुझे लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट अब इतना शानदार हो गया है कि मैडम हमें सीधे स्कूल का ब्रांड एम्बेसडर बना देगी।
1: पहले अपना ट्यूशन बैग तो संभाल लो ब्रांड एम्बेसडर जी, अभी अभी तुम्हारी पानी की बोतल गिरते गिरते बची है।
0: यह सब बड़े लोगों के साथ होता रहता है, वैज्ञानिक भी प्रयोग करते समय चीजें गिरा देते होंगे।
1: फर्क बस इतना है कि वैज्ञानिक लैब में प्रयोग करते हैं और तुम रास्ते में। लेकिन सच बताऊं अनुराग, अच्छी आदतें भी धीरे धीरे बनती हैं, जैसे पर्वतारोही रोज अभ्यास करते हैं तभी ऊंचाई तक पहुंचते हैं।
0: हाँ, और बुरी आदतें भी धीरे धीरे ही इंसान को नीचे गिराती है। पहले लोग मजाक में शुरू करते हैं, फिर वही आदत मुश्किल बन जाती है। वैसे अगर मैं कभी एवरेस्ट पर गया तो अपने बैग में सबसे जरूरी चीज क्या रखूंगा पता है?
1: ऑक्सीजन सिलेंडर।
0: नहीं, आलू के पराठे।
1: हट बेवकूफ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम दुनिया के पहले ऐसे पर्वतारोही बनोगे जो पहाड़ चढ़ने से ज्यादा खाने की तैयारी करेगा।
0: अरे भाई, खाली पेट कोई ऊंचाई नहीं जीती जाती।
1: लेकिन स्वस्थ खाना जरूरी है, तभी शरीर मजबूत बनता है और इंसान गलत चीजों से दूर रह पाता है।
0: देखो आकृति, सामने पार्क में कितने बच्चे खेल रहे हैं।
1: हाँ, और यही सबसे अच्छी बात है, खेलना दौड़ना और हंसना यही असली ताकत होती है।
0: मुझे लगता है कि अगर लोग मैदान में ज्यादा समय बिताए तो गलत आदतों से कम पड़ेंगे।
1: अनुराग, सोचो अगर हमारे स्कूल में हेल्दी हीरोज क्लब शुरू हो जाए तो कितना मजा आएगा।
0: वाह, उसमें क्या क्या होगा?
1: यह जिम्मेदारी, हर बच्चा कोई एक अच्छी आदत अपनाएगा, कोई रोज व्यायाम करेगा, कोई समय पर सोएगा, कोई पौधा लगाएगा।
0: और मैं सबको हंसाने की जिम्मेदारी लूंगा ताकि कोई तनाव में न रहे।
1: यह जिम्मेदारी तुम्हें बिना पूछे भी मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें देखकर तो कोई भी हंसेगा।
0: अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो आज, अब तो मैं क्लब का चेयरमैन बनकर ही रहूंगा।
1: चेयरमैन बनने से पहले अपनी कुर्सी पर ठीक से बैठना सीख जाओ, पिछली बार तुम गिर गए थे।
0: वो गुरुत्वाकर्षण का हमला था।
1: हमारे साथ दीपक है जिन्होंने पहली बार कहानी लिखी है और वे हमें सुनाने वाले हैं।
2: इस कहानी का नाम है ममता का बलिदान। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली मीरा और उसके मासूम बेटे अरब की है। एक दिन मीरा अपने बेटे के साथ नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे। अचानक मौसम बिगड़ा और नाव का संतुलन बिगड़ गया। नाव पलट गई और दोनों गहरे पानी में समा गए। मीरा को तैरना आता था, लेकिन उसने बिना एक पल गमाए अपने बेटे को अपनी बाहों में कस लिया ताकि पानी की तेज लहरों में उसे दूर न ले जाए। वह खुद सांस रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी,

0: बेटे अरब का सिर पानी से ऊपर रखा। पानी का बहाव तेज था और मीरा का ताकत अब जवाब दे रही थी। उसने अपनी जिंदगी का परवाह न करते हुए अरब को किसी तरह तैरते हुए लकड़ी के तख्ते तक पहुंचाया। बेटे की जान बचाने के इस संघर्ष में मीरा की सांसें उखड़ने लगी। अरब को बचा लिया गया लेकिन उसने अपनी माँ को खो दिया। यह घटना साबित करती है कि दुनिया में माँ का प्यार ही अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देती है। इससे ये बात पता चलता है कि माँ का प्यार अपनी संतान के लिए सबसे ज़्यादा होता है।
1: अब समय सीमा को देखते हुए हमारे जाने का समय हो चुका है।
2: तो प्यारे श्रोताओं, आप भी हमारे इस बाल किलकारी के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता, कहानी या गीत इस कार्यक्रम में शामिल हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9142432658।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9142432658।
2: बाल किलकारी होगा और मजेदार।
1: मिलते हैं अगले रविवार,
2: जिसमें होगी नई सोच, नया विचार। इस कार्यक्रम को दे ढेरों प्यार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है बाल कार्यक्रम बाल मंडली।

0: बाल मंडली कार्यक्रम में सभी प्यारे बच्चों को रेडियो दीदी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। सभी बच्चों को बाल मंडली कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? अभी आपके स्कूल में गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई होगी, है ना? अब तो खूब सारी मस्ती भी कर रहे होंगे। बच्चों, मस्ती के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है। एक प्यारी सी बच्ची से आपको मिलवाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही प्यारी बच्ची आई हुई है, वेदांजलि। कैसी हो वेदांजलि?
1: ठीक हूँ।
0: आप अपने दोस्तों को अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम वेदांजलि है। मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। मैं 7 साल की हूँ।
0: अच्छा, तो अभी आप किस क्लास में गई? क्लास 3rd में ना?
1: हाँ,
0: तो कैसा लग रहा है अभी नया नया क्लास में जाने से? कैसा लगता है अभी?
1: अच्छा लगता है।
0: नई नई किताबें भी मिला होगा आपको,
1: हाँ,
0: है ना? तो आपको कौन सा विषय ज्यादा पसंद है?
1: साइंस और गणित।
0: और वेदांजलि, आपके घर में कोई पालतू जानवर है?
1: हाँ,
0: पालतू जानवर आपके आसपास तो घर में होंगे, या आपने बाहर भी देखते होंगे? डॉगी
1: हाँ
0: है ना? तो आप कभी उनको कुछ खाना, जैसे उनको भूख लगती है तो कभी कुछ उनको खाने के लिए देते हैं?
1: हाँ
0: उसका ध्यान रखती हैं?
1: हाँ
0: कैसे रखती हैं?
1: मैं उनको थोड़ा सा खाना कुछ दे देती हूँ।
0: हाँ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम भी है ना, उनको
1: हाँ,
0: प्यास भी लगती है।
1: पानी दे देती हूँ।
0: हाँ, और क्या क्या कर सकती हैं आप पालतू जानवर? अगर हमारे आसपास गली में, मोहल्ले में या घर के आसपास रहता है तो आप कैसे उसकी मदद कर सकती हैं? आप बताएंगी अपने दोस्तों को? बताओ।
1: हाँ, जैसे हम लोग अपने पालतू जानवरों को कोई ठंडी जगह पे रखना चाहिए हम लोग को, और हम लोग को उन्हें धूप से बचाना चाहिए। उन्हें हमें ठंडी ठंडी पानी देना चाहिए ताकि वह गर्मी में सही से रह सके।
0: हाँ, हम तो अपने साथ अपने घर में अपना तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन हमें अपने पालतू जानवर का भी ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जानवर भी

0: गर्मी से बहुत परेशान होते हैं।
1: हाँ
0: तो बच्चों, अगर आपके घर में पालतू जानवर है, जैसे डॉगी है, बिल्ली है, गाय है, खरगोश है ना, बहुत
1: हाँ
0: सारे घर में खरगोश भी रखते हैं, तो
1: हाँ
0: इन्हें देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। तेज गर्मी में उन्हें हीट स्ट्रोक भी हो सकता है।
1: हाँ दीदी,
0: तो गर्मी के मौसम में पालतू जानवर को हम देखभाल कैसे कर सकते हैं? तो उनको कैसे, पालतू जानवर को हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ पे हवा आती हो। धूप में रहने से
1: दीदी
0: तो और उनको गर्मी लगेगी,
1: हाँ
0: तो उनको
1: दीदी
0: छांव वाली जगह में रखना चाहिए। अगर घर में पंखा हो या कूलर हो तो उसके सामने भी बैठाना चाहिए, है
1: हाँ
0: ना।
1: दीदी
0: जैसे आपने बताया कि जानवरों को हमेशा उसको प्यास लगी है, बर्तन रख दें, है ना,
1: हाँ
0: पानी
1: जी
0: का, जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके। और कम से कम उसकी पानी भी बदल दे, क्योंकि पानी साफ सुथरा हो तो बीमार भी नहीं पड़ेगा।
1: हाँ दीदी
0: और गर्मी में जानवरों को हल्का और पौष्टिक खाना देना चाहिए, है ना, और उसको नहलाना भी चाहिए। नहलाने से क्या होता है, उसका शरीर ठंडा
1: ठंडा
0: रहता है।
1: रहता है।
0: हाँ, जब आप भी नहा के निकलती हैं तो एक फ्रेश लगता है ना आपको नहाने से,
1: हाँ
0: तो
1: दीदी
0: वैसे जानवरों को भी लगता है। उनके रहने का भी जो स्थान है वो साफ सुथरा होना चाहिए।
1: हाँ दीदी
0: और बच्चों, गर्मी में बाहर के जानवरों को, जैसे डॉग है, पक्षी है, बिल्ली है, क्यों पानी से भरा बर्तन रखिए। पक्षियों के लिए पानी और दाना भी रखिए, है
1: हाँ
0: ना,
1: दीदी
0: पक्षी भी प्यास लगे तो पानी को पी सके।
1: हाँ
0: और एक
1: दीदी
0: कटोरा में कुछ दाना रख दीजिए
1: हाँ दीदी
0: तो वो खाना भी खा लेगी, है ना।
1: हाँ
0: तो पक्षियों के लिए पानी दाना जरूर रखिए। ये छोटा सा काम है बच्चों, लेकिन बहुत ही बड़ा पुण्य और दया का काम है ना।
1: हाँ दीदी
0: याद रखिए बच्चों, जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें हमारी मदद और देखभाल की भी जरूरत होती
1: होती है।
0: है ना।
1: हाँ दीदी
0: मेदांजलि, नशा करना सही है कि गलत है?
1: गलत है दीदी
0: अपने दोस्तों को बताइएगा कि नशा करना क्यों गलत है,
1: हाँ दीदी
0: बताइए।
1: नशा हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। जो लोग नशा करते हैं उनके शरीर और दिमाग पर दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जो लोग नशा करते हैं उन्हें बहुत तरीके की गंभीर बीमारी हो सकती है। जो लोग नशा करते हैं ना ही वो पढ़ पाते और ना ही कोई काम कर पाते, इसलिए हमें नशे को ना कहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, मिताली तो बहुत अच्छी बात कही कि नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करना गलत बात है
1: हाँ
0: ना।
1: दीदी
0: और नशा क्या होता है, जैसे कि तंबाकू है, सिगरेट है,
1: हाँ दी
0: गुटखा है, ड्रग्स है। शुरुआत में ये चीजें आकर्षक लग सकती है। कई दोस्तों के साथ रहने से अगर कोई दोस्त नशा करने के लिए कहता है
1: हाँ
0: तो आपको उसे मना
1: ना
0: करना
1: मना
0: चाहिए,
1: करना
0: है ना।
1: चाहिए।
0: अगर दोस्त आपको कोई जबरदस्ती बोलता है कि नहीं थोड़ा सा करो ना अच्छा लगेगा, तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए ना। और दोस्त को भी समझाना चाहिए कि नशा करना अच्छी बात
1: नहीं
0: नहीं है।
1: होती है
0: तंबाकू खाने, सिगरेट पीने से हमारे शरीर को नुकसान होता है,
1: हाँ
0: इससे
1: दीदी
0: फेफड़े खराब हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती
1: हाँ
0: है,
1: दीदी
0: और इससे दांत भी खराब हो जाता है और
1: हाँ
0: शरीर
1: दीदी
0: भी कमजोर हो जाता है, जैसे अभी आपने बताया। बच्चों, आपको बता दें, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस जागरूक करने का एक खास दिन है। इसे हर साल मनाया जाता है ताकि लोग तंबाकू के नुकसान को समझे और इससे दूर रहे। बच्चों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें ये सिखाता है कि स्वस्थ जीवन सबसे बड़ा धन है, इसलिए हमें तंबाकू से दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी इसके नुकसान के बारे में जागरूक करना चाहिए।
1: जब हाँ
0: आप अच्छे से खेलिए, पढ़ाई कीजिए, बच्चे लोग का क्या काम है, यही सब काम है
1: हाँ
0: ना।
1: दीदी
0: और आपको जो भी हॉबी है, आपकी क्या क्या हॉबी है?
1: मैं ड्राइंग करना मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा, आप ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, म्यूजिक सीखिए, है
1: हाँ
0: ना।
1: दीदी
0: अभी गर्मी की छुट्टी में तो बहुत सारे बच्चे सीखते हैं ये सब। आप क्या सीख रही हैं अभी?
1: अभी मैं ड्राइंग भी सीख रही हूँ।
0: ड्राइंग करना सीख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, तंबाकू जैसी बुरी आदतों से दूर रहना ही समझदारी है। बच्चों, नशा करना गलत है और इससे आपकी सेहत और भविष्य दोनों खराब कर सकता है। बड़ों को भी बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए और उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहिए। तो बच्चों, नशा से दूर रहे, एक स्वस्थ जीवन जिए। वेदांजलि, आप अपने नन्हे दोस्तों को क्या कोई कविता सुनाएंगी?
1: हाँ दीदी
0: सुनाइए।
1: हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जयकार गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जो

0: तोड़ेंगे, हम हिमगिरि पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, माता के बंधन को खोलेंगे, हम इसकी शान बढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे।
1: वाह, बहुत सुंदर। भारत की ध्वजा
0: उड़ाएंगे।
1: उड़ाएंगे। भारत देश हमारा सबसे प्यारा देश होता
0: हाँ
1: है
0: दीदी।
1: ना? आप अपने देश से प्यार करते हैं?
0: हाँ दीदी।
1: बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और वेदांजलि, आप एआई के बारे में जानती हैं?
0: नहीं दीदी।
1: नहीं जानती, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एआई आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है ना?
0: हाँ दीदी।
1: और नई नई तकनीकों ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। इन्हीं तकनीकों में से एक महत्वपूर्ण तकनीक है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल
0: इंटेलिजेंस।
1: वेरी गुड। आपको तो पता है हमारे जीवन में इसका क्या काम होता है, पता है?
0: नहीं दीदी, नहीं।
1: एआई का मतलब है कि ऐसे मशीनें या कंप्यूटर बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकता है ना, समझ
0: हाँ
1: सकता
0: दीदी।
1: है और कोई निर्णय भी ले सकता है। एआई की मदद से हम कंप्यूटर सीख सकते हैं, समस्याओं का हल कर सकते हैं और कई काम आप कर सकती हैं। आज के समय में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। बच्चों, हमारे जीवन में एआई का उपयोग कई जगह देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप मोबाइल फोन पे वॉइस असिस्टेंट, गूगल मैप, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल
0: हाँ
1: मीडिया जैसे कई ऐप होते हैं जो
0: दीदी।
1: एआई की मदद से काम करते हैं, है
0: हाँ
1: ना?
0: दीदी।
1: बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई का महत्व बढ़ता जा रहा है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप छात्रों को पढ़ाई में मदद करते हैं, करते हैं ना? आपने कई बार ऑनलाइन आपने पढ़ाई किया होगा,
0: हाँ, ऑनलाइन क्लास
1: क्लास
0: होती है।
1: चलता है ना? उसी तरह से एआई के मदद से बच्चे अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकती हैं, है ना? और कठिन विषय को भी आसानी से समझ सकती हैं। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कई टीचर्स हैं, ऐप हैं, आप उसमें उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं
0: हाँ
1: घर
0: दीदी।
1: में, ठीक है? और इससे शिक्षा अधिक सरल और रोचक भी बनती जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई का उपयोग बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है। डॉक्टर एआई के मदद से बीमारियों का पता जल्दी लगा सकते हैं।
0: हाँ दीदी।
1: और व्यापार और उद्योग क्षेत्र में भी एआई का उपयोग बढ़ रहा है। कई कंपनियां अपने काम को तेज और सटीक बनाने के लिए एआई का प्रयोग करती हैं। इससे समय की भी बचत होती है और काम की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। एआई का उपयोग सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। कैमरे और सिस्टम लोगों की पहचान कर सकते हैं और संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने में मदद भी करते हैं। बच्चों, आजकल कई मोबाइल ऐप, वेबसाइट और मशीनें एआई की मदद से काम करती हैं। वेदांजलि, वैसे तो एआई के कई फायदे हैं, लेकिन
0: हाँ
1: इसका
0: दीदी।
1: उपयोग भी हमें सावधानी से करनी चाहिए।
0: हाँ दीदी।
1: हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मशीनें इंसानों की मदद के लिए है, ना कि इंसानों की जगह लेने के लिए। हर चीज मशीन पे हम नहीं छोड़ सकते, है
0: हाँ
1: ना?
0: दीदी।
1: इसलिए एआई का उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए।
0: हाँ
1: कभी कभी
0: दीदी।
1: एआई की गलत जानकारी भी दे सकता है। अगर
0: हाँ
1: लोग
0: दीदी।
1: बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर ले तो इससे गलत फैसले भी हो सकते हैं। और कई लोगों की निजी जानकारी रहती है, अगर इस जानकारी का गलत उपयोग हो जाए तो बहुत ही नुकसान हो सकता है।
0: हाँ दीदी।
1: तो बच्चों, एआई एक आधुनिक तकनीक है जो हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाने में मदद कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसका उपयोग समझदारी से करना चाहिए ताकि इसका लाभ समाज और मानवता के लिए सही तरीके से करें। वेदांगी, अब आप अपने दोस्तों को क्या सुना रही हैं?
0: नन्ही नन्ही प्यारी चिड़िया के बारे में।
1: चिड़िया के बारे में सुना रही हैं? अच्छा, सुनाइए, लेकिन उससे पहले बताइए आपको कौन सी चिड़िया प्यारी लगती है?
0: कोयल,
1: कोयल। अच्छा, कोयल की क्या खास बात पसंद आती है आपको?
0: वो जब आवाज करती है तो मुझे बहुत अच्छा
1: कैसी
0: लगता।
1: आवाज करती है ये? हाँ, अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छा कोयल की आवाज निकाल रही है। तो ठीक है, कोयल की तो अपनी आवाज सुंदर है ही है, आपकी भी आवाज बहुत अच्छी है। तो सुनाइए अपने दोस्तों को प्यारी चिड़िया की कविता।
0: नन्ही नन्ही प्यारी चिड़िया नित नया गीत गाती है, बिस्तर से हमें उठाने रोज सुबह आ जाती है, जब भी इनको पकड़ना चाहो फुड़ करके उड़ जाती है, फुदक फुदक कर पंख हिलाती, ची ची ची चहचहाती, लगती बहुत ही सुंदर प्यारी, बच्चे को भा जाती, सब मिलकर जब बात करती है बहुत शोर मचाती।
1: अरे वाह, बहुत शोर मचाती है। अच्छा, तो आप कभी देखी है शोर मचाते हुए चिड़ियों को?

0: नहीं,
1: नहीं
0: आपने देखा होगा ना शाम के समय बहुत सी चिड़ियां एक साथ जब वो
1: हाँ
0: अपने घर की ओर जाती है ना,
1: हाँ
0: खूब सारी
1: देखी
0: आवाज करके भी जाती है, या कहीं घोंसलों पे सब एक साथ पेड़ में जमा होती है तो उस समय भी काफी आवाज आती है ना चिड़ियों की।
1: हाँ दीदी,
0: वेदांजलि, आप मम्मी के साथ कुछ रसोई में मदद करती हैं?
1: हाँ करती हूँ।
0: क्या क्या मदद करती हैं बताइए।
1: जैसे कि मैं प्लेट लगा देती हूँ,
0: हाँ
1: सब्जी धोने में मदद करती हूँ,
0: अच्छा,
1: सलाद काटने में मदद करती हूँ, और ठंड के मौसम में मटर छिलकर दे देती हूँ।
0: अरे वाह, आप तो बहुत सारी चीजें कर लेती हैं, आप तो इतनी छोटी हैं लेकिन बहुत सारा काम कर लेती हैं। और कुछ बनाना भी आता है? कुछ
1: हाँ
0: किचन में बना भी सकती हैं?
1: हाँ
0: क्या बना लेती हैं?
1: चाउमीन बना लेती हूँ,
0: चौमिन, अरे वाह, लेकिन चौमिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बच्चे
1: ज्यादा नहीं खाती हूँ
0: नहीं
1: मैं।
0: खाती हो लेकिन आप बना लेती हैं। अच्छा, तो
1: हाँ
0: उसका कटिंग कौन करता है? तो उसके लिए जो वेजिटेबल्स उसमें डालते हैं कटिंग कौन करता है?
1: मम्मा कर
0: क्या
1: देती।
0: मम्मी करती है? अच्छा, तो चौमिन अच्छा लगता है।
1: हाँ
0: अच्छा बच्चों, रसोई से जुड़ना अच्छी बात है क्योंकि इससे हम कई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और एक जिम्मेदारी को भी समझते हैं कि हमें
1: हाँ
0: किचन में
1: दीदी,
0: जाना है। और लेकिन किचन में काम करते समय मम्मी है या कोई भी बड़े लोग हैं उनकी देख रेख में और सुरक्षित तरीके से काम करना चाहिए, है ना।
1: हाँ
0: किचन
1: दीदी,
0: में आग भी लग सकता है,
1: हाँ
0: जैसे
1: दीदी,
0: चाकू है आप कुछ काटेंगे तो हाथ भी कट सकता
1: हाँ
0: है ना।
1: दीदी,
0: आप जैसे मम्मी के लिए क्या से मदद कर सकती, और भी कर सकती हैं, फल जैसे आपने बोला कि मैं फ्रूट्स धो देती हूँ या फ्रूट्स को छील भी सकती हूँ,
1: हाँ
0: है ना,
1: दीदी,
0: सलाद भी बना सकती हैं।
1: हाँ दीदी,
0: आप जैसे मम्मी कुछ नाश्ता बनाती हैं तो आपने बताया कि मैं टेबल पे रख देती हूँ, जैसे पापा को कुछ नाश्ता देना है, दादाजी हैं दादाजी को नाश्ता देना है
1: हाँ
0: तो
1: दीदी,
0: आप मम्मी की मदद कर सकती हैं,
1: हाँ
0: है ना,
1: दीदी,
0: या किसी को प्यास घर में लगी है तो पानी दे सकती हैं,
1: हाँ दीदी,
0: है ना। जैसे अभी आम का सीजन है तो आप मैंगो शेक भी जैसे बना सकती हैं, है
1: हाँ
0: ना, कटिंग
1: दीदी,
0: करके। बच्चों, ये सब किचन का काम करने से थोड़ा सीख भी जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मजा भी आता है। आपको आता है मजा
1: हाँ
0: किचन
1: दीदी,
0: में काम करना?
1: हाँ दीदी,
0: लेकिन हमें किचन में सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि रसोई में गैस चूल्हा, गर्म बर्तन या तेज चाकू होते हैं जो खतरनाक भी हो सकते हैं, है
1: हाँ
0: ना।
1: दीदी,
0: इसलिए बच्चों को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए
1: हाँ दीदी,
0: और मम्मी के साथ ही रहना चाहिए। ये नहीं कि अकेले जाके अपने किचन में कुछ कुछ कर रहे हैं, नहीं ना करती हो।
1: नहीं करती हूँ।
0: हाँ, जैसे गरम बहुत सारा चीज होता है किचन में रखा हुआ है, दूध गरम है या सब्जी कुछ बना के या कुकर कुछ दाल बना के मम्मी रखी हुई है, आपको पता नहीं है, और कभी कभी गरम से छू भी सकते हैं, उससे क्या
1: हाँ
0: हो
1: दीदी,
0: जाएगा,
1: हाथ जल सकता
0: हाथ
1: है।
0: जल सकता है, तो ये सब चीज का तो सावधानी रखना चाहिए ना किचन में।
1: हाँ दीदी,
0: बच्चों, आजकल रसोई का काम करना चाहे वो लड़का हो या लड़की सभी को करना चाहिए। बच्चों, सही तरीके से और बड़ों की निगरानी में रसोई में काम करें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। रसोई में क्या क्या चीजें रहती हैं सब्जी में?
1: सब्जी में आलू, बैंगन, प्याज, टमाटर, खीरा, ये सब।
0: आपको कौन सी सब्जी पसंद है?
1: आलू
0: आलू पसंद है? कैसा लगता है आलू?
1: अच्छा लगता है,
0: तो आलू का आप क्या, मम्मी क्या बना के आपको आलू का देती हैं?
1: भुंजिया, आलू और सोयाबीन का सब्जी, आलू कटहल का सब्जी,
0: अच्छा, आलू कटहल का सब्जी,
1: वो भी
0: अच्छा
1: पसंद है।
0: कटहल भी पसंद है और
1: हाँ
0: आलू भी
1: दी,
0: पसंद है,
1: हाँ दीदी,
0: अच्छा। और आलू का क्या क्या बनता है आप बताइए तो मुझे।
1: भुंजिया और आलू दम बनता है।
0: और एक आलू का बहुत ही फेवरेट जो हर बच्चे को पसंद आता है, आलू का पराठा,
1: हाँ
0: अच्छा लगता है ना। और एक चीज और अच्छा लगता है, आलू भर के बनता है।
1: आलू भर के बनते,
0: हाँ बताओ क्या बनता है वो? समोसा खाई हो,
1: हाँ
0: उसमें आलू रहता है ना,
1: हाँ
0: कैसा लगता है आलू का समोसा?
1: अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है ना। बच्चों, हर किसी रसोई में पाए जाने वाले एक ऐसी सब्जी जो अमूनन सभी को पसंद आती है, अगर किसी से पूछा जाए खासकर बच्चों से, आलू सब्जी में पहली पसंद होगी, है ना बच्चों। आलू को एक ऐसी सब्जी के तौर पे जाना जाता है जिसको आप हर किसी भी सब्जी के साथ मिलाकर खा सकते हैं, आलू भिंडी, आलू टमाटर, आलू गोभी, आलू बैंगन, वैसे भी

0: आलू दम, आलू का चोखा, आलू का पराठा, आलू के पकौड़े और ना जाने कितने नाम आलू के, है
1: हाँ
0: ना।
1: दीदी,
0: कितने भी फूड आइटम हो जो आलू के साथ बनते हैं।
1: हाँ दीदी,
0: बच्चों, आलू की इसी खासियत को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2024 से हुई है। बच्चों, भारत में कैसे आया था आलू? आपको बता दें, आलू का भी एक इतिहास है। कहते हैं बच्चों कि कोलंबस जब

0: बच्चों, भारत में कैसे आया था आलू? आपको बता दें, आलू का भी एक इतिहास है। कहते हैं बच्चों कि कोलंबस जब दुनिया की यात्रा में निकले थे तो अपने साथ आलू लेकर निकले थे, लेकिन भारत में आलू को यूरोपीय और डच व्यापारी अपने साथ 15वीं शताब्दी में भारत लेकर आए थे। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने आलू के बिजनेस में अपना फायदा देखा और 18वीं सदी में भारत में इसकी खेती शुरू हो गई। भारतीय लोगों ने भी आलू को खूब पसंद किया और इसे अलग तरह तरह के डिश बनाने लगे। आलू की खासियत की बात करें तो बच्चों, इसमें 70% पानी और 20% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा आलू में विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन विटामिन सिक्स और फाइबर पाया जाता है।
1: हाँ दी,
0: आलू स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलती है। ये बच्चों और बड़ों सभी के लिए लाभदायक है। आलू से शरीर को ताकत मिलती है और भूख भी मिटती है। और बच्चों को भी तो आलू से बने व्यंजन बहुत पसंद आते हैं, खासकर समोसा तो जरूर खाते हैं बच्चे,
1: हाँ दीदी।
0: है ना?
1: दीदी, मैं आपको आलू के बारे में एक कविता सुनाऊं?
0: हाँ, अच्छा, आलू के ऊपर आपकी कविता भी आती है।
1: हाँ।
0: अच्छा, तो सुनाइए।
1: आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारा रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप पार्क में घूमने जाती हैं?
1: हाँ दीदी, जाती हूँ
0: पार्क में क्या क्या करती हैं?
1: पार्क में, मैं खेलती हूँ
0: और
1: और मस्ती करती हूँ।
0: अपने दोस्तों के साथ?
1: हाँ दीदी,
0: अच्छा, पार्क में बच्चों के साथ खेलने से क्या होता है,
1: मजा आता है।
0: मजा आता है? कौन कौन से खेल खेलती हैं?
1: पकड़म पकड़ाई खेलती हूँ, फुटबॉल खेलती हूँ, और बस इतना ही।
0: छुआछुई नहीं खेलती हैं?
1: हाँ वो भी खेलती थी।
0: खेलती है ना, लेकिन हमें बच्चों के साथ अच्छे से खेलना चाहिए, है ना? एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, इससे
1: हाँ
0: चोट भी लग सकती है
1: हाँ
0: ना?
1: दीदी,
0: और पार्क में झूला भी होता है,
1: हाँ
0: तो
1: दीदी,
0: झूला भी झूलना चाहिए, लेकिन ध्यान से कि चोट ना लग जाए या ऊपर से गिर नहीं जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए,
1: हाँ
0: है
1: दीदी,
0: ना? और जब बच्चे खेलने जाते हैं पार्क में, तो बहुत सारे फूल पौधे भी होते हैं,
1: हाँ
0: है
1: दीदी,
0: ना? तो आप उसे तोड़ती तो नहीं है?
1: नहीं।
0: पार्क में फूल पौधे देखकर अच्छे भी लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं, है ना? तो बच्चों, पार्क बच्चों के लिए बहुत ही आनंद और खुशी की जगह होती है। जब बच्चे पार्क में जाते हैं तो उसका मन खिल जाता है ना? पार्क में हरियाली, फूलों की खुशबू और ताजी हवा सुकून से भर देती है।
1: हाँ दीदी,
0: वहां पे खुलकर खेलते हैं, हंसते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ती है ना?
1: हाँ दीदी,
0: और आज के समय जब बच्चे ज्यादातर समय मोबाइल या टीवी के सामने बिताते हैं, तो पार्क में जाना उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो गया है ना?
1: हाँ
0: ज्यादा टीवी
1: दीदी,
0: और मोबाइल नहीं देखना चाहिए,
1: हाँ
0: इसकी जगह
1: दीदी,
0: आप पार्क में जाइए, खेलिए, अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए। उससे क्या होगा, हमारा शरीर मजबूत
1: शरीर
0: होगा,
1: मजबूत
0: है
1: होगा।
0: ना? मेंटली स्ट्रांग भी होंगे,
1: हाँ दीदी,
0: है ना? ज्यादा मोबाइल टीवी देखेंगे तो क्या होगा, आंखें खराब हो जाएगी।
1: हाँ दीदी,
0: पार्क में झूले, फिसल पट्टी, शीशा झूला झूलने से, और खेलने के लिए खुला मैदान भी होता है, तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ झूले झूलते हैं, दौड़ लगाते हैं, खेलों के जरिए एक दूसरे से मिलना जुलना सीखते हैं। इससे उनमें क्या होता है, फ्रेंडशिप बढ़ता है ना? एक डिसिप्लिन सीखते हैं।
1: हाँ दीदी,
0: पार्क में खेलने से शरीर की कसरत भी होती है, जिससे बच्चे स्वस्थ और चुस्त भी होते हैं। वहां की प्रकृति के बीच रहकर बच्चे पेड़ पौधे पक्षियों के बारे में भी जान पाते हैं। लेकिन हाँ, साथ में हमें पार्क के कुछ नियम भी सीखना चाहिए, पालन
1: सीखना
0: करना
1: चाहिए,
0: चाहिए।
1: पालन करना चाहिए,
0: जो पार्क में फूल पौधे हैं उसे तोड़े नहीं,
1: तोड़ना नहीं
0: है ना?
1: चाहिए,
0: जो झूले लगे हुए हैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाएं, और गंदगी ना फैलाएं,
1: गंदगी
0: है
1: नहीं
0: ना?
1: फैलाना
0: कुछ भी खा
1: चाहिए।
0: के कुछ भी गंदा नहीं फैलाना चाहिए। बच्चों, पार्क बच्चों के लिए ना सिर्फ खेलने की जगह है, बल्कि ये सीखने और स्वास्थ्य और खुशी का केंद्र भी है। पार्क में खेलिए, मुस्कुराइए और प्रकृति के साथ आनंद उठाइए। तो बच्चों, घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि हम आपसे अब विदा ले। तो खूब खेलिए, खूब मस्ती कीजिए, जीवन में हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ गुंजे दीदी अब आपसे विदा चाहती है। जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे बाल कार्यक्रम बाल मंडली। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट, तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
2: ले आ गया नया किडबैग,
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ। ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
10: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ, इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
11: नमस्कार सर। नमस्कार।
12: नमस्कार सर।
10: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है, एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
11: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर।

0: मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदरवीर जी का क्या है?
0: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूं। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था, तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदरवीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
0: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। हमारे लिए हम

0: भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: तो हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पर जाके बैठ, वहाँ पर स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूँ कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी

गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा। यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे, गर्व व्यक्त कर रहे। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता

राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्रपट्टी गांव में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा।

इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब, कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवंत देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात

0: टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्ड राज्यस्य रांची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु 4 राष्ट्रियमानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्न

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत कलाकार थी मीना ठाकुर और लक्ष्मी कुमारी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम वैज्ञानिकी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है विज्ञान जगत के पाक्षिक कार्यक्रम वैज्ञानिकी में, जिसे हम लेकर आते हैं माह के पहले, तीसरे और पांचवें रविवार दोपहर के 12:30 पर। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ विज्ञान जगत की ढेरों जानकारियों के साथ।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व तंबाकू दिवस जो आज है, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस। आज आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुकी है। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। COVID-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे। कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं,

0: ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर वी के श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग अल्कोहल टोबैको एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनकी जो उनमें बुराइयां थी उनके बचाते बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। एक तो ये दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। अच्छा, उसके बाद सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर, जो वहां से ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए, और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कंटिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है, ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की 13 बाइट में इसकी स्पीड हो, 13 बाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है। एक तो मैंने आपको भाषा नहीं बताया, AI के क्षेत्र में केवल हम भाषा तक ही नहीं लिखे, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी AI का उपयोग यहाँ के, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
0: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष

0: इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
1: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोग का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मेटेरियल है, तो वो अगर कुछ प्लास्टिक्स है तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है, तो इसलिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्कली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्कली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली यूज करते हैं, तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है एक नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिससे इस जो हमें ANRF से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका सब दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
2: आज है विश्व तंबाकू दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। तंबाकू दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 70 लाख से अधिक मौतों का कारण बनता है, जिनमें गैर धूम्रपान करने वालों का परिणाम दूसरे नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सदस्य राज्यों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए इस वर्ष तंबाकू निषेध दिवस 2026 का जो विषय है वो है आकर्षण का पर्दाफाश करना, यानी निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित इस अभियान का मुख्य फोकस युवाओं और किशोरों को सुरक्षित रखना है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे तंबाकू उद्योग, ई सिगरेट, निकोटीन पाउच और अन्य आकर्षक उत्पादों के माध्यम से युवाओं को लगातार निशाना बना रहा है। तंबाकू चाहे धूम्रपान के रूप में हो या चबाने वाले गुटखे के रूप में हो, मुंह, गले, फेफड़ों, पेट और अग्न्याशय के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। वहीं अगर हृदय रोग की बात करें तो यह रक्त वाहिकाओं को कमजोर करता है, जिससे दिल का दौरा, कोरोनरी धमनी रोग और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। फेफड़ों में भी कई तरह की समस्याएं इसकी वजह से देखने को मिलती है। धूम्रपान फेफड़ों के उत्तकों को नष्ट कर देता है। इसके कारण दमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और COPD जैसी

0: सांस की बीमारियां हो जाती हैं। मुंह और दांतों की समस्या तो बहुत ही आम है। तंबाकू चबाने से मसूड़े सिकुड़ जाते हैं, दांत खराब होने लगते हैं और मुंह का खुलना यानी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की समस्या हो जाती है। पाचन तंत्र को यह नुकसान पहुंचाता है। इसके सेवन से पेट में अल्सर, एसिड रिफ्लैक्स और सीने में जलन की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है। वहीं कमजोर इम्यून सिस्टम का भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। तंबाकू में पाए जाने वाले रसायन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं, जिससे व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ता है। तंबाकू की लत मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचाती है। यदि आपके पहचान में या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति है जो तंबाकू छोड़ना चाहता हो, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की टोबैको एंड नेशनल हेल्थ पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन और मार्गदर्शन की मदद ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं, किसी भी तरह की साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी हो या कोई शिकायत हो, आप भारत सरकार के सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता पहल अर्थात ISEA के तहत व्हाट्सएप नंबर 9490771800 या फिर टोल फ्री नंबर 1930 पर संदेशों का आदान प्रदान कर साइबर अपराध से संबंधित जानकारी को हासिल कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
1: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार,
2: खास तौर पर कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं। इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है। मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है, और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
0: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती

0: की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अल्गी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाली दरभंगा।
1: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। तो खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या जो उसकी आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
2: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सेटेलाइट

0: की न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसके गुणवत्ता में भी कोई खराब न हो। तो खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या जो उसकी आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
1: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
2: अब एक ये होता है कि आपने जैसे तूफान की बात की, आपने कहा ये एक सूर्य का तूफान आता है, उसका एक डायनामिक्स है, सूरज का जो सौर डायनेमो है उसको समझना जरूरी हो जाता है। और आप कोडे कैनाल वेधशाला जो है हमारा, उसमें 100 वर्षीय डाटा से सूर्य के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया गया है। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो आदित्य L1 मिशन है उसके को चेयरमैन भी है। तो इन सब के अध्ययन से क्या लगता है कि हमारे देश में लोगों को और भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को किस तरह की उपलब्धियां मिलने की उम्मीद है, इसका महत्व आगे क्या बढ़ेगा?
3: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाइकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि सूर्य का एक्चुअली मैंने जैसा बताया वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, तो उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है एंड वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है। तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है उसको स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी उतना अच्छा है। उसीलिए ये कोडाइकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया एंड उसी जमाना में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल के जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना जो भी हमारा आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11-year साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे यहाँ पे। वो अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है, तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
4: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। K.R. रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भट्ट।

आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरांबा, महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर्य खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। अब है सवाल हमारे जवाब आपके, जिसमें हर बार हम आपसे दो सवाल पूछते हैं, लेकिन सबसे पहले बताते हैं पिछले अंक के दोनों पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। पिछले अंक में हमने पूछा था हंता वायरस के हंता की शुरुआत कहां से हुई, तो श्रोताओं इसका सही जवाब है हंतन रिवर साउथ कोरिया से। और दूसरा प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अब आज के दो सवाल ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, और आज का दूसरा प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक वेंकट रमन राधाकृष्णन की मुख्य खोज क्या है। तो इन दोनों सवालों के जवाब आप हमें चाहें तो पत्राचार के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से लिख भेज सकते हैं। नोट करें पत्राचार का पता, कार्यक्रम वैज्ञानिकी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800001। हमारा ईमेल पता है feedback@gmail.com। और चलने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, श्रोताओं किसी भी तरह की साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी हो या कोई शिकायत हो, आप भारत सरकार के सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता पहल अर्थात ISEA के तहत व्हाट्सएप नंबर 9490771800 या फिर टोल फ्री नंबर 1930 पर संदेशों का आदान प्रदान कर साइबर अपराध से संबंधित जानकारी को हासिल कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ मुझे यानी अल्पी को अनुमति दीजिए, नमस्कार। सीखिए कुछ नया, सोचिए कुछ अलग और जुड़े रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रम वैज्ञानिकी से।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्रपट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन

0: पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा।
2: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
3: जी हाँ।
2: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
3: माती रे।
2: ए माती रे मोरो मोते,
3: मोरो मोते।
2: माती के,
3: माती के।
2: सुमीलो,
3: सुमीलो।
2: माती के सुमीलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते,
3: ए माती ते,
2: ए माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
3: सोबी।
2: जी कैसे? ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी, आकी दोबारा आकी, आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार,
3: हाँ,
2: ये जो ना आका आकाश श को बोलते वहां ह की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो। दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर, ख नहीं बोलना, ख, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर। मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
3: लागे लागे।
2: इसके आ गया है आहा आहा,
3: आहा, आहा।
2: फिर मातीर बुकुत,
3: मातीर बुकुत,
2: हाँ मातीर बुकुत। मोनोर मालोती,
3: मालोती
2: बूटोलो,
3: बूटोलो।
2: मोनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, ए माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतरा है मोनोर

0: ni re.
1: Horo ni re.
0: Huror. Huror. Papori re.
1: Papori re.
0: Papori re. Azi.
1: Azi.
0: इतना हो गया ना?
1: जी हाँ.
0: आगे हुकुमार. थापो
1: थापो
0: नाहुजुवा
1: नाहुजुवा
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा आगे लिखा है ना
1: जी
0: हुंदोर
1: हुंदोर
0: खुदीनोर खुदीनोर नहीं खनी ख खुदीनोर
1: खुदीनोर
0: नौतून
1: नौतून
0: दृष्टि
1: दृष्टि
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि
1: दृष्टि
0: दृष्टि
1: दृष्टि
0: शनि सही बोलना दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ आगे ना
1: जी
0: अच्छा ठीक है गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिए जरा

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है अंदाज। गीत हसरत जयपुरी के हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: रोटी वोटी कुछ न मिली पीछे पड़ी मोटी।
1: रे मामा रे मामा रे।

गीत वर्मा मल्लिक के हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ें हैं उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। फ़िल्म का नाम है कर्तव्य।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नि बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

लीजिए सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और नंदा को फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: लीजिए सुनिए शारदा को, फिल्म का नाम है सूरज। गीतकार हैं हंसराज जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे शारदा को फिल्म सूरज में। इसके साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात कार्यक्रम की यह 134वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भीषण गर्मी को लेकर इन दिनों अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करना उपयोगी है। उन्होंने कहा कि ये पेय पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं और इनमें पीढ़ियों का अनुभव समाहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की चर्चा की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। श्री मोदी ने गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम में विशेष तौर पर बिहार का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में भीषण गर्मी से बचाव के लिए बिहार के पारंपरिक पेय सत्तू तथा प्रसिद्ध जरदालू आम का उल्लेख करना राज्य की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों और जनजीवन से जुड़े विषयों का उल्लेख राज्यवासियों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री स्वामीनाथन ने कहा कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सिवान, सारण, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। अररिया जिले में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अलग अलग क्षेत्रों से 900 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिला में साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ऑनलाइन

0: ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। शेखपुरा जिला में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज जिला विविध सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सकीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के आवाम से अपने ख्याल शेयर किए। वज़ीर आज़म ने मुल्क के आवाम से शदीद गर्मी के पेश नज़र इन दिनों ज़्यादा एहतियात बरतने और हुकूमत के रहनुमा हिदायत पर अमल करने की अपील की। उन्होंने लोगों को ज़रूरी मकदार में पानी पीने और धूप से बचने के तदाबीर करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, निरमौर, सांबरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का इस्तेमाल मुफीद है। उन्होंने कहा कि ये मशरूबात एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को जाहिर करते हैं और इनमें नस्लों का तजुर्बा शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क की बेशकीमती विरासत के तहफ़ के लिए कोशां है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं सदी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से मुंसलिक नायाब तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। वज़ीर आज़म ने झारखंड की राजधानी रांची में मुनक़िद नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन टूर्नामेंट का तذکرہ किया। इसमें तकरीबन 800 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। जनाब मोदी ने गुरुवेंद्र वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देवमीना और कुलदीप कुमार को 4 नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरेंद्र वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इल्म फलकियात ने मुल्क की हर नस्ल में शौक पैदा की है। उन्होंने कहा कि इल्म फलकियात मुल्क में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। जनाब मोदी ने नौजवानों से इल्म फलकियात क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। वज़ीर आज़म ने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें अहम किरदार अदा किया। जनाब मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन तहफ़ नदी के हयातियाती तनव और बेशकीमती कुदरती विरासत का तहफ़ भी होता है। वज़ीर आज़म ने चेन्नई के पहले हिंदू स्कूल का तذکرہ किया जिसने गुज़श्ता साल अपने 50 साल मुकम्मल किए थे। उन्होंने कहा कि इस स्कूल नेटवर्क ने मुल्क के तालीमी और सकाफती वक़ार को बुलंद करने में अहम किरदार अदा किया है। जनाब मोदी ने मुल्क के आवाम से अपील की है कि वह अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए मुसलसल काम कर रहे लोगों को पहचानने और ख़ुद भी अच्छे कामों से जुड़ें। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुना और प्रोग्राम में ख़ास तौर से बिहार का जिक्र किए जाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जनाब चौधरी ने कहा कि प्रोग्राम में शदीद गर्मी से बचाव के लिए बिहार के रवायती मशरूब सत्तू और मशहूर जरदालू आम का तذکرہ रियासत की ख़ास शनाख्त को कौमी सतह पर जाहिर करना है। जनाब चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म के ज़रिए बिहार की शानदार सकाफती विरासत, मुकामी पैदावार और आम जिंदगी से जुड़े मौजूदात का तذکرہ रियासत के आवाम के लिए फ़ख्र एजाज़ का बायस है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 27वें बहरिया सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। जिम्मेदारी संभालने के बाद एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में बहरिया की जदीदकारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे आला मियार की जंगी सलाहियत से लैस किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सीवान, सारण, शेखपुरा, मशरकी चंपारण और मगरबी चंपारण समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी इम्कान है। अररिया जिले में पुलिस ने छापेमारी मुहिम चलाकर अलग अलग इलाकों से 900 लीटर शराब के साथ 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले में साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 9

0: लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी करने का इल्जाम है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, सुनिए रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग UPSC NDA परीक्षा के आलोक में कुल 394 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.upsc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट ALP के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा,

0: हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से

0: आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्ते।
3: ये आकाशवाणी
4: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी एट 90। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम को फिल्म दाग में गीतकार हैं साहिर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म संगीत अभी आप आकाशवाणी के पटना केंद्र से सुन रहे हैं

लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी, गीत नीरज के हैं, धुन बनाई है SD बर्मन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: पर यानी FM रेनबो पटना पर स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आपसे भी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
4: अच्छा मैं कहती हूँ

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद पक्षी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो

0: संविधान से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
1: हैं। मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एमजी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए आप सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक

0: अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा
2: रहा है। नहीं, बल्कि ये तो मुझे मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूँ 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूँ। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बना तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: और डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुलारा सा नन्ना मुन्ना। हा?
2: प्यारा प्यारा सा दुलारा सा नन्ना
1: मुन्ना। देसी
3: छोड़ दीजिए ना।
1: अरे अरे सुनो तो।
3: नहीं सुनती।
1: ओफो, अरे बात तो सुनो
3: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
1: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
1: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
1: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत है।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूँ। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी,
0: डेजी व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की
0: साड़ी। ओह डेजी।

0: उस दिन मैं सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह

0: रहने से क्या बीमारी कम होगी?
1: पहले से दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
1: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं।
1: तेजी,
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
1: तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
1: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
1: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
1: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
1: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
1: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
1: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
1: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
2: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
1: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों ने जी?
0: जी हाँ
2: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
2: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
1: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
2: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
2: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
0: वो
2: सो रहा है।
0: वो तो बहुत बीमार है, दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
1: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
2: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
1: Well, but that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
2: अच्छा, मैं चलता हूँ। भाई कुछ जरूरी काम है। चलो डेजी।
1: ओके।
0: अच्छा डॉक्टर।
1: बाय डॉक्टर। बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
1: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
1: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
1: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
1: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जाँच कर लो।
1: जाँच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जाँच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
1: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
1: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
1: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
0: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
1: मैं घसीट लाया? ये कहो, बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
0: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
1: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी के साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
0: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
1: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
0: तुम्हें क्या हो गया है?
1: तुम उससे ज्यादा बेनी के इस फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।

0: क्षमा करना बेबी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
1: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
0: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
1: कैसी शंका?
0: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
1: ओह डेजी, तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
1: नहीं।
0: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
1: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
1: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आपकी ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
1: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
0: इस बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
1: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
1: क्या?
0: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए। प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
1: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
1: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। I'm sorry,
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
1: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
1: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।

0: Dr. Lawrence?
1: Oh, Dr. Ramdas.
0: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
1: बैठ जाइए
0: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
1: जी,
0: है शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा ना ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
2: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
0: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
2: समझा नहीं।
0: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
2: व्हाट यू मीन डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
0: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
2: डॉक्टर।
0: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
2: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
0: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
2: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
0: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
2: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
0: नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
2: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: नो, इट वाज नॉट अ मेयर डेथ, इट वाज अ क्लियर मर्डर।
2: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर।
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
2: नो नो नो,
0: क्यों डॉक्टर, सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए और इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
2: डॉक्टर, डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
2: सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी। मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
2: डॉक्टर, मुझसे गलती हो गई डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
2: थैंक यू।
0: नहीं कहूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर।
0: क्योंकि ना कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं।
2: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
3: तुम्हारी

0: आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेज़ी, डेज़ी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेज़ी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेज़ी।
0: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
0: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। कोई कष्ट नहीं दूंगा डेज़ी।
0: मैं भी तुम्हें,
1: डेज़ी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ। डेज़ी सब भूल जाओ।
0: भुला दूंगी। हाँ, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
1: हाँ, वो डेज़ी, मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
0: हाँ हाँ मैं अभी लाती हूँ।
1: हाँ।

0: हमेशा के लिए भुला दूंगी।
1: हाँ, वो डेसी, मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
0: हाँ हाँ मैं अभी लाती हूँ।
1: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के हम यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
0: हाँ हाँ जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
1: डेजी,
0: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
1: ये क्या कर रही हो तुम डेजी?
0: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
1: डेजी,
0: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली।
1: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
0: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह
1: सकते। डेजी, ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
0: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
1: ओह माय गॉड,
0: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
1: ओह नो,
0: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
1: विदा?
0: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
1: था। डेजी, डेजी,
0: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना।
1: डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी,
0: नहीं लॉरेंस, नहीं, नहीं लॉरेंस, विश्वास करो, मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? ठहरो, ठहरो बेटा, बुला लिया। भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की ये कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था।

मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी।

0: आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात,
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लड़का रहा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो, है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीत

0: तो कभी छाऊं।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा। तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं, और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा, और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था, और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।
3: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
2: जी,
3: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
2: अच्छा जी।
3: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
2: ही हैं।
3: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे, तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
2: अच्छा।
3: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
2: जी, बिल्कुल।
3: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति, डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
2: जी,
3: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
2: अच्छा जी।

0: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूँगा, तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहाँ पर थे,
1: जी
0: रावल जी,
1: अच्छा
0: और उन्होंने उनको सुना। उन्होंने जा कर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में।
1: जी
0: वहाँ पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहाँ पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया, अपनी शैली में उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए। हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन
1: गीतकार
0: गए।
1: बन गए थे। कौन
0: तो
1: से
0: अब
1: सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें दिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप,
1: प्रदीप
0: तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना, और तो कवि प्रदीप कैसे हुए। उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार,
1: जी
0: एक्टर।
1: एक्टर
0: तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो, तो कवि प्रदीप अलग हो गए,
1: और
0: प्रदीप
1: प्रदीप
0: कुमार
1: कुमार
0: अलग हो गए। तो ये
1: अलग
0: आपके सवाल का जवाब है।
1: हो गए। तो मितुल जी आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना,
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की
1: हेमंत
0: आवाज में।
1: कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ
1: एक
0: में।
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी
0: है ना।
1: बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं ये
0: हाँ
1: प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन-कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज़्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफ़ी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफ़ी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति,
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया। हाँ, तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
0: जी।
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था,
0: हाँ
1: तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी
1: फ्रीडम। हाँ,
0: जी।
1: तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए ज़िंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज़ करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई, और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफ़ी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
0: नहीं थी जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा।

0: तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
1: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने, ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफ़ी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ,
0: जी।
1: आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
0: जी, वो गर्म
1: मैं
0: है।
1: गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
0: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
1: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूँगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा। आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ
0: अच्छा
1: लेना नहीं चाहता हूँ,
0: जी।
1: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी
0: हाँ
1: होगी,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
0: पिता जी।
1: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब।
0: अच्छा।
1: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूँ।
0: अरे हाँ।
1: तो उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
0: जी
1: लेके।
0: जी
1: तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
0: जी
1: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहाँ से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए, लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
0: जी।
1: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
0: जी।
1: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो
0: विवाह,
1: यूनियन था
0: हाँ, वो संपन्न हुआ।
1: विवाह का, तो वो खुशी
0: जी
1: खुशी उसकी समापन हुआ,
0: जी जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही उस
1: पानी बन के
0: दाम्पत्य
1: रही।
0: जीवन में।
1: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी, लेकिन वो पानी बन के रही।
0: जी, ये सबसे बड़ी बात है। जी
1: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
0: वाह,
1: मतलब
0: उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
1: ऐसी
0: में की
1: थी।
0: गई
1: हाँ
0: नाना नानी के द्वारा।
1: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी, उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
0: जी।
1: गा रही है जिंदगी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रहीं, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, लाइक जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना? ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे,
0: थे
1: वो सब पता चलने लगा।
0: जी।
1: और खैर, वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया,
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह वो
1: पिता की
0: रहे
1: तरह।
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि
0: जी
1: कोई
0: जी
1: स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने
0: लिखाई
1: की
0: थी
1: शक्ति,
0: जी, बिल्कुल।
1: वो और बढ़ी मेरी माँ के कारण।
0: बहुत बड़ी बात, और तभी वो राष्ट्र कवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर
1: जी
0: दिखाया।
1: जी
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर, वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई, मतलब मेरे ताऊ जी, वो इलाहाबाद में रहते थे, और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने

0: अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
1: जी
0: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा, और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला। कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे, और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये कोई
1: मतलब
0: जानबूझ के नहीं
1: स्वप्रेरित
0: हुआ।
1: हुए क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था,
0: हाँ
1: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है
0: हाँ
1: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
0: हाँ और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
1: जी
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:30 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंबिका।
1: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं आपके साथ भारती। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारियां और हम करेंगे उस पर चर्चा, साथ में सुंदर सुंदर गानों से आपको फ्रेश भी करेंगे।
0: बिल्कुल भारती, हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में, जो बेहद ही शोचनीय विषय है। साथ ही हम बात करेंगे महिला शासक अहिल्याबाई होलकर के बारे में, और जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर अमर है।
1: बिल्कुल अंबिका, और अंबिका हम बात करेंगे राष्ट्रीय मुस्कान दिवस के बारे में भी। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुस्कुराने से हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है। खुद भी सुकून पाएं और दूसरों को भी सुकून पहुंचाएं। और तो और अंबिका, इसके साथ हम रोचक तथ्य की जानकारी भी

0: अपने श्रोताओं को देंगे।
1: बिल्कुल, भारती और सुरांजली के बारे में भी सुनेंगे, जो कि भजन क्लबिंग है, और भी ढेर सारे गाने। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस गाने के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अतीफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की आवाज में फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से ये प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल अंबिका, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे स्वास्थ्य, परिवार और समाज से जुड़ा हुआ है। यानी हर साल आज 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध

0: दिवस जो मनाया जाता है, हम उसी की बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल भारती, इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है और उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है।
0: दोस्तों, तंबाकू चाहे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी या किसी भी रूप में हो, ये हमारे शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। इसके सेवन से कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां और कई अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
1: इतना ही नहीं, तंबाकू का धुआं केवल सेवन करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसे परोक्ष धूम्रपान यानी पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है।
0: बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं कि युवा वर्ग फैशन के दौर में लोगों के दबाव या जिज्ञासा के कारण तंबाकू की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय की आदत धीरे धीरे लत में बदल जाती है और फिर इससे छुटकारा पाना तो कठिन हो ही जाता है, जैसा कि हम सभी जानते भी हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसलिए जरूरी है कि हम शुरुआत ही ना करें और यदि कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो उसे छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि परिवार और मित्रों का सहयोग का भी इसमें महत्वपूर्ण मीन्स वो लोग भूमिका निभा
0: हाँ
1: सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: एकदम। अगर परिवार मना करे या घर के लोग, माता पिता अगर मना करे, तो उनकी बात
1: बिल्कुल
0: माननी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि तंबाकू छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद शरीर में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं? रक्तचाप सामान्य होने लग जाता है। अगर तंबाकू या ऐसी कोई लत है आप में, तो आप अपने शरीर में देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, और जब उनको आप छोड़ते हैं, आप लत अपने लत से जब बाहर आने लग जाते हैं, तब आप में लगता है कि नहीं, मैं सामान्य हो रहा हूँ, मेरे में बीपी सामान्य हो रहा है, सांस लेने में सुधार भी आ रहा है और धीरे धीरे स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगता है।
1: बिल्कुल मीन्स यानी तंबाकू छोड़ने का हर दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आता है। और इस वर्ष की तो थीम भी रखी गई है कि निकोटीन, और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, कि
0: जी
1: मीन्स उसी और तंबाकू की लत के आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला, ये इस वर्ष की थीम है।
0: और बहुत सही थीम रखी है सरकार ने। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें ये संदेश देता है कि स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तंबाकू से दूरी बनाकर न केवल अपना बल्कि अपने परिवार और समाज के भविष्य का भी सुरक्षित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो आइए आज हम सभी एक संकल्प लें, न तंबाकू का सेवन करेंगे और ना ही किसी को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे।
0: बिल्कुल अंबिका, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी तंबाकू के दुष्प्रभावों के लिए बारे में जागरूक करें और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों,
1: तो श्रोताओं, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और तंबाकू से दूर रहें।
0: तंबाकू छोड़िए, जीवन जोड़िए। और इसी के साथ सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत, जो कहीं तो कहीं जाइए मत, यूं ही बने रहिए हमारे साथ।

0: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे सलामे इश्क फिल्म से सोनू निगम की आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक।
1: आज का दिन बेहद खास है भारती,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हम आज याद कर रहे हैं भारत की महान, न्यायप्रिय और प्रेरणादायक महिला शासक देवी अहिल्याबाई होलकर जी को।
0: बिल्कुल अंबिका, अहिल्याबाई होलकर केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि वे सेवा, न्याय और नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल थी।
1: दोस्तों, उनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली अहिल्याबाई ने अपने गुणों और साहस से इतिहास में अमिट पहचान बनाई।
0: बिल्कुल, कहते हैं ना कि बचपन से ही अहिल्याबाई बहुत बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव की थी। उस समय लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ने लिखने का बेहतरीन और सुअवसर दिया।
1: और यही शिक्षा आगे चलकर उन्हें एक महान प्रशासक बनाने में मददगार बनी। उनका विवाह खंडेराव होलकर से हुआ, जो मालवा राज्य के राजकुमार थे।
0: लेकिन जीवन में उन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पहले पति का देहांत, फिर ससुर मल्हार राव का होलकर का, जो मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख सेनानायक और मालवा क्षेत्र होलकर राजवंश के संस्थापक भी थे, उनका भी निधन हो गया।
1: अहिल्याबाई के ऊपर अब काफी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मालवा राज्य की बागडोर संभाली और ऐसा शासन किया जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
0: और पता है श्रोताओं, अहिल्याबाई होलकर को सबसे ज्यादा किस बात के लिए याद किया जाता है?
1: ऑब्वियसली उनकी न्यायप्रियता के लिए और जनसेवा के लिए। कहा जाता है कि उनके दरबार में हर व्यक्ति को न्याय मिलता था, चाहे वह गरीब हो या अशक्त।
0: वाह,

0: और इसके साथ साथ उन्होंने धार्मिक कार्य भी किए। देश भर में उन्होंने कई मंदिर, घाट और धर्मशालाएं भी बनवाई।
1: बिल्कुल भारती, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी उन्हीं के प्रयासों से हुआ था। उन्होंने वाराणसी, उज्जैन, गया, सोमनाथ और कई तीर्थ स्थलों का विकास कराया।
0: यानी अंबिका वे केवल शासक नहीं बल्कि संस्कृति और धर्म की संरक्षक भी थी।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज के समय में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तब अहिल्याबाई होलकर का जीवन स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।
0: बिल्कुल अंबिका, उन्होंने साबित कर दिया कि एक महिला चाहे तो प्रशासक, समाज सेवा और नेतृत्व हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर सकती है।
1: और भारती, उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने सत्ता को कभी अहंकार नहीं बनने दिया। वे हमेशा जनता के बीच रहीं और उन्होंने हमेशा उनकी समस्याएं सुनी।
0: बिल्कुल, हम आमतौर पर देखते भी हैं कि अगर हम कहीं बड़े स्थान पर पहुंच गए तो हम अपने साथ जो लोग रहते हैं उन्हें हम कद्र नहीं करते, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। अहिल्याबाई का जीवन बिल्कुल हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।
1: बिल्कुल भारती, उनकी तीन बातें हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। पहली, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखना। दूसरी, हमेशा न्याय के रास्ते पर चलना। और तीसरी, समाज की सेवा करना।
0: बहुत सुंदर बात कही है आपने अंबिका। सच में ऐसे महान व्यक्तित्व सदियों में जन्म लेते हैं। दोस्तों, आज उनकी जयंती पे सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने समाज में समानता, शिक्षा और सेवा की भावना को आगे बढ़ाएंगे।
1: और खास कर महिलाओं को आगे बढ़ने और सशक्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि अहिल्याबाई जैसी महान महिलाएं ही समाज की असली शक्ति होती हैं।
0: बिल्कुल, प्रजा की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी प्रेरणादायक सोच के साथ आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये ट्रैक।

0: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में समझावा ट्रैक हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से।
1: बिल्कुल, अब चलते हैं स्वरांजलि की तरफ।
0: बिल्कुल।
1: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाशवाणी की इस विशेष रेडियो फीचर में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंजलि। आज हम एक ऐसे परिवर्तन की बात करेंगे जो हमारी परंपराओं को नए रंग में ढाल रहा है।
2: नमस्कार दोस्तों, और मैं हूँ सोना। आज के युवाओं ने एक नई दिशा पकड़ी है, जहाँ आधुनिकता और मर्यादा का एक अद्भुत संगम हो रहा है। इसका नाम है भजन क्लबिंग।
0: दोस्तों, मैं हूँ भारती। अक्सर कहा जाता है कि वह अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, लेकिन आज दृश्य बदल गया है। आज की जेंजी यानी हमारी नई पीढ़ी भजन कीर्तन को सिर्फ मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा भी बना रही है।
2: तो भारती जी, क्यों ना इसी से जुड़ा एक भजन शुरू किया जाए।
0: बिल्कुल।

0: वाह वाह भारती जी, क्या माहौल सेट किया आपने।
1: देखा आपने, बिहार तो हमेशा से संस्कृति की धरती रही है। विद्यापति के पद हो या शारदा सिन्हा जी की आवाज में बसा भक्ति संगीत, हमारे यहाँ हर घर में भजन गूंजता है।
0: बिल्कुल सोना, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब इसमें एक नया एलिमेंट जुड़ गया है। आज जब पटना की किसी युवा मंडली में अच्युतम केशवम या शिव तांडव का टेक्नो वर्जन बजता है, तो माहौल में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है।
1: ये बदलाव एकाएक नहीं आया है, इसमें हमारी विरासत के प्रति गर्व का एक बड़ा हाथ है। तो इसी के साथ एक जुड़ा भजन क्या आप लोग सुनना चाहेंगी?
2: हाँ हाँ बिल्कुल।

0: कि हमारी विरासत हमारी शक्ति है। जब युवा अपनी परंपराओं पर गर्व करता है तो देश की उन्नति निश्चित है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हमें पुराने और नए का संतुलन बनाए रखना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री जी का वही विश्वास आज बिहार के गांव-गांव और शहरों में दिख रहा है। ये भजन क्लबिंग सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि वोकल फॉर लोकल संगीत का एक विस्तार है। हमारी मिट्टी के भजन अब ग्लोबल बीट्स के साथ दुनिया भर में सुने जा रहे हैं।
2: बिल्कुल, ये तो एकदम सही बात कहलू भारती जी। बाकी जब हमार युवा गंगा नदी के किनारे गंगा आरती के टेक्नो बीट्स पे झूमेला, तब लागेला कि हमार बिहार के संस्कृति पीछे नहीं छूटल, बल्कि हमनी के साथ लेके बढ़ता नहीं जा। अब हमार परंपरा ट्रेंडिंग हो गइल बा।
0: तो भारती जी, इसी ट्रेंड से रिलेटेड कोई तो भजन होगा आपके भी दिल में जो आप हम लोगों को सुनाना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, आप लोगों ने सुना होगा कि शीश

0: वाह वाह भारती और सोना, आपने माहौल ही पूरा पॉजिटिव वाइब से भर दिया। और दोस्तों, इन युवाओं की बातों में वही आत्मनिर्भर और गौरवशाली भारत की झलक मिलती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्सर करते हैं।
1: हाँ, सही कहा अंजलि आपने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने एक संबोधन में कहा था

0: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ट्रेंड इतना सफल क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान भी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता बहुत बढ़ गई है।
1: बिल्कुल, ऐसे में स्पिरिचुअल म्यूजिक एक हीलिंग का काम करता है। जब वही भजन उनके पसंदीदा बीट्स के साथ मिलते हैं तो वो उनके दिमाग को सुकून देते हैं।
2: इसके लिए हमने संगीतकारों और मनोवैज्ञानिकों से भी बात की। उनका मानना है कि मंत्र की ध्वनि जब सही फ्रीक्वेंसी पर बजती है तो वो ध्यान की अवस्था पैदा करती है। इससे युवाओं में एकाग्रता बढ़ती है।
0: और सबसे बड़ी बात, बिहार में हमने देखा है कि यहाँ के युवा अपनी भाषा जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका, इन सब भाषाओं में भजन बनाने लगे हैं। अब वे पुराने शास्त्रीय भजन को ही अपबीट करके पेश कर रहे हैं, जो काफी शालीन लेकिन बहुत प्रभावी होता है।
1: भारती जी, एक और भजन हो जाए।
2: बिल्कुल सखी।

0: ये ट्रेंड सिर्फ एक फैशन नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव है। पहले डिस्को और क्लबिंग को बुजुर्ग हमारे बहुत शंका की नजर से देखते थे।
1: लेकिन अब तो घर के बड़े भी खुश हैं कि कम से कम बच्चे भगवान का नाम तो ले रहे हैं। यह दो पीढ़ियों के बीच एक ब्रिज बन चुका है।
2: बिल्कुल, आज बिहार के अनेक मंदिरों के बाहर भी युवाओं की टोलियां दिखती हैं, जो संगीत के माध्यम से भक्ति का प्रचार करती हैं। ये क्लीन फन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें नशा नहीं बल्कि श्रद्धा है।
0: बिल्कुल, और भारती जी, हमारे बिहार को तो एक विशेष अधिकार भी है, भगवान श्री राम तो हमारे यहाँ पहुना है।
1: जी हाँ, और हमारे यहाँ पहुना को जब तक सत्कार के साथ चार गो गाली ना दिया जाए तो काहे का सत्कार। तो गाड़ी वाला एक गीत हो जाए भारती जी।
2: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बबुआ।
1: तो दोस्तों, आज के इस रेडियो फीचर का सार यही है कि बदलाव बुरा नहीं होता अगर वो अपनी जड़ों से जुड़ा हो।
0: बिल्कुल, बिहार के युवाओं ने ये दिखा दिया है कि हम ग्लोबल भी हो सकते हैं और देसी भी। हम हेडफोन भी लगाएंगे और साथ में राम नाम का जाप भी करेंगे।
1: यही है, विरासत का ये रास्ता विकास की ओर ले जाता है। जैसे पीएम श्री मोदी ने कहा था, हमें अपनी विरासत को संजोना भी है और नए भारत का निर्माण भी करना है।
0: तो भारती जी, क्यों ना जाते जाते हम अपने श्रोताओं को एक और भजन सुनाएं। और सोना, आप भी इनका साथ निभाइए।
1: हाँ, जरूर, बिल्कुल, एक जुगलबंदी तो बनती है।
0: बिल्कुल
1: सुन

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता और खुशियाँ भी लाता है, मुस्कान।
4: बिल्कुल अंबिका, हम मना रहे हैं आज राष्ट्रीय मुस्कान दिवस। मुस्कान एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए किसी शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होती है, ये दिल से निकलती है और सीधे दिल तक पहुँचती है।
3: कहा भी गया है, मुस्कान वह वक्र रेखा है जो हर बात को सीधा कर देती है। एक छोटी सी मुस्कान किसी के उदास दिन को खुशनुमा बना सकती है।
4: बिल्कुल अंबिका, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव, चिंता और व्यस्तताओं से घिरे ही तो रहते हैं। ऐसे में मुस्कुराना और दूसरों को मुस्कुराने का अवसर देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
3: वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं भारती कि मुस्कुराने से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन सक्रिय होते हैं जो तनाव को कम करते हैं और मन को प्रसन्न रखते हैं। मुस्कान हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक है।
4: और अंबिका इतना ही नहीं, मुस्कुराने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसा आपने भी देखा ही होगा।
3: बिल्कुल,
4: और सकारात्मक संबंध बनाने में भी मदद करता है।
3: हाँ बिल्कुल, और मुस्कान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे बांटने से यह कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। जब हम किसी को मुस्कुराकर देखते हैं तो सामने वाला भी अनायास मुस्कुरा उठता है।
4: क्या आप भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं अंबिका?
3: बिल्कुल।
4: बिल्कुल, तो क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि किसी अजनबी की एक स्नेह भरी मुस्कान भी पूरे दिन को बेहतर बना सकती है? यही तो मुस्कान की असली शक्ति है।
3: बिल्कुल भारती, इसलिए तो राष्ट्रीय मुस्कान दिवस हमें याद दिलाता है कि जीवन की चुनौतियों के बीच भी मुस्कुराने का कारण खोजा जा सकता है। मुस्कान आशा, प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक है।
4: तो आइए आज हम ये

0: संकल्प लें कि अपने परिवार, मित्रों, सहकर्मियों और समाज के लोगों में मुस्कान के कुछ पल अवश्य ही जोड़ेंगे।
1: किसी की मदद करके, किसी का हाल चाल पूछकर, किसी का उत्साह बढ़ाकर या केवल एक सच्ची मुस्कान देखकर भी हम यह कार्य कर सकते हैं।
0: अच्छा देखिए अंबिका, मैं ही आज आई हूँ ऑफिस और आपको देखकर मुस्कुरा रही थी, तो आपने भी एक अच्छी सी मुस्कान छोड़ी ना मेरे लिए,
1: बिल्कुल
0: तो वो हम लोगों के बीच कोई बातचीत ना होकर भी एक संवाद छोड़ गया।
1: बिल्कुल
0: तो श्रोताओं, अपनी मुस्कान को अपनी पहचान बनाइए, क्योंकि मुस्कान में कोई खर्च नहीं होता, लेकिन इसका प्रभाव अनमोल होता है।
1: और इसी संदेश के साथ श्रोताओं, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांटते रहिए। और सुनाते हैं फिर आपको एक प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे आतिफ असलम और सुनिधि चौहान की आवाज में रेस फिल्म से ये प्यारा सा ट्रैक।
1: भारती, जब भी हमारे मन में हरे रंग का प्यारा सा पक्षी और उसकी मीठी नकल करने वाली आवाज़ का जिक्र आता है, हमारा मन किसका नाम सबसे पहले आता है हमारे मन में?
0: बिल्कुल बिल्कुल अंबिका, हम आपकी बात को समझ रहे हैं कि आप अपने श्रोताओं को, हमारे श्रोताओं को बताना चाह रही हैं हमारे रोचक तथ्य के बारे में, जो
1: बिल्कुल
0: है क्या, विश्व तोता दिवस।
1: बिल्कुल। और हर साल 31 मई को विश्व तोता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तोते के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूक करना है।
0: दोस्तों, आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि आज मनाया जा रहा है विश्व तोता दिवस। तोते दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में गिने जाते हैं। वे इंसान की आवाज और कई तरह की ध्वनियों की नकल कर सकते हैं। यही वजह है कि बच्चे हों या बड़े, सभी को तोते बहुत पसंद आते हैं। आपको तोता पसंद है या नहीं?
1: बिल्कुल।
0: हमें, मुझे भी।
1: और पता है मिंस भारती, विश्व तोता दिवस की शुरुआत 2004 में ही हुई थी। विश्व तोता ट्रस्ट के द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जंगली तोतों की रक्षा करना और उन्हें विलुप्त होने से बचाने की जागरूकता फैलाना था।
0: हाँ अंबिका, और क्या आप ये जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में तोतों की लगभग 400 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कई प्रजातियां आज विलुप्त होने के कगार पर हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, जंगलों की कटाई, अवैध व्यापार और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण तोतों की संख्या लगातार घट रही है। कई लोग शौक के लिए उन्हें पिंजरों में कैद कर लेते हैं, जो उनके प्राकृतिक जीवन के लिए सही नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा अंबिका आपने, पक्षी तो खुले आसमान में उड़ने और अपने झुंड के साथ रहने वाले पक्षी होते हैं, और उन्हें हम कैद कर लेते हैं, अच्छा
1: सोचिए।
0: नहीं। उन्हें स्वतंत्रता पसंद होती है, इसलिए हमें उनके प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए।
1: हमारे देश में भी तोते का विशेष महत्व है। भारतीय तोता अपनी सुंदर हरी रंग और लाल चोंच के लिए जाना जाता है। यह हमारे आसपास के पेड़ों और बाग बगीचों में आसानी से दिखाई दे जाता है।
0: अब आप ये बता रही हैं कि आपने उसका रंग रूप बताया, बाग बगीचे में हम तोते, मतलब मेरे अंदर ना पूरी इमेजिनेशन भरी बातें आ गई और मैं उसी जगह चली गई। लग रहा है जैसे मैं किसी बाग बगीचे में हूँ। और सोचिए, अब तोता खतरे के कगार पर है, और जब ये बात कह रहे हैं, कितने दुख के साथ कहना पड़ रहा है। उस चीज़ को महसूस कीजिए और उनको संरक्षित
1: बिल्कुल। और
0: कीजिए।
1: इसलिए विश्व तोता दिवस हमें याद दिलाता है कि केवल तोतों से प्यार करना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है।
0: बिल्कुल, घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल कीजिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था भी कीजिए। दोस्तों, छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी जंगली पक्षी को पकड़कर पालतू बनाने की कोशिश नहीं कीजिए। उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में ही रहने दीजिए।
0: बिल्कुल अंबिका, तो अभी हो चला है समय एक प्यारे से गाने का, तो आइए सुनते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में डुप्लीकेट फिल्म से ये प्यारा सा ट्रैक।
1: बिल्कुल भारतीय, अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहले रक्षा क्षेत्र की खबर। भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह भारत की रक्षा निर्यात क्षमता को और मजबूत करेगा तथा दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा।
0: रक्षा सहयोग की एक और खबर है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 जून को नई दिल्ली में दूसरा रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित होने जा रहा है। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर चर्चा होगी।
1: बिल्कुल, और संस्कृति और कूटनीतिक के बारे में मीन्स भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेषों को मंगोलिया भेजा जाएगा। इससे भारत और मंगोलिया के सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे।
0: अर्थव्यवस्था की वही बात करें तो MSCI इंडेक्स के हालिया पुनर्संतुलन के कारण भारतीय शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। विशेषज्ञों के अनुसार विदेशी निवेशकों के निवेश प्रवाह पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।
1: बिल्कुल, और ऊर्जा क्षेत्र में भारत कोयला गैसीकरण तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। सरकार का मानना है कि इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
0: रेलवे से जुड़ी जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन 1 जून से विशाखापट्टनम मुख्यालय के साथ कार्य करना शुरू करेगा। ये भारतीय रेल का 8वां रेलवे जोन होगा।
1: और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को पहले T20 मुकाबले में 38 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की देश भर में सराहना हो रही है। तो काफी बातें कर ली हमने करंट अफेयर्स के बारे में। आशा करती हूँ कि यह हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रहता होगा।
0: बिल्कुल, तो
1: भारती स्टूडियो की घड़ी अब इशारा कर रही है,
0: हमें दे रही है इजाजत और अब हम
1: हमारे
0: श्रोताओं से
1: जाने का समय हो चला है।
0: बिल्कुल, तो आकाशवाणी के साथ बने रहिए और सुनते रहिए इसमें के सारे प्रोग्राम। हम आपसे फिर मिलेंगे कार्यक्रम युववाणी में। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं मैथिली कार्यक्रम भारती।

मैथिली कार्यक्रम भारती सुननिहार समस्त श्रोता के प्रभातक सादर नमन। श्रोता मित्र, आजुक कार्यक्रम में हम सब सुनब काव्य पाठ कवि होता वैद्यनाथ मिश्र संगे गीतनादक आनंद सेहो लेब। गीतनाद विद्यापति गीत संगे नचारी आन गीतनादक हम सब आनंद लेब, मुदा ओहिसँ पूर्व किछु अपना में गप सब सेहो करब। देखू श्रोता मित्र, तम्बाकू के सेवन स्वास्थ्य लेल अत्यंत नुकसानदेह अछि। ई कैंसर, हृदय रोग, श्वास संबंधी बीमारी के प्रमुख कारक थिक। प्रत्येक

वर्ष 31 मई के मनाओल जावला विश्व तंबाकू निषेध दिवस लोक के तंबाकू के जानलेवा दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक आ एहिसँ मुक्ति दिएबाक लेल समर्पित अछि। तंबाकू में मौजूद निकोटीन अत्यंत नशीला पदार्थ अछि। ई शारीरिक मानसिक दुनू रूपसँ लोक के अपन गुलाम बना दैत छैक। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रत्येक वर्ष एहि दिवस के मनाबैत अछि। एकर शुरुआत 1987 ईस्वी में भेल छल। एहि मादे तंबाकू उद्योग के भ्रामक रणनीति, युवा आ नैना के एहि दिस आकर्षित करय वाला नव उत्पाद के प्रति जागरूक करब अछि। तंबाकू छोड़ला सँ शरीर में बड़ तेजी सँ सुधार होइत छैक। एहिसँ हृदय गति, फेफड़ा आदि ठीक होबय लगैत अछि आ मनुख घातक बीमारी सँ बचि जाइत अछि। एहि के छोड़बाक लेल इच्छा शक्ति सबसँ बेसी महत्वपूर्ण होइत छैक। एहिसँ बचबा मे योग आ व्यायाम मदति कऽ सकैत अछि। व्यसन गंभीर भेला पर स्वास्थ्य केंद्र, पुनर्वास केंद्र में मदद लेल जा सकैत अछि। तंबाकू के त्याग मात्रे एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लेल नहि, किंबा संपूर्ण परिवार आ समाजक उज्ज्वल भविष्य लेल जरूरी थिक। आउ हम सब एहि अवसर पर तंबाकू छोड़बाक संकल्प ली। ई तऽ छल किछु अपना मे दुटप्पी। आउ कार्यक्रम दिस प्रवेश करी आ सर्वप्रथम अपने सबके सुनबैत छी ई विद्यापति गीत। कलाकार छथि चंद्रावली, सुनल जाए।

0: एखन श्रोता मित्र सुनि रहल छलहुँ ई विद्यापति गीत चंद्रावली केर स्वरमे। हिनका धन्यवाद दियनि कार्यक्रममे हिनका सँ आर हमसब गीत नादक आनंद लेब। मुदा एखन सुनैत छी काव्यपाठ। कवि छथि वैद्यनाथ मिश्र, तऽ सुनल जाय हिनका सँ हिनक किछु रचना।
1: कविताक शीर्षक अछि नशा निशा जीवन केर भैया। जी, नशा निशा जीवन केर भैया। छोड़ह भैया चून तमाकू गुटका सभकें छोड़ह। छोड़ह भैया चून तमाकू गुटका सभकें छोड़ह। बीड़ी सिगरेट पीनी हुक्का एहि सबसँ मुँह मोड़ह। बीड़ी सिगरेट पीनी हुक्का एहि सबसँ मुँह मोड़ह। तारी पेटक लेल नीक छै छोड़ह ई बकवास। तारी पेटक लेल नीक छै छोड़ह ई बकवास। दारू सँ जँ मुँह नहि मोड़बह बचतह नहि हौ चास। दारू सँ जँ मुँह नहि मोड़बह बचतह नहि हौ चास। छोड़ह भैया चून तमाकू गुटका सबकें छोड़ह। बीड़ी सिगरेट पीनी हुक्का एहि सबसँ मुँह मोड़ह। ताड़ी पेटक लेल नीक छै छोड़ह ई बकवास। दारू सँ जँ मुँह नहि मोड़बह बचतह नहि हौ चास। बचतह नहि हौ चास। उत्तम स्वास्थ्य सतत आवश्यक सुख जीवन केर मूल। उत्तम स्वास्थ्य सतत आवश्यक सुख जीवन केर मूल। एकरे मानह इएह टा जानह। एकरे मानह इएह टा जानह। करह न कखनो भूल। करह न कखनो भूल। नशा निशा जीवन केर भैया बात खास ई जानह। नशा निशा जीवन केर भैया बात खास ई जानह। आबो समरह नहीं तू गुमरह। आबो समरह नहीं तू गुमरह। बात हमर ई मानह। उत्तम स्वास्थ्य सतत आवश्यक सुख जीवन केर मूल। एकरे मानह इएह टा जानह। करह न कखनो भूल। नशा निशा जीवन केर भैया बात खास ई जानह। आबो समरह नहीं तो गुमरह। बात हमर ई मानह। नशा करह पढ़वा लिखवा केर आर सत्य बजवा केर। नशा करह पढ़वा लिखवा केर आर सत्य बजवा केर। नशा करह दोसर के जीवन में अमृत घोरवा केर। नशा करह पढ़वा लिखवा केर आर सत्य बजवा केर। नशा करह पढ़वा लिखवा केर आर सत्य बजवा केर। नशा करह दोसर के जीवन में अमृत घोरवा केर। अमल देवा हो फूसी फटक्का हम।

नहीं कखनहु बा जब अमल देबह हो फूसी फटक्का हम नहीं कखनहु बा जब अमल देबह साँचक सिंहासन परहम सदिखन राजब अमल देबह हो फूसी फटक्का हम नहीं कखनहु बा जब अमल देबह साँचक सिंहासन परहम सदिखन राजब नशा करह पीड़ित वंचित केर माथ सतत सहलायब नशा करह पीड़ित वंचित केर माथ सतत सहलायब नशा करह ओकरा खातिर हम नभनोची खुशी के लायब नशा करह ओकरा खातिर नभनोची खुशी के लायब अमल देबह सुसुप्त भावना जाजा हम जगायब अमल देबह सुसुप्त भावना जाजा हम जगायब सुखक माल पुआ के मिलजुली बाँटी बाँटी के खायब सुखक माल पुआ के मिलजुली बाँटी बाँटी के खायब नशा करह पीड़ित वंचित केर माथ सतत सहलायब नशा करह ओकरा खातिर नभनोची खुशी के लायब अमल देबह सुसुप्त भावना जाजा हम जगायब सुखक माल पुआ के मिलजुल बैंट बाँटी के खायब नशा करह तू नव निर्माणक जन जन केर कल्याणक नशा करह तू नव निर्वाणक जन जन केर कल्याणक बिलहब दूत बतासा प्रेमक बिलहब दूध बतासा प्रेमक मुस्की मीठा पानक नशा करह तू नव निर्माणक जन जन केर कल्याणक बिलहब दूत बतासा प्रेमक मुस्की मीठा पानक आय सुदिन दिन लह प्रतिज्ञा सौभ अमल के छोड़ब आय सुदिन दिन लह प्रतिज्ञा सौभ अमल के छोड़ब जीवन यौवन नष्ट करय जे ताहू सँ मुँह मोड़ब जीवन यौवन नष्ट करय जे ताहू सँ मुँह मोड़ब नशा करह तू नव निर्माणक जन जन केर कल्याणक बिलहब दूध बतासा प्रेमक मुस्की मीठा पानक आय सुदिन दिन लह प्रतिज्ञा सौभ अमल के छोड़ब जीवन यौवन नष्ट करय जे ताहू सँ मुँह मोड़ब जीवन यौवन नष्ट करय जे ताहू सँ मुँह मोड़ब। दोसर कविता बाल गीत अछि। बौआ पढ़ू बनू विद्वान राखू देश जहानक मान बौआ पढ़ू बनू विद्वान राखू देश जहानक मान पढ़ले सँ तँ मान बढ़ै छै जग भरि मे सम्मान बढ़ै छै पढ़ले सँ तँ मान बढ़ै छै जग भरि मे सम्मान बढ़ै छै अपन भिन्न पहचान बढ़ै छै नवका नवका ज्ञान बढ़ै छै विद्या के नित पाबी दान बौआ पढ़ू बनू विद्वान पढ़ले सँ तँ नाम बढ़ै छै अब जग भरि मे सम्मान बढ़ै छै अपन भिन्न पहचान बढ़ै छै नवका नवका ज्ञान बढ़ै छै विद्या के नित पाबी दान बौआ पढ़ू बनू विद्वान पढ़ले सँ तँ नाम बढ़ै छै अब जग भरि मे सम्मान बढ़ै छै अपन भिन्न पहचान बढ़ै छै नवका नवका ज्ञान बढ़ै छै विद्या के नित पाबी दान बौआ पढ़ू बनू विद्वान आलस सबसँ पैघ बलाय बिना भगौने ई नहि जाय आलस सबसँ पैघ बलाय बिना भगौने ई नहि जाय पोथी घोखबा पर बस ध्यान कोनो बात पर दी नहि कान आलस सबसँ पैघ बलाय बिना भगौने ई नहि जाय पोथी घोखबा पर बस ध्यान कोनो बात पर दी नहि कान ज्ञान बले जग भरि सम्मान बौआ पढ़ू बनू विद्वान बौआ पढ़ू बनू विद्वान बिन पैसा नहि होइ छ तमाशा पढ़ले सँ पूरत सब आशा बिन पैसा नहि होइ छ तमाशा।

0: पढ़ले सौ पूरत सब आशा, पायब मिसरी दूध बतासा, पलटत अज्ञानक सब पासा, बिन पैसा नहीं होइ छ तमाशा, पढ़ले सौ पूरत सब आशा, पायब मिसरी दूध बतासा, पलटत अज्ञानक सब पासा, मुट्ठी में जो चाही चान, मुट्ठी में जो चाही चान, बउआ पढ़ू लिखू विद्वान, बउआ पढ़ू बनू विद्वान, राखू देश जहानक मान, पढ़ले सौ तो मान बढ़ै छे, जग भरि में सम्मान बढ़ै छे, पढ़ले सौ तो मान बढ़ै छे, जग भरि में सम्मान बढ़ै छे, अपन भिन्न पहचान बढ़ै छे, नवका नवका ज्ञान बढ़ै छे, विद्या के नित पाबी दान, बउआ पढ़ू बनू विद्वान, राखू देश जहानक मान, राखू देश जहानक मान।
1: एखन श्रोता मित्र सुनि रहल छलहुँ काव्य पाठ, कवि छलाह वैद्यनाथ मिश्र, हिनका धन्यवाद दियनि। देखू श्रोता मित्र, एहि धरती पर माता पिता के भगवानक स्थान प्राप्त अछि, एहनमे हुनक सम्मान आ ध्यान राखब हमरा अहाँक परम कर्तव्य थिक। हुनक कयल परवरिश, त्याग आ आशीर्वादक बिना जीवनक कल्पना मात्र नहि कयल जा सकै छै। हुनका संगे प्रेम सम्मान व्यक्त करबाक लेल अपन व्यस्त दिनचर्या में सँ किछु समय माता पिता लेल जरूर निकाली, हुनका संग बैसी, गप करी, हुनक बात सुनी, हुनक छोट छोट जरूरत के ध्यान राखी। बढ़ैत उमेर संगे अहाँक भावनात्मक सहारा के सबसँ बेसी हुनका जरूरत होइत छैक। जीवन में माता पिता के अनुभव के फायदा ली आ ओहिसँ जीवनक कठिन मार्ग पर निर्णय लेबाक शिक्षा ग्रहण करी। हुनक सब काज के सराहना करी आ कृतज्ञता व्यक्त करी। हुनका कोनो गपक चिंता नहि होबय दी। माता पिता के सेवा आशीर्वाद सँ जीवन में सुख शांति सहित संपूर्ण सुख प्राप्त होइत छैक। कार्यक्रम में एखन सुनबै छी ई नचारी, कलाकार छथि चंद्रावली।

श्रोता मित्र, मिथिला संस्कृति अपन ऐतिहासिक विरासत, उत्कृष्ट कला आ परम्परा लेल विश्व प्रसिद्ध अछि। माता सीता के जन्मस्थली से लऽ कऽ याज्ञवल्क आ महाकवि विद्यापति के कर्मभूमि के रूप में ई क्षेत्र ज्ञान, भक्ति आ कला के अनुपम स्थल थिक। मधुबनी चित्रकला सदी पुरान अछि, अपन प्राकृतिक रंग आ सजीव कथात्मक चित्र लेल प्रसिद्ध अछि। आठम अनुसूची में शामिल अपन मधुर मैथिली समृद्ध साहित्य लेल विख्यात अछि। महाकवि विद्यापति एकरा मध्यकाले में लोकप्रिय बना देने छला। मिथिला के सम्मान पाग आ उत्तम भोज मिथिला के पदार्थ मखान हमर सभक गौरव बनि गेल अछि। पग पग पोखरि माछ मखान के कहबी मिथिला के डेग डेग में देखा जाइत अछि। एहिठाम अतिथि देवो भवः सर्वोच्च अछि। आउ हम सब अपन संस्कृति संस्कार के बचा कर राखी आ गौरव करी। समापन से पूर्व सुनबै छी ई विद्यापति गीत।

ढेर रास श्रोता मित्र गपशप और गीतनाद सुनेबाक छल मुदा समय आवन में इतने दौर रहा जे आर गपशप करी तो आजुक भारतीय कार्यक्रम में तबे प्रभात के विदा दिल जाए बेस्त शुभ साँझ।

अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम भारती। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको इस सभा में आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें।

6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा विश्व तंबाकू रहित दिवस, सुनेंगे भेंटवार्ता युवाओं में बढ़ता अवसाद, भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर मुकेश किशोर, इनसे बातचीत करेंगे विनीता कुमारी। 7 बजे का वक्त होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा केला के रोग, साथ ही सुनेंगे लोकगीत गजेंद्र महाराज के स्वर में।

8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संघ की। 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीत, कलाकार होंगे श्रीमती। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे आर्काइवल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम अनुगूंज। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवार सरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कर्नाटक सैक्सोफोन कलाकार होंगे श्री यारैया। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित करेंगे। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का, आइए सुनते हैं भोजपुरी बुलेटिन।

प्रणाम। ई आकाशवाणी पटना। अब रउआ सभी लोग सूर्य प्रकाश उपाध्याय ले भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगन के साथ अपन विचार साझा कैले। मन की बात कार्यक्रम के ई 134वीं कड़ी रहे। प्रधानमंत्री देशवासी लोगन से ई दिनन के भीषण गर्मी के देखत बहुत ज्यादे सावधानी बरते आ सरकारी गाइडलाइंस के पालन करे के अपील कैले बाड़न। उ लोगन के भरपूर पानी पिए आ धूप से बचाव के उपाय कैला के बाद ही घर से बाहर निकले के सलाह देले। प्रधानमंत्री कहले कि गर्मी से राहत पावे खातिर आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सातू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, संभारम, कोकम शरबत आ सोल कड़ी के सेवन कैल बहुते फायदेमंद बा। वो कहले कि इस सब पेय पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना के देखावेला आ ए में प्रियन के अनुभव छुपल बा। प्रधानमंत्री कहले कि सरकार देश के अनमोल धरोहर के बचावे खातिर लगातार कोशिश कर रहल बा। वो बतौले कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ल दुर्लभ तांबा के 3 गो प्लेट भी मिलल बा। प्रधानमंत्री झारखंड के रांची में भइल राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता के भी चर्चा कैले। एमे करीब 800 एथलेटिक लोग हिस्सा ले हले रन। श्री मोदी 4 गो राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े खातिर गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना आ कुलदीप कुमार के बधाई देले। उ 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड बनावे वाला गुरिंदर वीर सिंह आ अनिमेश कुजूर से बातचीत भी कैले। प्रधानमंत्री मोदी कहले कि खगोल विज्ञान देश के हर पीढ़ी में उत्सुकता जगैले बा। वो कहले कि खगोल विज्ञान अब देश में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहल बा। श्री मोदी नौजवानन से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होके आ छुट्टी के दिनन में तारामंडल घूमे के अपील भी कैले। प्रधानमंत्री बतौले कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनावल गई भारत के पहली गंगा डॉल्फिन बचाव के तहत एम्बुलेंस एकरा में बहुत बड़ भूमिका निभेले बा। श्री मोदी कहले कि गंगा डॉल्फिन के संरक्षण से नदी के जैव विविधता आ अनमोल प्राकृतिक धरोहर के बचाव भी होला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सुनले आ कार्यक्रम में खास तौर पे बिहार के चर्चा कैल खातिर प्रधानमंत्री के आभार जतौले। मुख्यमंत्री

0: मेले के कार्यक्रम में भीषण गर्मी से बचे खातिर बिहार के पारंपरिक पेय सातू आ प्रसिद्ध जरदालू आम के नाम लिहल राज्य के खास पहचान के देश स्तर पे दिखावेला। श्री चौधरी कहले कि प्रधानमंत्री जी के तरफ से बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोकल प्रोडक्ट आ जनजीवन से जुड़ल चीजन के चर्चा कल राज्य के लोगन खातिर गर्व आ सम्मान के बात बा। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आ 27वां नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाले। वो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ले ले बाड़न। कार्यभार संभारे के बाद श्री स्वामीनाथन कहले कि चुनौती, कड़ाई आ अनिश्चितता से भरल माहौल के देखत नौसेना एकदम मुस्तैद बा। वो कहले कि नौसेना के आधुनिकरण कैल जा रहा बा आ एकरा के सबसे बेहतरीन युद्ध क्षमता से लैस भी कैल जाई। पूरा प्रदेश में पिछला 24 घंटा के दौरान मौसम एकदम सूखा बनल रहल। ए दौरान 37.1 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान के साथ कैमूर के भभुआ प्रदेश के सबसे गर्म इलाका रहल। मौसम विभाग अगले 24 घंटा के भीतर प्रदेश के उत्तर पूर्व हिसाब के कुछ जगहन पे पानी गिरे के संभावना जतैले बा। भोजपुर जिला में साइबर थाना पुलिस साइबर फ्रॉड करे वाला 9 लोगन के धर दबोच ले बा। इन्हन पे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़न रुपया के ठगी करे के आरोप बा। रोहतास जिला के छठी बिहार राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेवे खातिर जिला के 10 सदस्यीय टीम इतवार के सासाराम से मोतिहारी रवाना भइल। प्रतियोगिता 2 दिन तक पूर्वी चंपारण में आयोजित हुई। संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने टीम के बेहतर प्रदर्शन के खातिर शुभकामना दिलास। आईपीएल 2026 के खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल जाई। फाइनल मैच में पिछला बेर के विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामना गुजरात टाइटन्स से हुई। दोनों टीम पूरा टूर्नामेंट में गजब के खेल दिखावत फाइनल में जगह बना ले लिया। ये महामुकाबला आज सांझ के 7:30 बजे से शुरू हुई। एक साथ ही आकाशवाणी पटना ले प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजे समाप्त भेल।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बुलेटिन, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं टूल साइड्स जूनियर फिल्म का ये गीत सचित टंडन और उज्ज्वल कश्यप की आवाज में। गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और इसे संगीत दिया है डेनियल बी जॉर्ज ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की आवाज़ में युद्ध फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर की लिखित रचना को तर्ज दिया है शंकर एहसान राय ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युद्धा फिल्म का ये गीत विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की आवाज़ में। गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 KHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमंत्री आतपात आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिक पेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। CBSE इति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिकशक्तिं दक्षिणपूर्व एशियादेशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और

0: संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्मऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद् रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री अवदत यत ग्रीष्म तापात रक्षण प्राप्तुम आमपन्नम तक्रम सत्तुपेयम बेलपन्नम पानकम नीरमोर सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनम हितकरम अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभव निहित अस्ति।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिता राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीड़ा संघ प्रतियोगिताया चर्चा अकरोत्। अस्यां प्रतियोगितायां प्रायः 800 क्रीडकाः भागं गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ 100 मीटर मितायां धावन प्रतियोगितायां विजेतृभ्यां गुरिन्दर वीर सिंहः तथा अनिमेश कुजूर चेत्येताभ्यां सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशस्य प्रत्येकं जनेषु जिज्ञासां जनयति। तेनोक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशे शीघ्रं लोकप्रियं भवति। श्रीमोदी युवानः खगोलशास्त्र समूहे सम्मिलितुं तथा अवकाश कालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरितवान्। प्रधानमन्त्री उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षणसम्बद्धस्य लघुचलच्चित्रस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। तेन उक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेन्स अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्रीमोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैव विविधतायाः तथा अमूल्यायाः प्राकृतिक धरोहरायाः संरक्षणमपि भवति।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: नूतनः सीडीएस इति प्रमुखः रक्षाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणिः अद्य उक्तवान् चिंतने कर्मणि च नवोन्मेषः सैन्य सामर्थ्यानां विकासं त्वरितं करिष्यति। देशस्य नूतनस्य प्रमुख रक्षाध्यक्षस्य पदं स्वीकृत्य वार्ताहरैः सह संवादे जनरल सुब्रमणिः अवदत् यत् सशस्त्रबलानि राष्ट्रहितसंरक्षणे निरन्तरं व्यावसायिकं कार्यसञ्चालनसम्बद्धं निर्णायकं च प्रदर्शनं विहितवन्तः। ते भारतस्य सार्वभौमत्वस्य, प्रादेशिक अखण्डतायाश्च रक्षणाय दृढसङ्कल्पाः सन्ति। अद्य प्रातः नवदिल्लीस्थे साउथ ब्लॉक प्राङ्गणे प्रमुखाय रक्षाध्यक्षाय गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानः प्रदत्तः। तेन राष्ट्रीय युद्ध स्मारके पुष्पांजलिरपि समर्पिता। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा उक्तं यत् स्वस्य सेवा प्रदातुः ऑन मार्क पोर्टल इत्यस्यान्तर्गताः ये दोषाः अधुना सार्वजनिकरूपेण आगताः तेषां विषये सा सावधानतया निरीक्षणं करोति। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे सीबीएसई उक्तवान् यत् विविध सर्वकारीय संस्थानां तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानां साइबर सुरक्षा विशेषज्ञानां दलं गतदिनेषु एतासां प्रणालीनां सुदृढीकरणाय तथा तन्त्रांशं सुरक्षितुं नियुक्तम् अस्ति। सीबीएसई अपि

0: प्रणाम अंजुला बहन,
1: नमस्ते मीनू बहन, की हाल चाल है?
0: हाल चाल तो खूब निमन बार वह बताएं बाबू हाल चाल।
1: लाल लाल आज कपड़ा पहन के लूँ, अच्छा है, सूरज भगवान के रंग है
0: हाँ,
1: भाई,
0: आज इतवार भी बाटे।
1: और पूर्णमासी भी है।
0: हाँ, और जल उल पूरा चढ़ा उढ़ा के पूजा पाठ करके आयल बानी।
1: बहुत बढ़िया कहला मीनू बहन, ऐसे ही हम सब लोग पूजा पाठ करके सबके स्वास्थ्य के मंगल कामना करें कि भाई सब लोग बढ़िया से नीमन से रहतीन और अच्छा से रहतीन। लेकिन
0: एकदम एकदम
1: कभी
0: सही,
1: कभी का हो कि लोग अपने जान बूझ करके भी
0: बीमारी
1: तबीयत
0: पा लेवेलन।
1: खा,
0: हाँ
1: उनका मालूम है कि हम एकरा से बीमार हो जाम, तैयो उनका आदत से बाज ना रहथिन और वो अपना बीमारी के तरफ अपना चल चल जा हथिन।
0: तो अंजुला बहन, एकरे पे एगो बात हमरा दिमाग में आ रहल बा कि जिंदगी के राह में खुशी के उजाला चाहिए, जिंदगी के राह में खुशी के उजाला चाहिए, तंबाकू ना हमनी सभन के स्वस्थ जीवन वाला प्याला चाहिए।
1: एकदम बढ़िया बात कहला, और आज खास करके ई बात ई लगी भी अच्छा लगते है कि आज है विश्व तंबाकू दिवस, जे कि सब लोग के जे तंबाकू के सेवन करे हथिन उनका जागरूक करे लगी ई दिवस मनावल
0: हाँ,
1: जा है।
0: मतलब कि आज के दिन बहुत खास बाटे, विश्व तम्बाकू रहित दिवस बा। आज 31 मई के पूरा विश्व इस दिवस के मना रहल बा। ये विश्व तम्बाकू रहित दिवस के उद्देश्य बाटे कि लोग के तम्बाकू और ओकरा से होखे वाला गंभीर नुकसान के प्रति जागरूक करना बा। ये दिवस हरेक इंसान के स्वस्थ जीवन अपनावे और तम्बाकू जैसन हानिकारक आदत से दूर रहे के संदेश देवेला।
1: बिल्कुल, देखा कि दुनिया

0: भर में लोग एकरा सेवन करथिन, और ये जे है मानव शरीर की देखथिन कि कितना खतरनाक है। एकरा
1: हाँ
0: से तो मतलब कथिन कि रक्तचाप बढ़ जा है,
1: हाँ
0: हृदय गति रुके के संभावना हो जा है,
1: हाँ
0: काहे
1: हाँ
0: कि कार्बन के जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जगह कार्बन डाइऑक्साइड ये एकरा से हो पैदा हुआ है। तो एकरा से खांसी, दमा और सांस के बहुत तरह के बीमारी और बहुत तरह के समस्या, गंध एकरा से सुगंध ना आवा है। देखवा कि जे तंबाकू के सेवन करथिन वो खट्टा चीज से और बहुत चीज से दूर रहथिन।
1: हाँ परहेज कर ले।
0: हाँ, काहे कि उनका गंध जैसन समस्या के स्थिति पैदा हो जा है। और यार मीनू बहन का एक तरह से कहल जाए कि ज्यादा तंबाकू के सेवन करते करते लोग कैंसर के भी शिकार हो जा
1: एकदम सही
0: हथिन
1: कहत
0: और
1: नहीं
0: मौत
1: कि
0: के मुंह की तरफ अपने आप के ढकेल ले हथिन।
1: देखिए तंबाकू खाली व्यक्ति खाति ना बल्कि पूरे परिवार आसपास के लोग के भी नुकसान पहुंचावेला। एकरा कारण ढेर मनी प्रकार के गंभीर बीमारी भी हो सकेला, जैसे कि रवा अभी कहनी कि कैंसर के खतरा। तो तंबाकू के सेवन से तो मुंह हो गए, गला हो गए, फेफड़ा और पेट के कैंसर होके के संभावना बढ़ जाला। वहीं फेफड़ा के बीमारी के बात करी तो लगातार सिगरेट पिए से सांस लेवे के परेशानी, दम्मा हो गए, फेफड़ा के कमजोर कर देवेला, जिकरा से परेशानी होला, बीमारी भी होए लगेला। हृदय रोग के भी बात रवा कहनी तो एकरे से होला। आ एकरा से सबसे अधिक नुकसान अगर होता तो घर परिवार में आर्थिक नुकसान होला।
0: बिल्कुल
1: मतलब कि खाए में कमी लोग कर दी, पर ई तंबाकू के सेवन जरूर करी, घर के आर्थिक स्थिति एकरा से कितना
0: और तो
1: खराब हो
0: यही
1: जाला।
0: आर्थिक स्थिति के जब बात अपने कहलथिन, तो भाई अगर कोई रोग बीमारी से ग्रसित हो गए तो
1: हाँ
0: कोई इलाज में तो ऐसे ही पैसा खर्चा हो
1: पैसा
0: जाए
1: खर्चा
0: है।
1: हो। आ देखम अमूमन लोग का होला कि दिनचर्या में भी खैनी के सेवन करेला लोग, कोई के पेट हल्का भी करे के बाद तो तनी खैनी रगड़ के खा लेनी,
0: सही
1: तब्बे
0: बात,
1: हमरा पेट हल्का होई, ऐसन
0: बिल्कुल।
1: सोच विचार होखेला। पर ऐसन सन चीज से थोड़ा दूरी बनाई।
0: देखा मीनू बहन, अकेले भारत में ही लगभग पूरा विश्व के 12% हिस्सा जो है तंबाकू के सेवन से व्यक्ति कर हथिन, और लगभग पूरा विश्व में अगर बात करही तो 80 लाख से भी अधिक लोग लगभग एकरा से जान दे दे हथिन। तो कितना ही खतरनाक है। 31 मई के हर साल विश्व तंबाकू दिवस यही से मनावल जा है। तंबाकू महामारी के तरफ पूरा विश्व के ध्यान दिलावे लगी 1987 में विश्व तंबाकू निषेध के स्थापना करल गेल है मीनू बहिन। और ये एक ठो वार्षिक अभियान है, तंबाकू सेवन से जुड़ल जे भी स्वास्थ्य के खतरा है ओकरा पर विश्व तंबाकू दिवस प्रकाश डाले है कि कैसे एकरा से बचल जाए, कैसे एकरा से परहेज करल जाए। अगर तंबाकू के आदत पड़ल है तो कैसे वो आदत के छोड़ावल जाए।
1: हाँ,
0: तो यही
1: देखिए तंबाकू जेबा नशीला पदार्थ बा, जेकरा निकोटीन नामक तत्व एकरा में पावल जाला। और तंबाकू के सेवन ढेर मनी प्रकार से लोग करेलन, जैसे कि सिगरेट हो गेल, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, हुक्का, खैनी, ई सिगरेट, ई सब आदि बा। आ देखिए ई बरस के 2026 के थीम बा कि आकर्षण के असली चेहरा उजागर करी, तंबाकू और निकोटीन के लत के मुकाबला करी। इस थीम के मुख्य उद्देश्य ई बता रहल बा कि तंबाकू और निकोटीन कंपनी रंग बिरंगा पैकेट फ्लेवर और ई सिगरेट और आकर्षण विज्ञापन के जरिए लोग के, खास करके युवा और बच्चा सबन के अपना ओर खींच रहल बा। और WHO लोग के जागरूक कर रहल, मतलब बता रहल बन कि ई चमकदार उत्पादन के पीछे मत भागी, ना तो गंभीर स्वास्थ्य खतरा से गुजरे पड़ी।
0: देखा। और ई जे तंबाकू के सेवन है ना खाली पुरुष लोग के बीच में,
1: हाँ
0: बल्कि हम तो महिला लोग के बीच में भी उतने
1: हाँ
0: जोर शोर
1: हाँ
0: से प्रचलित है, और एकरा महिला लोग भी सेवन करते हैं तो उनकर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़े स्वास्थ्य पर। अगर गर्भावस्था में अगर वो इस तरह के तंबाकू के सेवन कर रहे हथिन तो गर्भाशय पर बहु आवे वाला जो बच्चा है ओकरा पर भी दुष्परिणाम देखे ला मिले। बच्चा अपंग हो सके हथिन, बच्चा के बहुत तरह के बीमारी हो सके है और गर्भपात तक भी हो सके है।
1: आ देखिए तंबाकू छोड़े के उपाय खातिर भी निमन संगति अपनावे के चाहिए, निमन लोग के साथ उठी बैठी, ऐसा ना होखे के चाहिए कि जे नशा करता ओकरे साथ दोस्ती कैले बनी, उनके साथ रहम तो जैसन संगति में रहम वैसने संगति में ढल जाएं। तो उस संगति के छोड़ी निमन संगति अपनाई, योग और व्यायाम करी, परिवार और दोस्त के सहयोग लीं, तनाव से बची और सकारात्मक

0: सोच के अपनाई। देखिए बहुत लोग ऐसा होला कि बहुत टेंशन बा, बहुत टेंशन बा, तो टेंशन के दूर करे खातिर का रउआ सिगरेट पी लेम तो टेंशन दूर हो जाई,
1: ना
0: खैनी रगड़ के खा लेम तो का टेंशन दूर हो जाई।
1: ना ना
0: टेंशन के भगावे के पीछे जाई, ओकरा दूर करे के पीछे जाई, ओकरा कैसे समस्या के समाधान निकालना बा ओकरा पीछे जाई।
1: और खैनी खाए के जगह आदमी इलायची खा ले, है
0: हाँ
1: ना,
0: इलायची खा ली, ओकरा से तो मुंह में सुगंध
1: सुगंध
0: भी
1: भी और
0: आई और
1: फायदा
0: मन
1: भी।
0: भी
1: हाँ,
0: बहुत
1: लौंग लौंग
0: तरोताजा
1: आदमी
0: हो
1: चबा
0: जाई,
1: सकत हथिन, सौंफ चबा सकत हथिन,
0: आसपास के लोग के भी
1: अच्छा
0: ओकरा से
1: लगते।
0: अच्छा होई। ऐसा ना कि सिगरेट के धुआं से अगला के हम अगर परेशानी देते नहीं, तो ओकरा से अच्छा बा कि हम निमन निमन चीज के अपनाई, जेकरा
1: बिल्कुल।
0: से एकरा खातिर खुद ही पहल करे पड़ी। तो देखिए विश्व तंबाकू रहित दिवस हमनी सभन के ई संदेश दे रहल बा कि स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़का पूंजी ह। तंबाकू कुछ पल के आनंद दे सकेला, लेकिन जीवन भर के परेशानी भी साथ ले आई। यही से तंबाकू के छोड़ी और नीमन जीवन से नाता
1: और
0: जोड़ू।
1: हम सब के जिम्मेवारी बने, इस पूरे समाज के जिम्मेवारी बने है कि जे तंबाकू खा हथिन उनका तो ये मन कड़ा कर ही पड़ती, लेकिन समाज के जे जिम्मेवार व्यक्ति हथिन
0: हाँ
1: उनका भी ये जिम्मेवारी है कि अगर केकरो तंबाकू खाते देख ले हथिन तो इग्नोर ना करे के चाहिए, उनका समझावे के चाहिए कि तंबाकू कितना हानिकारक है।
0: हाँ
1: तो हम सब समाज की भी जिम्मेवारी है कि तंबाकू खाए वाला के ओकरा से छुटकारा कैसे दिलावल जाए,
0: हाँ
1: ओकरा
0: ओकर
1: बारे में
0: प्रयास
1: उनका
0: करी, उनका
1: मानसिक रूप
0: समझाई।
1: से तैयार करे के चाहिए।
0: हाँ और देखिए हम तो यही कहम कि जीवन में हमेशा स्वस्थ रही, मस्त रही और जीवन में हमेशा व्यस्त रही। ऐसा ना होके कि हमेशा परेशानी परेशानी। देखिए परेशानी तो हमेशा हर किसी के
1: देखो,
0: जीवन में बा।
1: परेशानी के बात अलग होली, कुछ
0: हाँ
1: लोग शौकिया खा
0: जानबूझ के
1: हथिन।
0: युवा पीढ़ी तो थोड़ा फैशन में भी पी रहल बाटे कि हाँ हमरा सिगरेट पीना बा, अगर हमारे दोस्त पी रहल बा तो हम काहे न पियम, पर एकर पीछे एकरा से का हानि होई ई भी समझे के चाहिए। और अपन बाल बुतरू के भी समझाएं कि बाहर निकले तो नीमन संगति में रहे और नीमन चीज खाए पिए, ऐसा
1: बिल्कुल।
0: ना होके कि गलत संगति में चल जाए। तो आज विश्व तंबाकू रहित दिवस बा, एकरा पर हमने अभी बहुत निमन निमन बात कहनी। अब
1: बिल्कुल
0: का विचार बा कार्यक्रम में आगे हमने के
1: हाँ,
0: बढ़ल
1: बिल्कुल
0: जाओ।
1: बिल्कुल। तो हम सब श्रोता लोग इंतजार भी करते होते हैं लोकगीत के, तो हम सब सुनावे ही गजेंद्र महाराज के स्वर में लोकगीत।

0: वाह,
1: तो बहुत नहीं मन ये
0: विद्यापति
1: विद्यापति गीत
0: गीत
1: रहे।
0: देखती हूँ कि विद्यापति के भगवान उगना के रूप में दर्शन देती हैं शंकर भगवान,
1: हाँ
0: तो इतना इनका भक्ति है ले विद्यापति के भगवान के प्रति। और कहल जाए कि कोई चीज आदमी अगर चाह ले तो
1: हाँ
0: ऐसा ना है कि वो
1: कि
0: पा
1: वो
0: ना सका
1: मुमकिन नहीं
0: है।
1: खे, हाँ कि हाँ ये ना हो सकेला।
0: हाँ, तो ये तनाव लेवे के जरूरते ना है, हर चीज के निकास है, हर चीज के उपाय है। जरूरत है थोड़ा सा धैर्य रखे के, थोड़ा सा साधना करे के,
1: हाँ
0: तो यही सब जरूरत है।
1: मतलब
0: और
1: कहना ये बा कि जहाँ चाह बा वहाँ
0: और
1: रह
0: हाँ,
1: बा।
0: और आजकल अगर हम युवा लोग के बात करें तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं। थोड़ा
1: हाँ
0: सा भी वो मुसीबत का थोड़ा सा अगर परेशानी आ जाए तो उनका एकदम मन विचलित हो
1: हाँ
0: जाए।
1: हर काम में जल्दी बा कि कोई भी काम जल्दी से ही पूरा हो जाए।
0: हाँ, बिना मेहनत के और जल्दी से पूरा हो
1: हाँ
0: जाए। अगर मेहनत करे के बाद भी अगर कुछ फल ना मिल रहे तो चलो
1: हाँ
0: फिर मिलते,
1: फिर
0: ऐसा ना
1: से,
0: है कि फल
1: हाँ
0: ना
1: फिर से
0: मिलते।
1: ओकरा हम
0: हाँ
1: कर्म हो सकेला अगला बार फल मिली।
0: बिल्कुल
1: पर
0: बिल्कुल।
1: ऐसा नहीं कि युवा में तो सही में रवा कहतनी कि होड़ लगल बा आगे बढ़े के। अगर कोई आगे बढ़ता तो ओकरा देख के भी लगता कि हाँ काहे वो आगे बढ़ गेल, हम काहे ना
0: अबे मतलब के वो तनाव
1: पीछे
0: को
1: बानी।
0: पाल
1: हाँ
0: ले हथिन।
1: तो अब अभी चली हमनी के सुनल जाओ एगो भेंट वार्ता, युवाओं में बढ़ता अवसाद। भेंट वार्ताकार बड़न डॉक्टर मुकेश किशोर और भेंट करता बड़ी विनीता कुमारी।
0: चलो सुने ही ये भेंट वार्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, हम सभी अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से कभी उत्साहित होकर खुश होते हैं और कभी बहुत उदास। लेकिन अभी के समय में ये उदासी जो है युवाओं में एक अलग मोड़ ले चुका है, जिसे अवसाद या डिप्रेशन भी कहते हैं। तो अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश किशोर, जो कि परामर्शी मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका अपने स्टूडियो में बहुत स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद।
2: और ये जो अभी चल रहा है युवाओं में उदासी एक अवसाद बनते जा रहा है, तो इसका जो लक्षण और कारण है इसके निदान के बारे में हम आपसे आज जानकारी हासिल करना चाहेंगे।

0: सबसे पहला सवाल ये है कि अवसाद उदासी से अलग कैसे है?
1: देखिए, आए दिन हम लोगों के जीवन में बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं
0: जी
1: जिससे हम उदास हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन कोई भी उदासी जब 2 सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक रहे तो उसको हम लोगों डिप्रेशन की संज्ञा देते हैं और उसके कुछ लक्षण हैं शायद इसके करेंगे हम लोग।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन यदि 2 सप्ताह से अधिक तक किसी को ये लक्षण है
0: जी
1: तो परामर्श करना चाहिए किसी विशेषज्ञ से।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा जो है उस्ताद जो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है?
1: यदि इसके कारण पर गौर करें तो बहुत सारे कारण हैं।
0: जी
1: डिप्रेशन के एक कारण है हमारा अनएम्प्लॉयड लड़का है।
0: जी
1: तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कारण है।
0: जी
1: किसान का फसल लगा हुआ है, फसल जल गया, बाढ़ में दह गया, तो उसके कारण उसको हो सकता है। किसी की मृत्यु हो गई,
0: जी जी
1: उसके कारण हो सकता है, या किसी का लव रिलेशन ब्रेक कर गया,
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो उसके कारण उदासी हो सकती है। उदासी के अनेकों कारण हैं डिप्रेशन के, जिसमें उसके यदि जैविक कारणों में जाइएगा तो उससे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है, उसमें एक असंतुलन होता है।
0: जी।
1: लेकिन बाकी कारणों में सामाजिक कारण है, व्यक्तिगत कारण है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो डिप्रेशन है ये किस तरीके से युवाओं में बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके जो लक्षण हैं अगर पहचानना हो कि वो उदास ना हो के डिप्रेस हो रहा है, तो उसके लक्षण की क्या क्या हैं, किस तरीके से पहचाना जाए कि उनमें डिप्रेशन आ चुका है?
1: देखिए, जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होगा
0: जी
1: वो पहले अलग अलग रहना चाहेगा, परिवार के लोगों के साथ नहीं रहना चाहेगा, अलग थलग रहेगा,
0: बिल्कुल
1: बात नहीं करना चाहेगा किसी से।
0: जी
1: उसके नींद, भूख, लोगों से मिलने जुलने की इच्छा, काम में रुचि, ये सब प्रभावित होती है, काम करना भी नहीं चाहता है।
0: जी जी।
1: और इसके कारण वो, और यदि डिप्रेशन की कई अवस्थाएं होती हैं
0: जी,
1: जैसे एक अवस्था है माइल्ड, तो माइल्ड में रोने की इच्छा होती है।
0: अच्छा।
1: और मॉडरेट में रोता है।
0: हाँ।
1: और सीवियर में कहते हैं कि आंसू सूख गए।
0: अच्छा। ये
1: और बहुत गहराई से यदि अवसाद है उसमें
0: जी,
1: तो कई बार आदमी अपने नजरों में खुद को रिजेक्ट करने लगता है। उसको दो वर्ड है, एक डिजेक्शन एक रिजेक्शन।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो रिजेक्शन में दूसरा व्यक्ति आपको नहीं चाहता है, रिजेक्ट कर रहा है,
0: रिजेक्ट कर दे रहा है।
1: डिजेक्शन में आप अपने आप को नहीं चाहती हैं, अपने आप को रिजेक्ट करती हैं।
0: अच्छा।
1: तो उसमें क्या होता है, उसको लगता है कि मेरी जरूरत दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: और वो आत्महत्या तक कर सकता है।
0: जी बिल्कुल। जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनने को भी मिल रहा है कि किसी न किसी कारण से आत्महत्या की जो घटनाएं हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे कैसे रोका जा सकता है, इसे किस तरीके से कम किया जा सकता है, तो इसके बारे में कुछ आप बताएं।
1: देखिए, एक तो है कि डिप्रेशन किसी भी तरह का हो उसके लिए दवाइयाँ भी हैं। यदि बहुत अधिक है डिप्रेशन
0: जी, जी,
1: तो डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई लीजिए।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन दवा से भी अकेले प्रायः इसका उपचार नहीं हो पाता है। परिस्थितियों को सुधारने के लिए मोटिवेट करना है, जो व्यक्ति उदास है
0: जी जी,
1: उसको अपने काम की इच्छा नहीं है, उसके विरुद्ध उसको काम करना है। डिप्रेशन में होता यह है कि उसको काम करने की इच्छा नहीं होती है, दिन भर काम नहीं करता है, शाम को उसी का मन उससे पूछता है कि तुम आज क्या किए,
0: बिल्कुल
1: तो कोई जवाब नहीं देता है, उससे डिप्रेशन बढ़ता है
0: जी।
1: और काम करने की इच्छा नहीं है फिर भी वो प्रयास करके शरीर को ढकेल के यदि काम करता है
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो एंड ऑफ द डे में, दिन के अंत में उसको लगता है कि इतना इतना काम हम किए, जिससे उपलब्धि का भाव उसके भीतर उभरता है और उससे उदासी कम होती है। इसीलिए उदासी को ठीक करने का असल उपाय काम ही करना है।
0: जी बिल्कुल। तो ये तो हो गए अवसाद के बारे में हम लोगों ने, जैसा कि आपने अभी अभी लक्षण बताया और इसके जो कारण आपने कहे कि इन सब कारणों से ये होता है, लेकिन अगर इससे उभरने की स्थिति जो होती है कि इसका क्या निदान है, किस तरीके से हम इससे डिप्रेशन से उभर सकते हैं?
1: उसमें देखिए, एक तो उसको दिनचर्या बना के अपने आप को काम में लगाना होगा।
0: अच्छा।
1: उस काम नहीं करता है लेकिन एक एक मिनट का उसके पास एक्टिविटी शेड्यूल होना चाहिए। वो काम बना करे, योगा करे, उसके बाद टहलने का काम करे, या अब काम में

0: लगे और मेडिटेशन करे। मेडिटेशन हमारे समझ से मेडिटेशन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही
0: डिप्रेशन
1: कहा।
0: में।
1: अभी के समय में मेडिटेशन हमारा बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ये हर तरीके से हमारी मदद करता है। तो जैसा कि मेडिटेशन के बारे में आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा सहयोगी रहेगा, तो डॉक्टर साहब मेरा ये आखिरी सवाल आपसे कि जो अभी अभी आपने काम की बात की कि एक दिनचर्या बना लेना चाहिए, तो वैसे स्थिति में हमारे परिवार का, हमारे जो

0: WHO ने डिफाइन किया है, मेंटल हेल्थ इशू है
1: जी
0: डिप्रेशन,
1: जी
0: डिफाइन किया है कि मेंटल हेल्थ, यदि हम स्वस्थ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने
0: और मानसिक स्वस्थता के लिए, स्वास्थ्य के लिए,
1: जी
0: स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो जब समाज से कट जाते हैं, प्रायः मानसिक रोगी को देखिएगा आप, ज़्यादातर समाज से कट जाते
1: कट
0: हैं,
1: जाते हैं बिल्कुल
0: तो अवॉइड करने लगते हैं लोगों से मिलना। तो सामाजिकता को बढ़ाना और परिवार के लोगों को, ऑफ कोर्स शुरू में तो दबाव बना के उसको समझा बुझा के ले जाना पड़ेगा, लेकिन यदि अलग थलग रहेगा तो बीमारी से मुक्ति पाना मुश्किल।
1: बिल्कुल। यानी कि आपके कहने का मतलब ये देखा जाए कि वैसे सिचुएशन में परिवार को भी चाहिए कि वो उसके आसपास रहे और हमेशा उसे खुश रहने की
0: बिल्कुल
1: कोशिश
0: बिल्कुल
1: करे, और जिस तरफ उसका ध्यान जा रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस है, उसको उस कारण से बाहर निकाला जा सके। तो बहुत अच्छी बातचीत रही आज आपके साथ हमारे स्टूडियो में, और इतनी अच्छी अच्छी बातों के लिए डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: हाँ, तो बहुत ही निमन भेंट वार्ता रहे अभी डॉक्टर मुकेश किशोर से बात के लिए, विनीता कुमारी
3: बिल्कुल
2: की, युवाओं में बढ़ता अवसाद। ये तो बहुत बड़का समस्या बा, आजकल बहुत देखे के मिल रहल बा, तो एकर
3: लेकिन एकरा
2: उपाय भी
3: में
2: बतैलन।
3: जे है कि परिवार के सहयोग करे के चाहिए और बहुत सकारात्मक वातावरण में ओकरा से बातचीत करना करे के चाहिए। जे युवा अगर अवसाद में हथिन उनका समझे के चाहिए कि उनकर समस्या का है। ई न कि और उल्टे मतलब नौकरी ना हो रही है तो ई न
1: हाँ
3: कि हाँ और ताना मार दिली कि तू तो निठल्ला है ऐसे वैसे, ये सब के जगह उनका प्रोत्साहित करे के चाहिए
2: देखिए,
3: कि
2: कभी
3: हाँ।
2: कभी ऐसा भी होला कि घर के माहौल जो होला वो बच्चा के बहुत ज़्यादा अवसाद की ओर लेके चल जाला। कभी कभी
3: बिल्कुल
2: बच्चा पढ़ता तो तारा एकदम इतना प्रतिशत लाना बा, अगर कम लेला तो समझिए
3: घर
2: गाहो
3: में एगो
2: के घर
3: तनाव,
2: में एक
3: हाँ
2: तनाव के, बच्चा भी पढ़त लिखत बा आ ओकरा ऊपर इतना दबाव देना कि हाँ तोरा इतना लाना ही लाना बा, तो बच्चा ओकरो से थोड़ा अवसाद
3: बिल्कुल
2: की ओर चल जाला।
3: बच्चा डर जाते ना कि हम ऐसा ना कि इतना परसेंट ना लम तो हमरा घर में पिटाई लग जात, या हम अगर नौकरी चाकरी बढ़िया से ना कर ली तो हमरा घर में ताना सुने ला मिलत। तो ये सब से ये करके युवा के खास करके सहारा देवे के चाहिए, उनका प्रोत्साहित करे के चाहिए और उनका से
2: असंगति
3: बातचीत
2: बहुत
3: करते।
2: नीमन होए के चाहिए, ई
3: बिल्कुल
2: भी ध्यान
3: बिल्कुल
2: देना बहुत जरूरी बा बच्चा के परिवार के कि हाँ हमार बच्चा कौन संगति में बा आ कैसन बा। तो बहुत ही नीमन हमनी के अभी भेंट वार्ता सुननी, युवाओं में बढ़ता अवसाद भेंट वार्ता कर रहन डॉक्टर मुकेश किशोर, और भेंट करता रही विनीता कुमारी।
3: तो
2: तो बहुत
3: इनका
2: बहुत
3: धन्यवाद।
2: धन्यवाद डॉक्टर मुकेश किशोर के, और आपका विचार बा।
3: और फिर से लोकगीत हम श्रोता लोग के सुनवावे ही गजेंद्र महाराज के स्वर में।
2: चलिए देर नेखे करे के।

0: हाँ, तो अभी हमने की सुनत रही
1: लिखा
0: लोक भजन गजेंद्र महाराज से, तब
1: से,
0: एकरे
1: और भी
0: संगे।
1: आगे खेती गृहस्थी में सुनबे, लेकिन अभी चौपाल के समय संपन्न होते ही खेती गृहस्थी में हम सब बातचीत करें।
0: तो खेती गृहस्थी में अब समय हो गई बा प्रायोजित कार्यक्रम सुने के, तो चलिए सुनल जाओ रोजगार।
1: चला सुने।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस।
3: नमस्ते गोड़ौल वालों, और आस पड़ोस के जितने लोग हैं आपको भी राजेश की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार लेकर एक बार फिर से हम आ गए हैं। जी हाँ, आपको पता है कि आपके गोड़ौल के संस्कार नगर में एसएस प्रोफेशनल और गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना श्री राज ग्रुप ने की है, और वहाँ बीसीए और बीबीए की पढ़ाई और बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होने जा रही है। बार बार कहता है राजेश कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और जो टेक्निकल पढ़ाई करते हैं उनके लिए रोजगार की समस्या नहीं होती है। ये कार्यक्रम रोजगार हम लेकर आ रहे हैं गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से। सारी व्यवस्थाएं उम्दा हो चुकी हैं। इंटरमीडिएट अगर बायोलॉजी के साथ किया है आप सबों ने, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आप अपने घर में ही अपने करियर की शुरुआत करें, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करें और आगे बढ़ जाएं, बड़े शहरों के खर्चे से भी बच जाएं और अपने घर पर ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई लिखाई करें। खासकर के कोविड के बाद जब से हेल्थ सेक्टर सामने आया, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर के लोगों ने, कर्मियों ने हमें बचाया, उस स्थिति में आज भी रोजगार की कमी नहीं है। एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से आप बीसीए और बीबीए करके आगे बढ़ सकते हैं। हम नंबर बता रहे हैं, ज्यादा जानकारी इन पांचों कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पर लें, 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, 9155558888। गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाम कितना अच्छा, गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वहां से डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, श्रीराज ग्रुप का ही इंस्टीट्यूट है, और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी। पिछले एपिसोड में आप लोगों से बात हुई थी, आगे जैसा कि हमने बताया, हाँ, कि ढेर सारे फोन कॉल्स आए थे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ उस एपिसोड के बाद? पहले तो आपका स्वागत है आज के एपिसोड में।

0: स्वागत है, स्वागत है भाई। और बच्चों ने बहुत जिज्ञासा दिखाई और बहुत अच्छे से इसको को रिलेट किया और लोगों ने बहुत उत्सुकता के साथ वहाँ आकर करके और इंक्वायरी भी लिए, बहुत अच्छा लगा। और जो हमने कहा है वो उम्मीदों पर खड़ा उतरे हैं और उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे हम। जैसा कि पहले ही आप लोग जो सब लोग जानते हैं कि श्री राज ग्रुप जो है वह निश्चित रूप से सफल, सरल और सरल सरल चिकित्सा उपलब्ध कराता है, उसके साथ साथ शिक्षण संस्थान को संचालित करता है।
1: जी जी।
0: तो हमारा आज भी वही है, लोग सब बड़े बड़े बातें करते हैं, हम बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े उसको रिजल्ट देते हैं, यही हमारी विशेषता है।
1: एक सवाल आया था डॉक्टर साहब जिसका जवाब हम चाहते हैं आप दे दें, है ना। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं ANM, GNM या BSc नर्सिंग के लिए जहां प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं कि जो गोरौल में गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल रहा है और आपने चर्चा की कि बहुत जल्दी हॉस्पिटल खुलने वाला है या पटना में श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल इस ग्रुप का है, यहाँ प्रैक्टिकल या फिर आप PSC से एसोसिएट करेंगे उनको, तो जानना चाहते हैं कि क्या इस संस्थान के साथ हॉस्पिटल का होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है और धरातल पर है, सिर्फ कागज पर नहीं। एक बात ये इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को निश्चित रूप से अपना अस्पताल होना जरूरी रहता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसके अपना अस्पताल नहीं होता है, जिसके कारण बहुत जो बेसिक चीजें होती है वो जानकारी नहीं मिल पाती है। तो बेसिक चीजों की जानकारी होने के लिए सबसे पहले अपना अस्पताल होना चाहिए और एडवांस के लिए एडवांस हॉस्पिटल की जरूरत होती है। तो बेसिक चीज के लिए अपना अस्पताल अगर नहीं रहेगा संस्थान के पास तो बेसिक चीजें कैसे सीख पाएंगे। और खुद अभी एक मैं डॉक्टर के होने के नाते मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि अगर पैरामेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र को अगर विकसित करना है तो उसको बेसिक चीजों को डे टू डे से ही, डे फर्स्ट डे से ही उसको ज्ञान दिलाना जरूरी होता है, क्योंकि हर जगह एडवांस चीज़ें की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं कहीं थोड़ी छोटी बेसिक चीज़ें भी बहुत बड़ा कारगर होता है मरीज को ठीक करने में। तो बेसिक चीज़ को बताना जरूर रहती है। फंडामेंटल जितना भी जितने भी एक्सरसाइज होते हैं, फंडामेंटल जितने भी प्रक्रियाएं होती है नर्सिंग से रिलेटेड या पैरामेडिकल से रिलेटेड, उसको मैं हम लोग सब लोग सबको उसको बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अपना अस्पताल होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ देखिए, अगर रेगुलर क्लासेज और रेगुलर प्रैक्टिकल अगर चलता है
1: जी,
0: तो बच्चों में उत्साह भी बढ़ता है, जिज्ञासा भी बढ़ती है और पढ़ने की ललक भी बढ़ती है। तो यह हमारा मूल मंत्र ही रहा है कि हम बच्चों को उन्नत शिक्षा के साथ साथ बेहतर प्रैक्टिकल और बेहतर क्लासेज देने का हमेशा काम कार्य करते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा पूंजी है,
1: सबसे बड़ा पूंजी है। आपकी जिज्ञासा शांत हो गई, इसलिए दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हेल्थ से संबंधित कहीं भी अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसका अपना अस्पताल होना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि क्लासरूम स्टडी के बाद अगर सामने प्रैक्टिकल आपको मिल जाए ना, तो आप में कंसेप्ट क्लियर बहुत जल्दी हो जाता है और आप उसका लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि फील्ड में जाकर के तो आपको प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीजें ही आपको जाननी होंगी।
0: लगातार हम दो साल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं गोरौल में, अब जाकर करके कंस्ट्रक्शन लगभग हमारे अनुकूल हुआ है और तब से हमने इसको शुरुआत किया है। तो दोनों तरह फैकल्टी के कोर्सेज, जैसे BBA BCA का और उसके बाद पैरामेडिकल और नर्सिंग का, ये शुरुआत करने जा रहे हैं और उसका अभी भी हमारे अनुकूल थोड़ा बहुत कुछ बाकी है जिसको हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तो उन बच्चों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ आना चाहते हैं, कि हम बहुत जल्द उसको पूरे कर लेंगे और आपको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगे। सुनहरा भविष्य पैरामेडिकल के साथ, नर्सिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पैरामेडिकल को और नर्सिंग का क्षेत्र को ऑप्ट कीजिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा मांग वाली क्षेत्र है और सबसे सहज और सुलभ आपको मुकाम तक ले जाता है। नौकरी के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प होता है वो बच्चों के लिए अभी के क्षेत्र में नर्सिंग का क्षेत्र है।
1: यही सवाल पूछेंगे आपसे, लेकिन इनका कंफ्यूजन क्लियर कर दें, ये जो संस्थान सुन रहे हैं गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोजगार में आप सुनते थे ना SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, उसी ग्रुप का और सबका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है श्री

0: राज ग्रुप जो कि पटना में बुधवार को आप सुनते हैं कार्यक्रम, पैरामेडिकल है पारस, श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है, सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर इसके बावजूद अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि बातचीत करनी चाहिए, गार्जियंस आपके लिए भी मैं बात बोल रहा हूं, माता पिता बड़े भाई बहन जो भी हैं, तो 9162413233 डॉक्टर साहब का एक नंबर ये है 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155555 हाँ 8888 यानी 9 1 4 5 और 4 8। और ये संस्थान है जो है अपना गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोरौल स्टेशन से जैसे ही उतरिएगा पीएससी के तरफ बढ़िएगा तो संस्कार नगर है। अगर आप गोरौल स्टेशन से आ रहे हैं तो दाएं बाएं तरफ आपको ये संस्थान पड़ेगा। डॉक्टर साहब रोजगार से संबंधित बातें कुछ लोगों ने पूछी है, शंका व्यक्त किया है कि क्या यहाँ गोरौल जैसे छोटे जगह से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या बीबीए का कुछ भी, तो क्या रोजगार मिलने में कोई कठिनाई तो नहीं होगी, यानी कि संस्थान गांव का है तो।
1: हाँ अच्छा, देखिए एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है और बच्चों भी आपको भी ध्यान से सुनने की जरूरत है कि कोई जगह छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसकी मान्यता होती है और मान्यता सरकार देती है। हमारा जो काम होता है, कॉलेज का जो काम होता है, सरकार के करिकुलम को पूरा करना, सरकार के कोर्स को जो सिलेबस है उसको पूरा करना, और सरकार का काम होता है परीक्षा लेना और सर्टिफिकेट देना, और बच्चों तुम्हारा काम है पढ़ करके पास करना, पढ़ाई करके पास करना, ये तो आपका काम है। तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि मैं पास कर जाऊंगा कि नहीं, अगर हमारा सिलेबस जितना है उसे हम पूरा कराते हैं, अगर तुम क्लास कर लिया हाँ। तो तुमको पास होने से कोई नहीं रोकेगा, एक बात है। दूसरी बात, तुम जो है वो रिकॉग्नाइज संस्थान में एडमिशन लिए हो तो तुम्हारा परीक्षा सरकार लेगी और सरकार सर्टिफिकेट देगी, इसके लिए भी उसमें सरकार उसमें ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि कहाँ का इंस्टीट्यूशन, उसमें ये लिखा था है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त
0: जी।
1: और उसके बाद ये लिखा हुआ रहता है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट रहता है। तो यह सब लोग को पता है कि बिहार स्वास्थ्य जब खुद सर्टिफिकेट देगी तो इसमें ई फॉरवर्ड का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए निश्चिंत होकर करके आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं,
0: एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और भैया राजेश तो हमेशा कहता है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और उसमें अगर हेल्थ में आपने पढ़ाई कर ली है ना तो स्वरोजगार, सरकारी क्षेत्र में रोजगार या फिर प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, वैसे संस्थान से पढ़ाई की अगर आपने हेल्थ सेक्टर में जहां क्लासरूम के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी आपको प्रॉपर सुविधा दी गई है। डॉक्टर साहब का नंबर हम बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए 9162413233 और 9155558888 और गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाम याद रखिए गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्री राज ट्रस्ट ग्रुप का ये संस्थान है, श्री राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का सिस्टर कंसर्न है जो गोरौल में खोला गया, जिस कैंपस में एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बीसी और बीबीए के लिए है उसी कैंपस में है ये, उसी कैंपस में है ये, और आप चाहे तो वहां जा सकते हैं। बहरहाल एक सवाल डॉक्टर साहब, कहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पैसे की उस तरीके से बहुत नहीं है, बहुलता नहीं है, क्या जो मिलेगा 4 लाख रुपया उसी में हमारा ये तीनों कोर्स अगर हम कोई भी करना चाहें तो हो जाएगा क्या?
1: देखिए दो कोर्स में है, इसमें बिहार सरकार ने दी है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसमें से है जीएनएम है और बीएससी नर्सिंग है
0: जी।
1: एएनएम को डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत रखा है
0: हाँ।
1: तो उसमें बिहार सरकार अनुदान नहीं देती है हाँ, उसमें स्कॉलरशिप मिलता है
0: हाँ।
1: स्कॉलरशिप तीनों में मिलता है, उसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी पैसे मिलते हैं जीएनएम और बीएससी में
0: हाँ।
1: लेकिन बाकी एएनएम जो है वो सिर्फ स्कॉलरशिप मिलता है
0: अच्छा।
1: जीएनएम में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और उसके बाद स्कॉलरशिप दोनों मिलते हैं, बीएससी में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप दोनों मिलते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह से यही व्यवस्था सरकार ने बनाई है और तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत हमको भी चलना होता है।
0: हमको भी चलना होता है, लेकिन हम चल के आ गए गुरौल आपके पास। तो गुरौल में आ गए हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम।

0: सारे कोर्सेज को, और पहले से बीबीए और बीसीए है, एसएस प्रोफेशनल में कैंपस एक है, आप जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब, आए और जानकारियां देकर चले गए। जी हाँ, अपने व्यस्त समय में से डॉक्टर साहब आते हैं, समय निकाल कर और जानकारियां देते हैं। आप लोगों ने ही कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तभी संपूर्ण समाज का विकास होगा, और ऐसे में डॉक्टर साहब ने आपकी बातें सुनी। और गुड़ौल में हाँ, उन्होंने पांच जी हाँ प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू कर दी है इसी सत्र से, बीसीए बीबीए और हेल्थ के सेक्टर में बीएससी एएनएम जीएनएम। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग है, एएनएम है और जीएनएम है। आपके लिए सहूलियत, गोरौल के आसपास जितना भी इलाका है, वैशाली का, मुजफ्फरपुर का या इधर छपरा की तरफ का, सारे लोग आ सकते हैं। पटना के लोग भी जा सकते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा कैंपस, बहुत ही अच्छी फैकल्टी, सारी चीजें हैं। और पढ़ाई वैसी करनी चाहिए ना जो अर्थोपार्जन कर सके, रोजगार दिला सके, झूठ मूठ के हल्ला हंगामा, रोजगार नहीं रोजगार नहीं। अरे भैया, पढ़ाई तो ऐसी करो ना जिसमें रोजगार की असीम और अपार और प्रचुर संभावनाएं हों, और ऐसे में हेल्थ सेक्टर या फिर कंप्यूटर का सेक्टर बहुत उपयुक्त है। नंबर नोट करें, ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, 9155558888, 9155558888। हम तो यही चाहते हैं, हम बोले तो आपका राजेश यही चाहता है कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। थैंक यू गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोजगार कार्यक्रम लेकर आने का मौका जो आपने दिया। चलते हैं, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
4: हाँ, तो अभी हमने के सुनत रहे प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार।
5: चलो, अब रोजगार के बाद हम सब खेती किसानी के बात कर रही, और क्या किसान भाइयों के कुछ फायदा के भी बात कर जाए।
4: अब फायदा के बाद जब रोवा कहीं नहीं तो हमरा मन में एक विचार आयल कि हरा भरा खेत तभी मुस्कुराई जब किसान रोग से फसल के बचाएं।
5: तो भाई, रोग से बचावे के फसल के हम जब बात कर रही, तो काहे ना केला में लगे वाला रोग के हम बात करी। काहे कि केला एगो ऐसन मतलब फल भी है, तरकारी भी है, बहुत तरह के व्यंजन एकरा से बना है, और लोग बड़े चाव से एकरा खाथिन, बाजार में एकर बहुत मांग है, और किसान भाई भी एकरा उगा करके अच्छा आर्थिक मुनाफा कमावथिन। लेकिन जरूरी है कि रोग व्याधि से बचावे के, तो कौन कौन सा रोग मीनू बहन बताई थी एकरा में?
4: देखिए, केला में लागे वाला कुछ प्रमुख रोग के बात करें तो एकरा में पनामा बेल्ट रोग बा, सीगा टोका, पत्ती धब्बा रोग बा, बंची टॉप रोग बा, एंथ्रेक्नोज रोग बा, जड़ सड़न रोग, ऐसा ढेर मनी रोग बा जे की केला के नुकसान पहुंचावेला। तो सबसे पहले पनामा बेल्ट रोग के बात करी तो ये केला के बहुत खतरनाक फफूंद जनित रोग है। एकरा फ्यूजोरियम वेल्ट भी कहल जाला। ये रोग होके पे पत्ता सब पियर पड़े लगी, पौधा आस्ते आस्ते सूखे लगी और तना भीतरे से भूअर दिखाई दी।
5: अच्छा,
4: फल छोट और कमजोर बने लगी। ये रोग मट्टी में रहे वाला फफूंद के कारण होखेला। ये रोग से बचे खातिर बिना रोग लागल पौधा के उपयोग करी, खेत में जल भराव ना होखे दी, संक्रमित पौधा के निकाल के खत्म कर देना बा, हमेशा जैविक खाद और संतुलित उर्वरक के प्रयोग करना बा।
5: अच्छा, सही, बहुत अच्छा जानकारी दिल थीं। और हम एगो बतावेला चाहिए किसान भाई की कि केला में ब्लैक सिगोटा एगो रोग है जो बहुत ही खतरनाक रोग है। और ये रोग केला के पंक्ति पर लगे वाला एगो धब्बा नुमा रोग हो वह है। एकरा से दुनिया भर में कितना देश के, मतलब दुनिया भर में ई रोग से लोग परेशान हथिन,
4: मतलब करिया करिया धब्बा जे दिखाला जैसे हो जाए केला के।
5: और भारत में अगर बात करल जाए तो यहाँ भी के लगभग सभी केला के उत्पादक क्षेत्र में ई रोग के प्रमुखता से मतलब देखल जाए। ई रोग लगे के बाद केला के पंक्ति जो है वो मर जाए, जेकरा से फसल के उपज में भारी नुकसान पहुंचे, फल के गुच्छा भी मतलब एक तरह से कहते हैं कि वो खत्म जैसन हो जाए। और समय के पहले केला पक भी जाए।

0: मतलब छोटा छोटा होकर केला पक जाए, तो किसान भाई के इनका से एकरा से बहुत घाटा हुआ है।
1: अब बात कर रहे थे जड़ सड़न रोग के, एकरा में पौधा कमजोर हो जाला, जड़ करिया और सड़ल दिखे लागेला, मतलब एकदम सड़ला के बाद कैसन दिखाई देवेला। पौधा के बढ़भार भी रुक जाला, मतलब बढ़े वाला ओकर प्रक्रिया बा जो वो रुक जाई। आ ई रोग से बचाव खातिर खेत में पानी निकाले के निमन इंतजाम रखे के चाहिए, मतलब ऐसा ना कि खूब खेत में पानी रखत नहीं कि केला के पेड़ पौधा जो भी बा वो खूब निमन से उपजी, ऐसा ना, एकरा खातिर पानी
0: मतलब
1: निकाले के
0: पानी के
1: इंतजाम।
0: निकास हाँ होवे के चाहिए ताकि
1: और
0: केला में बहुत पानी ना लगे।
1: हाँ, ढेर मनी सिंचाई ना करी, रोग मुक्त पौधा के ही उपयोग करी।
0: बिल्कुल
1: आ देखी, केला के फसल के रोग से बचावे खातिर सामान्य उपाय का करे के चाहिए, हमेशा स्वस्थ और प्रमाणित पौधा लगाई, खेत
0: बिल्कुल
1: में पानी जमा ना होके दही, समय समय पर खरपतवार हटाते रहें, संतुलित खाद और उर्वरक दें, केला के निमन पैदावार खातिर पौधा के सही पहचान और सही समय पर उपचार ढेर मनी जरूरी बा। अगर किसान नियमित निगरानी करस और उचित प्रबंधन अपनावस तो फसल के सुरक्षित रख के खूबे ढेर मनी उत्पादन प्राप्त कर सकेलन।
0: बहुत निमन निमन निमन
1: हाँ
0: बात फरिया फरिया के बोलते थे कि भाई केला में कोई सा भी रोग हो, चाहे मूका रोग लग जाए, चाहे टॉप वायरस या फिर डिस्किट के जैसे वायरस है, ये भी वो गंभीर विषाणु के रोग है, और
1: हाँ
0: एकरा से भी पौधा के विकास रुक जाए, और पौधा के जो पत्ता है वो गुच्छा ऐसा बन जाए, और पत्ती के किनारे हरा रंग के धारी भी बन जाए, जेकरा से फल ओकरा में लगना मुश्किल हो जाए। तो अपने जो उपाय बतलथिन
1: हाँ
0: कि खर पतवार समय समय पर करथिन, और पौधा के में लगे वाला कोई भी रोग लगे तो पौधा के तो नुकसान होबे
1: हाँ
0: करे है,
1: हाँ
0: तो ओकरा
1: एकदम
0: इलाज
1: एकदम
0: समय रहते
1: कर लेवे के
0: कर
1: चाहिए।
0: लेवे के
1: आ
0: चाहिए।
1: देखिए, स्वस्थ पौधा भरपूर फल, आ रोग
0: बिल्कुल
1: मुक्त खेती बनी सफलता के पल।
0: मत ये मंत्र किसान भाई अगर अपना
1: हाँ,
0: लेथिन तो
1: अपनावे के
0: बढ़िया से
1: चाहिए।
0: उपज
1: आ
0: प्राप्त कर
1: देखिए,
0: सकते
1: केला के रोग के भगाना बा और केला खूब उपजाना बा, ताकि घर में
0: हैं।
1: ओकर तरकारी बने, चाहे केला
0: भाई
1: खूब
0: अब
1: खाई
0: केला
1: आदमी।
0: पकल पकल केला अगर हो गए तो देवी के भोग भी
1: हाँ,
0: लगेथिन।
1: पूजा पाठ में भोग लगाई। आ एकरे से हमरा तो मन करता है, जब देवी के बात कहनी तो
0: हाँ
1: देवी गीत का है ना सुन ली।
0: एकदम एकदम सुने सुने सुने थीन देवी गीत।
1: हाँ, गजेंद्र महाराज से सुनल जाए देवी गीत।

0: गजेंद्र महाराज से इतना सुंदर गीत देवी गे सुन ली, तो इतना अच्छा गीत सुनावे
1: इनका
0: लगी,
1: सब गीत ला धन्यवाद कर
0: धन्यवाद।
1: दही। और अब चले के बेरा हो गेल बा, घड़ी भी इशारा करत बा कि हमनी
0: चलम
1: के
0: तभी
1: चले
0: तो
1: के
0: फिर
1: चले।
0: हम
1: तो प्रणाम अंजुला बहिन।
0: नमस्ते मीनू बहिन।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
7: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222504।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार का किया विशेष उल्लेख, सत्तू और जरदालू आम की चर्चा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का किया निरीक्षण, 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आईपीएल क्रिकेट 2026 का फाइनल आज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। और मौसम विभाग ने आज 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात कार्यक्रम की यह 134वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली हैं। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फाजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए

0: कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम में विशेष तौर पर बिहार का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में भीषण गर्मी से बचाव के लिए बिहार के पारंपरिक पेय सत्तू तथा प्रसिद्ध जरदालू आम का उल्लेख करना राज्य की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करता है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों और जनजीवन से जुड़े विषयों का उल्लेख राज्यवासियों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। इधर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को सुना। श्री सिन्हा ने इस कार्यक्रम को देशवासियों के लिए प्रेरणादायक बताया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात के अंदर लोगों के प्रेरणा देने का, खेल से खिलाड़ी, खेत से खलिहान, स्वच्छता और राष्ट्र गौरव के सारे विषय पर इन्होंने बताए हैं, लोगों को प्रेरणा मिलता है। सभी युवा जो नए आदर्श बेस्ट प्रैक्टिस की चर्चा होती है, इससे हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है, राष्ट्र प्रथम का भाव जगता है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और विधान पार्षद अरविंद शर्मा समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य मंत्री नंदकिशोर राम ने पश्चिम चंपारण के रामनगर में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने वाल्मीकि नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भागलपुर में 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
3: नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और स्कूल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पररी चालू हो और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से इस तरफ ले जाने की सारी व्यवस्था सरकार की।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा के निलंबन के बाद बिहार के प्रशासनिक हलकों में हाई प्रोफाइल ठेकेदार ऋषु रंजन सिन्हा उर्फ ऋषु श्री के कारनामों की चर्चा तेज हो गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि सरकार में बैठे शीर्ष अफसरों के साथ ऋषु श्री का नजदीकी रिश्ता था। अधिकारियों से अच्छे संबंध का लाभ लेकर करोड़ों के सरकारी टेंडरों, अपनी मर्जी से चहेतों को फायदा पहुंचाता था। जांच एजेंसियों ने ऋषु श्री पर शिकंजा कसा तो मामला सामने आया। गौरतलब है कि योगेश कुमार सागर 2017 बैच के और अभिलाषा कुमारी शर्मा 2014 बैच की

0: बिहार कैडर की आईएएस हैं। श्री सागर उत्तर प्रदेश के बरेली और अभिलाषा कुमारी शर्मा बिहार के नवादा जिले की रहने वाली हैं। दोनों अधिकारी बिहार सरकार में शीर्ष पदों पर कार्य कर चुके हैं। सरकार ठेकों में हेराफेरी के मामलों में इससे पहले जांच एजेंसियों ने आईएएस संजीव हंस, बिहार प्रशासनिक सेवा के मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में दो आईएएस अधिकारियों का निलंबन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की गई यह बड़ी कार्रवाई है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। इधर विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भागलपुर में भाजपा द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इस अवसर पर भागलपुर विधायक रोहित पांडे, पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान, विधान पार्षद लालमोहन गुप्ता और डॉक्टर एनके यादव सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। अररिया जिले में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अलग अलग क्षेत्रों से 900 लीटर देशी विदेशी शराब के साथ 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले में साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। शेखपुरा जिला में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। शेखपुरा जिला के करंडे थाना पुलिस ने एक गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस और 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर रंगदारी मांगने और मारपीट करने समेत कई अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। प्रदेश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है।
1: दिनांक 1 जून उत्तर पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधान परिषद चुनावों में एनडीए सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगा।
2: उम्मीदवार को लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व में चर्चा हो रही है, उम्मीदवार तय मंथन किया जा रहा है, जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने 5 सीट राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उसी तरह 10 सीट जो है विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे।
0: आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज निवर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच हो रहा है। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बॉलिंग का फैसला किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार का किया विशेष उल्लेख, सत्तू और जरदालू आम की चर्चा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का किया निरीक्षण, 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आईपीएल क्रिकेट 2026 का फाइनल आज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। और

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
2: कैमूर जिले में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। अचानक मौसम में आए बदलाव से एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। आंधी पानी के दौरान तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से कई इलाकों में कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। वहीं आंधी की वजह से जिले के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। बीते दिनों जिले में वज्रपात की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे नहीं रहने की अपील की है। इधर समय समय पर हो रही बारिश के कारण जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मौसम में आए इस बदलाव से काफी राहत मिली है। इधर जिले के किसानों ने रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होते ही खेतों में धान का बिचड़ा डालकर खरीफ फसल की खेती की शुरुआत कर दी है। कृषि विभाग ने इस बार जिले में 1,40,000 हेक्टेयर भूमि में धान की रोपनी का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि बिचड़ा डालने के लिए किसानों को अनुदानित दर पर उन्नत प्रजाति के धान का बीज बहुत जल्द मुहैया कराया

0: जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल की खेती के लिए किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक भी उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री कुमार ने किसानों से अपील की है कि विभाग द्वारा निबंधित दुकानों पर यदि निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री की जाती है तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
1: यदि कोई दुकानदार निर्धारित दर से ज्यादा मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करता है तो तत्काल इसकी जानकारी आप कृषि विभाग के पदाधिकारी को दें ताकि इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा सके।
0: राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 2 जून को कैमूर जिले में विशेष सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शिविर में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जिले के दौरे पर आने की संभावना है। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने माँ मुंडेश्वरी धाम सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया। इधर जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं को त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी कार्यालयों में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार सह जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के लोग बड़ी संख्या में पहुँचकर अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर अपनी समस्याएं रख रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा बीते शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विकसित भारत समृद्ध बिहार योजना के तहत किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए जिले में फार्मर रजिस्ट्री का विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि 12 मई से शुरू किया गया यह अभियान आगामी 30 जून तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिले के सभी वसुधा केंद्रों पर किसानों को निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि किसान अपने पंचायत के कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार एवं राजस्व कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कैमूर जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस क्रम में जिले में 346 दुर्लभ एवं प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की पहचान की गई है। मिशन के तहत इन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण पर उन्हें संरक्षित किया जाएगा ताकि भावी पीढ़ियों के लिए इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तकरण छात्र योजना के तहत जिले के 127 दिव्यांगों को बैटरी संचालित साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। बीते दिनों जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने समाहरणालय में आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में दिव्यांगजनों द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान डीएम ने 127 पात्र दिव्यांगजनों के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की, जिन्हें शीघ्र ही बैटरी संचालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। कैमूर जिले में बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग भभुआ शहर स्थित जगजीवन स्टेडियम, दरगाहों एवं मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की तथा एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने भी बकरीद के अवसर पर अपने पैतृक गांव नौघरा की मस्जिद में नमाज अदा की। वहीं त्योहार को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 176 स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई थी।
2: अभी आप सुन रहे थे कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए पेश है गजल शोभना राव की आवाज में।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गजल, कलाकार थे शोभना राव। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीकांत फिल्म का ये गीत, जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है श्लोक के नाल ने और इसे संगीतबद्ध किया है तनिष्क वाक्षी ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: सभी फिल्म का ये गीत सुनिए के और पीयूष शंकर की आवाज में। गीतकार हैं रश्मि विराग और संगीतकार पीयूष शंकर।

Akashwani at 90. श्रोताओं आइए सुनते हैं तड़प फिल्म का ये गीत शिल्पा राव, दर्शन रावल और चरण की आवाज़ में। इरशाद कामिल और चरण की लिखी इस रचना को तर्ज दिया है प्रीतम ने।

यस बॉस का फिल्म का ये गीत सुने अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में। शब्द हैं जावेद अख्तर के और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, ये सुनते हैं 13 सुरूर फिल्म का ये गीत दर्शन रावल की आवाज़ में। समीर अंजान के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है महेश रेशमिया ने।

0: जहाँ जहाँ तेरा चेहरा वहाँ वहाँ मेरी आँखें सोचती हूँ अक्सर मैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं दर्शन रावल और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, अभिजीत की आवाज़ में आइए सुनते हैं तेरे बिना फिल्म का ये गीत। नुसरत बदर के लिखे इस रचना को तर्ज दिया है सप्तराशी ने।

श्रोताओं, अभिजीत की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है गीत, कलाकार हैं श्रीमती डे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत कलाकार थी श्रीमती डेसी के साथ। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार संध्या आकाशवाणी की
1: आकाशवाणी से
0: तहरीर।
1: समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरो

0: गौड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति

0: मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने

0: रहा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और

0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinder Veer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, एंशियंट

0: civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासिद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है और IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासद के तहत उनके गैर मामूली ताबुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इकदाम और हसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वाल शेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णैया की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर टीचर हैं, जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तहत उनके ताबुन को भी सराहा।
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: खेल कूद के मैदान में भारत की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरिंदर वीर सिंह और उन्मेष गुजर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर पौनबंशी संतलत के मक के महारिषि बलार्जुन से मुतल्लिक 6वीं और 7वीं सदी की 3 नायाब तांबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का भी जिक्र किया।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की

0: खसूसी तकरीब मुनाकिद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश व जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन ताबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हुसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिल कदर गहरी मालूमात फराहम होती हैं। वज़ीर आज़म ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफुजाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने आज कहा है कि ख्याल और कार्रवाई में इख्तरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। मुल्क के नए CDS की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने मुसल्लह फौजों, सनात, तालीमी इदारों, स्टार्टअप्स और तहकीक के इको निज़ाम के माबैन मजीद इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया, जो जदीदकारी के लिए बुनियादी हैसियत का हामिल हैं। साबिका फौजियों और वीर नारियों के बहबूद के तई मुसल्लह फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमात अंजाम देती रहेंगी। आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के जिले पंचकुला में वाकई रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जामे हिफाजती इंतजाम के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निज़ाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में BJP ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में BJP ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड में जीत हासिल की है। सोलन में BJP ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड हासिल किए हैं। मंडी में BJP ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड में वाजे अक्सरियत हासिल की है, जबकि BJP ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर मुनक़द हुए थे। ताहम BJP और कांग्रेस दोनों ने अपनी हामी उम्मीदवारों की कामयाबियों का जिक्र किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के तीसरे मरहले के तहत नंबर शुमारी का काम शुरू हो गया है। कमीशन ने बताया कि उन सभी अहल वोटरों को जिनके नंबर शुमारी फॉर्म इंतखाबी रजिस्ट्रेशन दफ्तर को 28 जून को या इससे पहले मौसूल हो गए

चुनाव फहरिस्तों के मुसविदे में शामिल किया जाएगा। एसआईआर का मकसद ये है कि कोई अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से न रह जाए और कोई नाअहल शख्स चुनाव फहरिस्त में शामिल न रहे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर निज बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज अगरतला में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब रेड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल पूरे होने के मौके पर मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रेड़ी पटरी वालों को रुपए पैसे के डिजिटल वसीले से किए जाने वाले लेन देन को फरोग देने और माली तौर पर खुद किफालत के लिए कर्जों के चेक और QR कोड वाले क्रेडिट कार्ड तकसीम किए। मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत से पहले बाग डोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है क्योंकि रियासत में साबिका TMC सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन BSF के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हस्सा जिले मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दफाई एतबार से अहम चिकन नेक राहदारी पर भी हिफाजती इंतजाम मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। यह राहदारी शुमाल मशरकी खित्ते को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाती है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मुंबई में लोकभवन में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अहिल्या देवी होलकर की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत नजर किए। इस दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर जिले में चौंडी के मकाम पर अहिल्या देवी होलकर यादगार का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामखम टाउनशिप के काउंगटुब गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। ये इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जनूब में वाक़ है, जहाँ तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। ये एक मुसल्लह ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाजारा है। जय हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मगरबी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और झालाबारी का इम्कान है। महकमे ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे और बिजली चमकने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोएब अल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। इस तरह उन्होंने 2 साल में अपना पहला खिताब जीत लिया। आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासद के तई अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जाँचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहरीन की एक टीम तैनात की है। BJP ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और

0: शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दिस इज दिल्ली, प्लीज स्टैंड बाय फॉर अ नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, यू नो ब्रिंग यू द प्रोग्राम अनुगूंज बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
1: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
2: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा,
3: हाथ नहीं लगाना,
4: हाथ नहीं लगाना राधा।
3: और तो देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है,

0: हमने अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती थी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नज़र से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुँचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं

0: मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
0: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
2: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल, ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओ, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
2: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाश।

0: जाल लगे होते थे, दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महा

कवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत किसने बांसुरी बजाई।

सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

आने में आने वाला मरण, जीवन के बाने में।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया इज अ रिनाउंड सैक्सोफोन आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री जी वेंकटरमणा। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर श्री कल्लूरी मल्लैया and earned recognition as an A-grade artist of Akashvani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
0: Aaj ke karyakram mein Shri Asnapuram Yeraiya evam Mandali ke saath Dolu par Shri V.N. Balchandar sangati denge. Shri V.N. Balchandar Andhra Pradesh ke prasiddh Dolu vadak hain. उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
0: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नु कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युनन्नुरा ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नू जेप्पा कारण मेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanam Eni, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है। राग कीरवाणी में ये रचना मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुर एर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री यदैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यदैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: आ रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला

0: सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा, संपर्क व्यवस्था और द्विपक्षीय सहयोग सहित आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने भी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति के रूप में श्री लाइंग की ये पहली यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति मुंबई भी जाएंगे, जहां वे उद्योग तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी। श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को 5 कैबिनेट मंत्रियों की टीम के साथ कार्यभार संभाला था। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी। ये संख्या 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए निर्धारित संवैधानिक सीमा के भीतर होगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना